0: आप भाषा और साहित्य की दुनिया में चमकना चाहते हैं? तो देर किस बात की, आज ही प्रवेश लें स्वामी विवेकानंद सुभारती विश्वविद्यालय मेरठ के भाषा विभाग में।
1: यहाँ आपको मिलेंगे भाषा विभाग द्वारा संचालित ये बेहतरीन पाठ्यक्रम: बीए ऑनर्स हिंदी, बीए ऑनर्स इंग्लिश, एमए हिंदी, एमए इंग्लिश। यहाँ आपको मिलेगा एआई आधारित आधुनिक तकनीक से भाषा सीखने का अनोखा अवसर, अनुभवी प्रोफेसर्स का मार्गदर्शन, यूजीसी नेट, जेआरएफ तथा प्रतियोगी परीक्षाओं की पक्की तैयारी, मीडिया, अनुवाद, कॉरपोरेट या शिक्षण। अपने हर करियर गोल को दें एक नई उड़ान।
0: एडमिशन्स के लिए आज ही कॉल करें 9639222290 और 9639222293 पर, या विजिट करें भाषा विभाग स्वामी विवेकानंद सुभारती विश्वविद्यालय मेरठ में।
2: सुभारती कैंसर हॉस्पिटल, यहाँ आपको सिर्फ उपचार नहीं मिलता, आपको मिलता है प्यार, समर्थन और सबसे जरूरी उम्मीद।

0: हम जानते हैं कि हर मरीज की जिंदगी की कहानी अलग होती है और हम हर कहानी को जीतने की पूरी कोशिश करते हैं। हमारे विशेषज्ञ डॉक्टरों के साथ हर कदम पर हम आपको उम्मीद और जीवन की नई राह दिखाते हैं। कैंसर के खिलाफ इस लड़ाई में हम आपके साथ हैं। विश्व स्तरीय और अत्याधुनिक इलाज सुभारती कैंसर हॉस्पिटल। टू नो मोर कॉल नाउ 9639010313। सन्नाटा पसर जाता है उस परिवार में जहां किसी को कैंसर हो जाए। वीरानी लगती है ये दुनिया जिस परिवार में किसी को कैंसर हो जाए। अब कैंसर से डरिए नहीं, सुभारती कैंसर हॉस्पिटल। विश्व स्तरीय और अत्याधुनिक इलाज, कैंसर स्क्रीनिंग एंड डायग्नोसिस, ऑल टाइप ऑफ लेटेस्ट एंड एडवांस रेडिएशन थेरेपी, ऑल टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स कैंसर सर्जरी, हार्मोनल थेरेपी। नो मोर कॉल नाउ 9639010313।
1: यूं ही मारते रहे दम तो जिंदगी हो जाएगी बेदम। बचाना चाहते हो किसी का जीवन तो संपर्क करें विश्वस्तरीय सुविधाओं से युक्त सुभारती नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केंद्र, सुभारती हॉस्पिटल झाझरा देहरादून। कॉल करें 9760920865।
0: लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड की ठोर, अत्याधुनिक नर्सरी, ईसीजी, इको, कार्डियोग्राफी, सेमी प्राइवेट और प्राइवेट रूम्स, डिजिटल एक्सरे हो या अल्ट्रासाउंड, न्यूनेटल केयर यूनिट और बच्चों के लिए विशेष ऑपरेशन थिएटर, 2400 घंटे पैथोलॉजी लैब्स। लोकप्रिय हॉस्पिटल की ठोर में आज ही आकर मिले। हमारे अनुभवी डॉक्टर और विशेषज्ञ आपके स्वास्थ्य की देखभाल के लिए 2400 घंटे तैयार। अत्याधुनिक उपकरण और तकनीक जो आपको सर्वोत्तम सेवाएं प्रदान करें। लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड की ठोर। जुकाम, खांसी या बुखार कई दिनों तक रहे तो छोटे बच्चों को निमोनिया हो सकता है। अपने बच्चों के बेहतर इलाज के लिए आज ही संपर्क करें लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड किठोर, जहां पर 2400 घंटे हमारे बाल रोग विशेषज्ञ आपके बच्चों की बेहतर देखभाल के लिए उपलब्ध, 2400 घंटे इमरजेंसी सुविधाओं के साथ। लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड किठोर, SP पेट्रोल पंप के सामने। कॉल करें 8194007405।
2: लोकप्रिय अस्पताल सिर्फ नाम से ही नहीं बल्कि अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ मिलने वाली सेवाओं के कारण भी लोकप्रिय है। यहाँ आपको एक ही छत के नीचे मिलेंगे मेडिसिन, स्त्री रोग विशेषज्ञ, बाल रोग विशेषज्ञ, जनरल सर्जरी, गुर्दा रोग विशेषज्ञ, गुर्दा और मूत्र रोग विशेषज्ञ, दांत और मुंह के रोग विशेषज्ञ, आँख, कान, नाक और गला रोग विशेषज्ञ, हड्डी रोग विशेषज्ञ, हृदय और छाती रोग विशेषज्ञ, थायराइड और मधुमेह रोग विशेषज्ञ, ब्रेन और स्पाइन रोग विशेषज्ञ। लोकप्रिय अस्पताल किठोर में
3: यहाँ आपको मिलेंगे सभी प्रकार के ट्रॉमा एवं इमरजेंसी सुविधाएं, जैसे नॉर्मल डिलीवरी एवं ऑपरेशन डिलीवरी, आधुनिक ICU एवं वेंटिलेटर की सुविधाएं, मॉडल ऑपरेशन थिएटर, आधुनिक नर्सरी, ECG व इको कार्डियोग्राफी, जनरल वार्ड, सेमी प्राइवेट और प्राइवेट रूम्स, डिजिटल एक्सरे एवं अल्ट्रासाउंड, 24 घंटे कार्यरत पैथोलॉजी लैब्स, 24 घंटे डायलिसिस की सुविधा, 24 घंटे मेडिकल स्टोर जैसे अनेकों सुविधाओं के साथ हम आपको 24/7 की इमरजेंसी सेवाएं भी प्रदान करते हैं।
2: अपनी बीमारियों और समस्याओं से निजात पाने के लिए मिले 120 बेड वाले लोकप्रिय अस्पताल सुपर मल्टी स्पेशलिटी किठोर के विशेषज्ञों से और पाएं सारी बीमारियों से निजात। HP पेट्रोल पंप के सामने, निकट नहर गढ़ रोड किठोर। संपर्क कीजिए 8194007405।
4: Are you looking for a place from where your voice get a fame? Are you looking for a perfect platform to record your voice? Then why are you worrying a lot? Captain Ram Singh Sound Studio Subharti is here for you. Solution of your problem is under one roof. We provide facilities like dubbing, vocal recording, music composing, mixing and mastering. Visit here and we are giving you guarantee you gonna love it. Address Tathagat Block, 6th floor, Swami Vivekanand Subharti University, Meerut. For more information, contact 9759303022.
0: जब जीवन में अंधेरे घेर लेते हैं तब हर किसी को एक उम्मीद की किरण की तलाश होती है। सुभारती अस्पताल में हम सिर्फ इलाज नहीं करते, हम आपकी उम्मीदों को बचाते हैं। यहाँ हर दर्द का इलाज है, हर समस्या का समाधान है, क्योंकि हम जानते हैं उम्मीद कभी खत्म नहीं होती। सुभारती अस्पताल, जहाँ हर मरीज को मिलती है जिंदगी की नई उम्मीद। 2400 घंटे हम हैं आपकी सेवा में। किसी भी प्रकार की समस्या होने पर आज ही आइए छत्रपति शिवाजी सुभारती हॉस्पिटल, NH 58, परतापुर बाईपास रोड, मेरठ। दमार्स रिजॉर्ट्स, चाहे आपकी शादी हो, फैमिली आउटिंग हो या एक खास डिनर गेट टुगेदर हो, दमार्स रिजॉर्ट्स में बनाए अपनी जिंदगी का हर पल रॉयल। किटी पार्टीज हो या इंटीमेट गैदरिंग, हमारे ग्रैंड बैंकेट हॉल्स, फाइन डाइनिंग और शाही हॉस्पिटैलिटी से हर इवेंट हो जाएगा यादगार। द मार्स रिजॉर्ट्स, एक रॉयल एक्सपीरियंस नियर सुभारती, हरिद्वार बाईपास रोड, मेरठ।

गुड मॉर्निंग, जय हिंद, वंदे मातरम, सुप्रभातम और एक पावरफुल बेहतरीन लाजवाब सुबह है दोस्तों हमारे पास। कैसे हैं आप? आप सुन रहे हैं सुभारती आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM और मेरा नाम है वास्तु कृष्णा और यहां पर हम बात करते हैं जिंदगी को ट्रांसफॉर्म करने की, रूपांतरित कैसे कर सकते हैं अपनी लाइफ को, हम कैसे ग्रो करें, कैसे आगे बढ़ें, कौन सी ऐसी गलतियां हैं जिनको हमें इग्नोर करना होगा, जिनको हमें सुधारना होगा, बहुत ज्यादा जरूरी है ना। आज के शो में हम बात करने वाले हैं अपनी जिंदगी को अगर हमें केवल 6 महीने में बदल डालना हो तो हमें कौन कौन से काम जरूर करने चाहिए। 6 महीने का टारगेट होगा और 6 महीने में हमारा जिंदगी बदल चुकी होगी, आज इसी बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरुआत इस प्यारे से भजन के साथ।

छह महीने में ही हम अपनी पूरी जिंदगी बदल सकते हैं। गुड मॉर्निंग, नमस्ते, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सुन रहे हैं सुभारती आजाद हिंद रेडियो 90.0 एफएम। दोस्तों, हम ना बहुत सारे सपने देखते हैं, उनको सच करने की लगातार कोशिश करते रहते हैं, फिर भी लाइफ जो है ना ये इतनी ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल है, कल क्या होगा ये सच में किसी को नहीं पता होता। हमारी आज की सारी प्लानिंग धरी की धरी रह जाती है, फिर भी लाइफ में कभी हार नहीं मानना दोस्तों। स्वामी विवेकानंद जी भी कहते हैं कि कभी कभी गुच्छे की आखिरी चाबी ताला खोल सकती है। आज का हमारा टॉपिक है, अगर हम टारगेट बना लें तो छह महीने में अपनी पूरी लाइफ को बदल कर रख सकते हैं। अगर अगले छह महीने में आप अपनी जिंदगी छह नियम को फॉलो कर लें तो बदल सकते हैं, यानी पुरानी जिंदगी पुरानी पहचान पूरी तरह से बदल चुकी होगी अगर आप छह नियम को लागू करेंगे, और वो छह नियम इस भजन के बाद बताएंगे।

जय हिंद, वंदे मातरम, सुप्रभात। आप सुन रहे हैं सुभारती आजाद हिंद रेडियो 90.0 एफएम। मैं हूं वास्तु कृष्णा। आज का हमारा मुद्दा है कि अगर लाइफ में हम फेल हो रहे हैं, लगातार कोई ना कोई परेशानी आती चली जा रही है, तो हम कैसे अपनी जिंदगी को बदल सकते हैं, कहां हम गलती कर रहे हैं, ये पकड़ना बहुत जरूरी है। तो 6 महीने के लिए 6 पॉइंट्स आपको पकड़ने हैं, 6 नियम आपको अपनी जिंदगी के बनाने हैं। सबसे पहला नियम एक्सरसाइज का होना चाहिए। सबसे पहले अपने शरीर पर काम करो। रोज थोड़ी देर आपको व्यायाम करना है, क्योंकि कमजोर शरीर के साथ मजबूत जिंदगी बनाना नामुमकिन होता है दोस्तों। शरीर बदलेगा तो ऊर्जा बदलेगी, ऊर्जा बदलेगी तो सोच बदलेगी, सोच बदलेगी तो आपकी जिंदगी पूरी तरह से बदलना शुरू हो जाएगी। नंबर 2, मेडिटेशन। मेडिटेशन यानी कि ध्यान लगाना, अपने आप से बात करना, अपने आप को डीप एनालिसिस करना, अपने भीतर झांकना। दरअसल मेडिटेशन सिर्फ बैठकर आंखें बंद करने को इसको नहीं कहते हैं, जरा डीप जाना होता है, क्योंकि मेडिटेशन से आपका दिमाग मजबूत होता है, आपका मस्तिष्क सेंटर में आता है वापस। और इस जिंदगी में सबसे पावरफुल हथियार हमारा दिमाग ही होता है। शरीर मजबूत तो कर लेंगे एक्सरसाइज करके, अगर दिमाग परेशान रहेगा, इरिटेट रहेंगे आप, टेंशन में रहेंगे, डिप्रेशन में चले जाएंगे, तो कुछ कर नहीं पाएंगे। इसीलिए रोज कम से कम कुछ मिनट, कुछ घंटे, चाहे आधा घंटा दें, 15 मिनट दें, अपने दिमाग को शांत करने के लिए मेडिटेशन करें।

अपनी पसंद का म्यूजिक सुने, थोड़ा टहलना शुरू कीजिए पार्क वगैरह में, सुबह को जल्दी उठना शुरू कीजिए, हो सके तो सूर्योदय से पहले उठ जाइए। जिस इंसान ने अपने दिमाग को शांत करना सीख लिया उसने अपनी आधी लड़ाइयां जीत ली, ये मानकर चलिए। ये बिल्कुल वैसे है जैसे कि कोई लकड़ी काटने वाला पहले अपनी कुल्हाड़ी को धार लगा ले। हमारा दिमाग शार्प होना चाहिए, धार मजबूत होगी ध्यान लगाने से। आगे और अभी 4 टॉपिक बचे हैं जिनके बारे में मैं बताऊंगा, अगर आपको 6 महीने में अपनी जिंदगी बदलनी है तो उनके ऊपर हमें कैसे काम करना है।

90.0 FM। दोस्तों मैं हूं आपके साथ वास्तु कृष्णा। बातें तो हमेशा हम यहां पर बहुत सारी करते ही हैं, लेकिन जिंदगी को बदलना बड़ा जरूरी है। दोस्तों हम सभी के कोई ना कोई सपने होते हैं, ख्वाब होते हैं। कई बार जिंदगी की आपाधापी में, जिम्मेदारियों में, ऐसे मजबूरियों में फंसकर दूसरी जिम्मेदारियां कंधों पर ज्यादा बढ़ गई हैं, इसलिए सपनों को हम दरकिनार कर देते हैं, हम एक साइड कर देते हैं और अपने ही ख्वाबों को भूल बैठते हैं। उनको सच किया जा सकता है अगर आप 6 महीना मात्र कोई टारगेट बना लें। आपकी जिंदगी का जो भी मकसद है, अच्छी नौकरी में अच्छी पोजीशन हासिल करना, सैलरी बढ़ाना, बिजनेस में कुछ और तगड़ी ग्रोथ करना, इस सब के लिए आपके पास एक प्लान होना चाहिए। आज हम इसी बारे में डिस्कस कर रहे हैं। मेडिटेशन आपको करना है ताकि आपका दिमाग शार्प हो, मजबूत हो। एक मजबूत दिमाग होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जैसी विपरीत परिस्थितियां आती हैं, सबसे पहले इंसान का दिमाग ही साथ छोड़ता है। आदमी इरिटेट रहना शुरू हो जाता है, और इंसान जितना ज्यादा इरिटेट या स्ट्रेस में, तनाव में रहेगा, उसका एक भी डिसीजन ठीक नहीं होगा, वो खुश नहीं रहेगा, वो अक्सर गुस्से में या चिड़चिड़ापन में रहेगा, और ऐसे इंसान कभी भी ठीक डिसीजन नहीं ले सकते। और एक स्वस्थ दिमाग एक स्वस्थ शरीर में ही रह सकता है। उसके लिए आपको एक्सरसाइज रोज करनी है, चाहे थोड़ी सी करें पर करना जरूर है, चाहे किसी भी टाइम करें। ऐसा नहीं होना चाहिए कि सुबह तो निकल के जल्दी उठ नहीं पाए इसलिए अब एक्सरसाइज करनी ही नहीं, अब सुबह को ही करेंगे। नहीं, हर रोज करनी है, चाहे कभी भी करें। बड़े बड़े जो फिटनेस इन्फ्लुएंसर हैं या जिन लोगों ने जिंदगी में अच्छे शरीर अपने बना रखे हैं, वो चाहे रात को 2 बजे करें, 3 बजे करें, पर एक्सरसाइज किए बिना वो लोग सोते नहीं है। तीसरा मुद्दा है स्किल। दोस्तों खुद की कीमत बढ़ानी जरूरी है। अब तीसरा कदम है हमारा कि हर दिन कुछ नया सीखना है। कोई नई भाषा, कोई नई टेक्नोलॉजी, कोई कम्युनिकेशन स्किल, एडिटिंग या बिजनेस का कोई कोर्स करना है, या जिस भी प्रोफेशन में आप हैं उससे रिलेटेड इतनी सारी चीजें हर रोज अपडेट हो जाती हैं। अपने फील्ड से जुड़ा हुआ कुछ ना कुछ आप भी सीखते रहे, क्योंकि दुनिया आपकी मेहनत का नहीं, आपकी वैल्यू का भुगतान करती है। अपनी वैल्यू बढ़ाइए दोस्तों, और वैल्यू बढ़ती है अपनी स्किल को इम्प्रूव करके। जितने भी बड़े लोग हैं दुनिया में, वो आज भी हर रोज अपनी स्किल्स को बढ़ा रहे हैं। आप भी बढ़ाइए।

तो आज हम बात कर रहे हैं अपनी जिंदगी को मात्र 6 महीने में कैसे बदलें। गुड मॉर्निंग, नमस्ते, वंदे मातरम, जय हिंद। एक और पावरफुल सुबह है ये। अगर लाइफ में सपने टूट रहे हैं, आप पीछे रह गए हैं और स्ट्रेस में जा रहे हैं, तनाव में जा रहे हैं, तो रुकिए, ठहरिए, जरा सोचिए, कहीं कोई गलती तो नहीं कर बैठे हैं। उस गलती को सुधारिए। इस दुनिया में वही इंसान आगे बढ़ पाता है जो अपनी गलती को एक्सेप्ट करता है, क्योंकि जिस वक्त हम अपनी गलती को रियलाइज करते हैं तभी उसको ठीक करते हैं। और जिस इंसान को आदत पड़ जाती है ना अपनी गलती को ठीक करने की, वही इंप्रूव कर जाता है, वही आगे बढ़ जाता है। तो हमने 3 टॉपिक्स के ऊपर अभी तक बात की है कि अगर हम मात्र 6 महीने में अपनी आदत और अपनी जिंदगी दोनों को बदलना चाहें, सबसे पहले मेडिटेशन शुरू कीजिए, उसके बाद एक्सरसाइज जरूर करना है रोज, तीसरा आपको हर बार कोई ना कोई स्किल जरूर सीखनी चाहिए, क्योंकि आपकी वैल्यू बढ़ेगी जितनी ज्यादा स्किल आपकी इंप्रूव हो जाएगी। कोई ना कोई स्किल आपके पास ऐसी होनी चाहिए जो दूसरों के पास नहीं है। और उसके बाद अच्छा खाना है आपको, प्योर फूड खाना है, शरीर में अंदर वो डालना है आपको जो आपके लिए जरूरी है, हेल्दी हो। फिर अपनी थाली को देखना है आपको। अगर शरीर में हर दिन हम फास्ट फूड, जंक फूड और न जाने क्या क्या डालते रहेंगे, तो यकीन मानिए दोस्तों, ये जंक फूड या फास्ट फूड या जो भी इस तरह के पेय पदार्थ, तरल पदार्थ, खाने के पदार्थ, जो भी आप कुछ चीजें कंज्यूम करते हैं, चाहे वो नशा पत्ती वगैरह हो या कुछ भी, आप ऐसी चीज खाते हैं जो शरीर के लिए नुकसानदायक है, कभी भी आप आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि ये आपको बीमार करेंगी। जब आदमी बीमारी होता रहेगा ना, और उसको आधा टाइम तो अपनी हेल्थ के लिए लगा रहता है, इसलिए बहुत सारी चीजों में खाना भी एक बहुत बड़ा मुद्दा होता है। वो कभी नहीं खाना जिस चीज से आपको परहेज बताया गया है। आपको खुद को पता होता है कि क्या खाने से आपको समस्या हो जाती है, आपको पता है कि आपके लिए क्या बिल्कुल भी ठीक नहीं है, इसलिए दोस्तों बिल्कुल नहीं खाना। और उसके बाद हम बात करने वाले हैं बिलीव के बारे में, सेल्फ कॉन्फिडेंस के बारे में, खुद पर विश्वास, भरोसे के बारे में। अगर जिंदगी बदलना चाहते हैं तो ये कुछ मुद्दे हैं जिन पर हमें काम जरूर करना होगा। इस भजन के बाद बात करेंगे।

गुड मॉर्निंग, नमस्ते, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं हूं वास्तु कृष्णा और आप सुन रहे हैं सुभारती, आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM। दोस्तों, हम अपने जीवन को जल्दी से जल्दी कैसे बदलें, कैसे अपने टारगेट के करीब पहुंचे, इसे ट्रांसफॉर्म भी बोल सकते हैं, रूपांतरण। वैसे इस दुनिया में आज की डेट में सबसे जल्दी ट्रांसफॉर्मेशन की पावर किस में है? पैसे में है। जिसके पास पैसा होता है वो उतनी ही जल्दी स्पीड से ट्रांसफॉर्म करता है अपनी लाइफ को। लेकिन अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आपको पैसा बनाना पड़ेगा, और पैसा बनता है स्किल्स की बदौलत। अपनी स्किल्स को इंप्रूव कीजिए, कोई नई स्किल्स भी डेवलप करना जरूरी है, और सबसे ज्यादा जरूरी अपने ऊपर भरोसा रखना है। ये आखिरी नहीं, सबसे पहली चीज होनी चाहिए कि पूरी दुनिया भी आपके खिलाफ खड़ी हो, आपकी सोच के साथ तालमेल ना बैठा पा रही हो, पर आपको मालूम है, आपको मालूम है कि आप ठीक है। तो अपने ऊपर भरोसा रखना दोस्तों। जिस दिन अपने ऊपर हमें भरोसा हो जाता है, उस दिन दूसरों की स्वीकृति की भी जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि सेल्फ कॉन्फिडेंस का मतलब होता है कि भगवान भी मेरे साथ हैं। अपने ऊपर ट्रस्ट रखना, अपने ऊपर भरोसा रखना, क्योंकि जब भयानक और विपरीत से विपरीत परिस्थितियां होती हैं, तब आपकी खुद की हिम्मत ही काम आती है। और कहते हैं कि हिम्मत है मर्दा ते मदद है खुदा। ईश्वर भी, ऊपर वाला भी उसी की मदद करता है जो अपनी मदद खुद करता है। इसीलिए 6 महीने हो, 6 साल हो, 6 दिन हो या 6 मिनट, लाइफ को बदलने के लिए बस एक फैसला काफी होता है दोस्तों। तो हमने बात की एक्सरसाइज की, मेडिटेशन की, एनर्जी की, कंट्रोल की, स्किल की, डिसिप्लिन की, अपॉर्चुनिटी, ये सब आपके पीछे आएगा जब आप अपने पर भरोसा करेंगे।

0: जय हिंद, वंदे मातरम। सुभारती आजाद हिंद रेडियो पर आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं वास्तु कृष्णा। और अपनी लाइफ को हम कैसे बदल सकते हैं, जितनी जल्दी बदलना चाहें उसके लिए बदलनी पड़ेगी आदत। एक बात आपने खूब सुनी होगी कि 21 दिन में कोई आदत छूट सकती है और नई आदत बढ़ सकती है, लेकिन 21 दिन तो आखिरी होता है ना, डे वन कैसे करेंगे? असली खेल होता है पहले दिन। जैसे कोई कहता है कि हम इतने ज्यादा प्रोडक्ट बेच देंगे सेल्स में, है ना, प्रॉब्लम है पहला प्रोडक्ट कैसे बिकेगा, वो पहला आइटम कैसे बिकेगा। यानी समस्या 21 दिन की नहीं है, समस्या पहले दिन की है कि पहले दिन बिस्तर से जल्दी उठना, पहले दिन अपनी आदत से लड़के आपको आगे बढ़ना, पहले दिन समोसा गर्मा गर्म करारा आपके सामने होगा चटनी के साथ, पर आपको खाना नहीं होगा, वो है समस्या। आखिरी दिन तो कोई भी छोड़ सकता है, पहले दिन मन करेगा भीतर से, दिल बोलेगा कि खा लो, थोड़ा सा तो खा लो, चलो कल से कर देते। ये दिमाग इतना शातिर होता है, बहुत जल्दी 5 सेकंड इसकी लिमिट होती है, 5 सेकंड में डिसीजन बदल देता है। अगर आपने 5 सेकंड में अपना डिसीजन प्रभावशाली तरीके से आगे नहीं किया तो दिमाग अपना बदल देता है। 5 सेकंड में अगर आपने अलार्म क्लॉक को या अपने मोबाइल के अलार्म को बंद कर दिया तो फिर आप सो जाएंगे, फिर नहीं उठा जाएगा। तो अपनी आदत को कैसे बदलें, कैसे कंट्रोल करें, उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी भरोसा अपने ऊपर करना है। मैं कर सकता हूं, मुझे करना ही है, मेरे पास दूसरी कोई चॉइस नहीं। जब हम ऐसी सोच रखेंगे तभी हमारा जीवन आगे बदल सकता है। तो बात सिर्फ 6 महीने की नहीं, आपको 6 महीने हर रोज पहले ही दिन की तरह खुद से लड़ना होगा। आपने ऐसे बहुत से लोग देखे होंगे जो महीनों महीनों तक नशे को छोड़ देते हैं, शराब वगैरह को छोड़ देते हैं, जंक फूड को छोड़ देते हैं और फिर एक दिन न जाने कैसे शुरुआत हो जाती है। तो लड़ाई दोस्तों हर रोज है, आखिरी दम तक है।
1: अत श्री नरसिंह कवच, ओम श्री नरसिंहाय नमः। ब्रह्मोवाच, अनेक मंत्र कोटिश नृसिंग नाम मुच्चरेत, अनेक विधि रक्षार्थम विषरोग निवारणम्। ओम अश्व श्री लक्ष्मी नृसिंह।

मध्यमाभ्याम नमः, ओम रोम अनामिकाभ्याम नमः, ओम व्रोम कनिष्ठिकाभ्याम नमः, ओम ज्रोम करतल करपृष्ठाभ्याम नमः, अद हृदयादिन्यासः, सोम हृदयाय नमः, रोम शिरसे स्वाहा, रोम शिखाय वौषट, रोम कवचाय हुम, व्रोम नेत्रत्राय वौषट।

0: आप भाषा और साहित्य की दुनिया में चमकना चाहते हैं? तो देर किस बात की, आज ही प्रवेश लें स्वामी विवेकानंद सुभारती विश्वविद्यालय मेरठ के भाषा विभाग में।
1: यहाँ आपको मिलेंगे भाषा विभाग द्वारा संचालित ये बेहतरीन पाठ्यक्रम: बीए ऑनर्स हिंदी, बीए ऑनर्स इंग्लिश, एमए हिंदी, एमए इंग्लिश। यहाँ आपको मिलेगा एआई आधारित आधुनिक तकनीक से भाषा सीखने

0: का अनोखा अवसर, अनुभवी प्रोफेसर्स का मार्गदर्शन, यूजीसी नेट, जेआरएफ तथा प्रतियोगी परीक्षाओं की पक्की तैयारी, मीडिया, अनुवाद, कॉरपोरेट या शिक्षण, अपने हर करियर गोल को दें एक नई उड़ान।
1: एडमिशन्स के लिए आज ही कॉल करें 9639222290 और 9639222293 पर, या विजिट करें भाषा विभाग, स्वामी विवेकानंद सुभारती विश्वविद्यालय, मेरठ में।
2: सुभारती कैंसर हॉस्पिटल, यहाँ आपको सिर्फ उपचार नहीं मिलता, आपको मिलता है प्यार, समर्थन और सबसे जरूरी, उम्मीद। हम जानते हैं कि हर मरीज की जिंदगी की कहानी अलग होती है और हम हर कहानी को जीतने की पूरी कोशिश करते हैं। हमारे विशेषज्ञ डॉक्टरों के साथ हर कदम पर हम आपको उम्मीद और जीवन की नई राह दिखाते हैं। कैंसर के खिलाफ इस लड़ाई में हम आपके साथ हैं। विश्व स्तरीय और अत्याधुनिक इलाज, सुभारती कैंसर हॉस्पिटल। टू नो मोर कॉल नाउ 9639010313। सन्नाटा पसर जाता है उस परिवार में जहां किसी को कैंसर हो जाए। वीरानी लगती है ये दुनिया जिस परिवार में किसी को कैंसर हो जाए। अब कैंसर से डरिए नहीं, सुभारती कैंसर हॉस्पिटल। विश्व स्तरीय और अत्याधुनिक इलाज, कैंसर स्क्रीनिंग एंड डायग्नोसिस, ऑल टाइप ऑफ लेटेस्ट एंड एडवांस रेडिएशन थेरेपी, ऑल टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स कैंसर सर्जरी, हार्मोनल थेरेपी। नो मोर कॉल नाउ 9639010313।
3: यू ही मारते रहे दम तो जिंदगी हो जाएगी बेदम। बचाना चाहते हो किसी का जीवन तो संपर्क करे विश्व स्तरीय सुविधाओं से युक्त सुभारती नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केंद्र, सुभारती हॉस्पिटल झाजरा देहरादून। कॉल करे 9760920865।
2: लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड की ठोर, अत्याधुनिक नर्सरी, ईसीजी, इको, कार्डियोग्राफी, सेमी प्राइवेट और प्राइवेट रूम्स, डिजिटल एक्सरे हो या अल्ट्रासाउंड, न्यूनेटल केयर यूनिट और बच्चों के लिए विशेष ऑपरेशन थिएटर, 2400 घंटे पैथोलॉजी लैब्स। लोकप्रिय हॉस्पिटल की ठोर में आज ही आकर मिले, हमारे अनुभवी डॉक्टर और विशेषज्ञ आपके स्वास्थ्य की देखभाल के लिए 2400 घंटे तैयार। अत्याधुनिक उपकरण और तकनीक जो आपको सर्वोत्तम सेवाएं प्रदान करें। लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड की ठोर। जुकाम, खांसी या बुखार कई दिनों तक रहे तो छोटे बच्चों को निमोनिया हो सकता है। अपने बच्चों के बेहतर इलाज के लिए आज ही संपर्क करें लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड किठोर, जहां पर 2400 घंटे हमारे बाल रोग विशेषज्ञ आपके बच्चों की बेहतर देखभाल के लिए उपलब्ध, 2400 घंटे इमरजेंसी सुविधाओं के साथ। लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड किठोर, एचपी पेट्रोल पंप के सामने। कॉल करें 8194007405।
4: लोकप्रिय अस्पताल सिर्फ नाम से ही नहीं बल्कि अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ मिलने वाली सेवाओं के कारण भी लोकप्रिय है। यहाँ आपको एक ही छत के नीचे मिलेंगे मेडिसिन, स्त्री रोग विशेषज्ञ, बाल रोग विशेषज्ञ, जनरल सर्जरी, गुर्दा रोग विशेषज्ञ, गुर्दा और मूत्र रोग विशेषज्ञ, दांत और मुंह के रोग विशेषज्ञ, आँख, कान, नाक और गला रोग विशेषज्ञ, हड्डी रोग विशेषज्ञ, हृदय और छाती रोग विशेषज्ञ, थायराइड और मधुमेह रोग विशेषज्ञ, ब्रेन और स्पाइन रोग विशेषज्ञ। लोकप्रिय अस्पताल किठोर में
5: यहाँ आपको मिलेंगे सभी प्रकार के ट्रॉमा एवं इमरजेंसी सुविधाएं, जैसे नॉर्मल डिलीवरी एवं ऑपरेशन डिलीवरी, आधुनिक आईसीयू एवं वेंटिलेटर की सुविधाएं, मॉडल ऑपरेशन थिएटर, आधुनिक नर्सरी, ईसीजी व इको कार्डियोग्राफी, जनरल वार्ड, सेमी प्राइवेट और प्राइवेट रूम्स, डिजिटल एक्सरे एवं अल्ट्रासाउंड, 24 घंटे कार्यरत पैथोलॉजी लैब्स, 24 घंटे डायलिसिस की सुविधा, 24 घंटे मेडिकल स्टोर जैसे अनेकों सुविधाओं के साथ हम आपको 24/7 की इमरजेंसी सेवाएं भी प्रदान करते हैं।
4: अपनी बीमारियों और समस्याओं से निजात पाने के लिए मिले 120 बेड वाले लोकप्रिय अस्पताल सुपर मल्टी स्पेशलिटी किठोर के विशेषज्ञों से और पाएं सारी बीमारियों से निजात। एचपी पेट्रोल पंप के सामने निकट नहर गढ़ रोड किठोर। संपर्क कीजिए 8194007405।
6: Are you looking for a place from where your voice get a fame? Are you looking for a perfect platform to record your voice? Then why are you worrying a lot? Captain Ram Singh Sound Studio Subharti is here for you. Solution of your problem is under one roof. We provide facilities like dubbing, vocal recording, music composing, mixing and mastering. Visit here and we are giving you guarantee you gonna love it. Address Tathagat Block, 6th floor, Swami Vivekanand Subharti University, Meerut. For more information, contact 9759303022.
2: जब जीवन में अंधेरे घेर लेते हैं तब हर किसी को एक उम्मीद की किरण की तलाश होती है। सुभारती अस्पताल में हम सिर्फ इलाज नहीं करते, हम आपकी उम्मीदों को बचाते हैं। यहाँ हर दर्द का इलाज है, हर समस्या का समाधान है, क्योंकि हम जानते हैं उम्मीद कभी खत्म नहीं होती। सुभारती अस्पताल, जहाँ हर मरीज को मिलती है जिंदगी की नई उम्मीद। 24 घंटे हम हैं आपकी सेवा में। किसी भी प्रकार की समस्या होने पर आज ही आइए छत्रपति शिवाजी सुभारती हॉस्पिटल, NH 58 परतापुर बाईपास रोड, मेरठ। दमार्स रिजॉर्ट्स, चाहे आपकी शादी हो, फैमिली आउटिंग हो या एक खास डिनर गेट टुगेदर हो, दमार्स रिजॉर्ट्स में बनाए अपनी जिंदगी का हर पल रॉयल। किटी पार्टीज हो या इंटीमेट गैदरिंग, हमारे ग्रैंड बैंकेट हॉल्स, फाइन डाइनिंग और शाही हॉस्पिटैलिटी से हर इवेंट हो जाएगा यादगार। द मार्स रिजॉर्ट्स, एक रॉयल एक्सपीरियंस नियर सुभारती, हरिद्वार बाईपास रोड, मेरठ।

0: सुभारती आजाद हिंद रेडियो पर।
1: जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है सुभारती आजाद हिंद रेडियो 90.0 एफएम पर। मैं हूँ वास्तु कृष्णा। ये कार्यक्रम है राष्ट्र चेतना। दोस्तों, अगर बचपन में किसी को सही से संस्कार मिल जाए, सभी जानकारियां मिल जाए, हमारा देश क्या है, इतिहास क्या है, चरित्र क्या होता है, अगर ये सभी बातें एक बच्चे को ठीक तरह से बता दी जाए तो बच्चा कभी भी गलत रास्ते पर नहीं चल सकता। मैंने एक पुस्तक पढ़ी, राष्ट्र अनुभूति, जिसके लेखक सुभारती विश्वविद्यालय के संस्थापक परम आदरणीय डॉक्टर अतुल कृष्ण जी हैं। जब मैंने इस पुस्तक को पढ़ा, मैं एक बार आपको बताना चाहूंगा, इस पुस्तक में तमाम संस्कार निहित है। अगर ये पुस्तक आप खुद पढ़ते हैं, अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, या इस पुस्तक पर आधारित ये राष्ट्र चेतना कार्यक्रम बच्चों को सुनाते हैं, तो उसको तमाम संस्कार मिल जाएंगे। इस पुस्तक में परम आदरणीय डॉक्टर अतुल कृष्ण जी ने उन सभी विषयों को ले लिया है जो किसी भी बच्चे के एक बेहतर भविष्य निर्माण के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। भारत और भारत की संस्कृति, चरित्र क्या है, राष्ट्रीय चरित्र क्या होता है, माता पिता का आदर और सम्मान किस प्रकार करें, शिक्षकों और गुरुओं संतों का सम्मान किस प्रकार करें, जीवन उपयोगी दैनिक व्यवहार क्या होता है, कार्य का सम्मान, व्यायाम, योग, ध्यान एवं शारीरिक साधना, यातायात के नियमों का पालन करना, पर्यावरण और प्रदूषण को किस प्रकार कंट्रोल करें, मोबाइल का उपयोग और प्रयोग, नशे से किस प्रकार दूरी बनाई जा सकती है, नशे को किस प्रकार से छोड़ना चाहिए, सनातन और सनातन धर्म क्या है, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम, राष्ट्रगान यानी जन गण मन, आजाद हिंद गान क्या है, जय हिंद का नारा क्या और क्यों होता है और क्यों होना चाहिए, और इसका ज्ञान हर बच्चे को किस प्रकार होना चाहिए, सैनिकों और उनके परिजनों का, परिवारों का सम्मान, स्वतंत्रता कैसे मिली, बिना लाठी, बिना खड़क, बिना ढाल के नहीं मिली, कितने कोटि कोटि क्रांति वीरों ने अपना योगदान दिया, संयुक्त भारत का स्वतंत्रता दिवस क्या होता है, 21 अक्टूबर की विशेषता क्या है, भारत का ध्वज क्या है, भारत का संविधान क्या है। तो राष्ट्र अनुभूति नाम की इस पुस्तक में इसके लेखक परम आदरणीय डॉक्टर अतुल कृष्ण जी ने हर विषय को ले लिया है, यानी हर वो संस्कार जो हमारी आने वाली पीढ़ी को होना चाहिए। सिर्फ ये कहने से काम नहीं चलता मित्रों कि हमने अपने बच्चों को संस्कार दे दिए, अपने बच्चों को वो सारे संस्कार कंट्रोल रूप में देना जिससे उसका भविष्य का निर्माण होगा। हर उस बात पर कंट्रोल एक माता पिता का होना चाहिए जो आपके बच्चे के चरित्र का निर्माण करती है। पुस्तक हमको सिखाती है कि हमें अपने बच्चों का लालन पालन किस प्रकार करना चाहिए, इसीलिए ये कार्यक्रम बहुत ही महत्वपूर्ण बन जाता है। इसका नाम है राष्ट्र चेतना। आपका फिर से स्वागत करता हूँ इस अलौकिक कार्यक्रम में। ये अपने बच्चों को जरूर सुनाइएगा, क्योंकि एक एक विषय हमारे बच्चों को संस्कार देने का काम करेगा। तो चलिए, फिर से आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में।

सुभारती आजाद हिंद रेडियो 90.0 एफएम पर आपका स्वागत है। मैं हूँ वास्तु कृष्णा और ये कार्यक्रम है राष्ट्र चेतना। जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया, इस कार्यक्रम का आधार है सुभारती विश्वविद्यालय के संस्थापक परम आदरणीय डॉक्टर अतुल कृष्ण जी द्वारा लिखित एक पुस्तक जिसका नाम है राष्ट्र अनुभूति, एक भारत श्रेष्ठ भारत। ये सपना देखने वाले आदरणीय डॉक्टर अतुल कृष्ण जी किताब के माध्यम से हमें समझाते हैं भारतीय संस्कृति के विषय में। किसी क्षेत्र विशेष में विकसित जीवन पद्धति, दर्शन, चिंतन धारा, इतिहास, गौरवशाली अतीत, प्रेरणादायक प्रसंग और महापुरुषों के महान कृत्यों से परिभाषित होती है। संस्कृति को किसी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में नहीं बांधा जा सकता। भारतीय संस्कृति विश्व की महानतम और प्राचीनतम संस्कृति है। विश्व के इतिहास को देखें तो अन्य देशों की संस्कृतियां समय की धारा के साथ नष्ट होती चली गई, लेकिन समन्वयवादी दृष्टि के कारण भारतीय संस्कृति सदा स्थिर रही और समय की गति के साथ पहले से अधिक निखरती चली गई। भारतीय संस्कृति के समन्वय के अतिरिक्त दयालुता, उदारता, अहिंसा मूल भाव है। कभी कभी हम किसी भी भाव को असीमित एवं संपूर्ण समझने की भूल कर जाते हैं। हमको ऐसा नहीं करना चाहिए। सभी भावों को सम्यक रूप से समझना है। तथागत भगवान बुद्ध ने अपने सभी विचारों में सम्यकता का मिश्रण किया ताकि आमजन किसी भी भाव को संपूर्ण एवं असीमित समझकर उसके दुष्प्रभाव से हानि न उठाए। कुछ उदाहरण जिनसे आप शिक्षा ले सकते हैं, जैसे दयालुता। एक नदी के भीतर एक सन्यासी नहाने के लिए खड़े थे। उन्होंने देखा कि उसके पास से एक बिच्छू बहता चला जा रहा है। उसने बिच्छू को अपने हाथ से नदी के बाहर फेंकना चाहा। अपने स्वभाव के कारण बिच्छू का संपर्क जैसे ही सन्यासी व्यक्ति की हथेली पर हुआ, बिच्छू ने डंक मार दिया। मारे गए डंक की पीड़ा से उस सन्यासी के हाथ से वो बिच्छू पुनः पानी में गिर गया। अगली बार भी सन्यासी ने उस बिच्छू को बचाने के लिए वैसा ही किया। बिच्छू ने पुनः डंक मारा। बार बार ऐसा करता देख बाहर खड़े एक सामान्य जन द्वारा सन्यासी से पूछा गया कि जब ये बिच्छू बार बार आपको डंक मार रहा है तो आप इसे बचाने का प्रयत्न क्यों कर रहे हैं? तब सन्यासी ने कहा, मेरा स्वभाव दया और दयालुता है एवं जब बिच्छू का स्वभाव डंक मारना है और वो अपना स्वभाव नहीं छोड़ सकता तो भला मैं अपना स्वभाव क्यों छोड़ दूं? ये अत्यंत सुंदर उपदेश है, परंतु इस सिद्धांत का अनुपालन सम्यक रूप से किया जाना चाहिए। कुछ लोग जिनका स्वभाव ही दुष्टता पूर्ण हो, उनके प्रति दयालुता करने के स्थान पर उनसे बचना ही अच्छा है। स्वागत है आप सभी का सुभारती आजाद हिंद रेडियो के इस खास कार्यक्रम राष्ट्र चेतना में। जय हिंद।

जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है सुभारती आजाद हिंद रेडियो 90.0 एफएम पर। मैं हूँ वास्तु कृष्णा। दोस्तों, ये कार्यक्रम है राष्ट्र चेतना, और जैसा कि आपको पता है ये कार्यक्रम आधारित है राष्ट्र अनुभूति नाम की किताब पर, जिसे लिखा है सुभारती विश्वविद्यालय के संस्थापक परमादरणीय डॉक्टर अतुल कृष्ण जी ने। वो कहते हैं एक भारत श्रेष्ठ भारत, और उन्होंने ही हमारे सुभारती आजाद हिंद रेडियो को नारा दिया राष्ट्र प्रथम सदैव प्रथम। आज के भाग में हम बात करेंगे कार्य का सम्मान को लेकर। दोस्तों, परमादरणीय डॉक्टर अतुल कृष्ण जी हमको समझाते हैं अपनी किताब के माध्यम से। वो कहते हैं कि याद रखें, कोई काम छोटा नहीं होता, हर काम का अपना महत्व है। समाज को आगे बढ़ाने में हर व्यक्ति और हर कार्य का योगदान होता है। उदाहरण के लिए अपने शरीर को देखें, प्रकृति ने आपके शरीर में विभिन्न अंग बनाए हैं जिनके अलग अलग काम होते हैं। क्या आप कह सकते हैं कि अमुक अंग का काम छोटा है? सभी अंग महत्वपूर्ण होते हैं। उसी प्रकार हमारा समाज होता है। समाज के संचालन के लिए विभिन्न लोग विभिन्न कार्य करते हैं, तभी समाज, परिवार और देश चलता है। किसी भी काम को हीन भावना से या हीन दृष्टि से नहीं देखना चाहिए, हर काम को सम्मान के साथ देखना चाहिए। किताब के माध्यम से डॉक्टर साहब हमको समझाते हैं कि आप अपने स्कूल के सफाई कर्मचारी को देखिए, वो अगर अपना काम ना करे तो स्कूल गंदा हो जाएगा, क्या आप पढ़ाई कर पाएंगे? एक बढ़ई को देखिए, वो आपकी मेज, कुर्सी और फर्नीचर बनाता है। अब जरा सोचिए, अगर वो अपना काम ना करे तो क्या आप आराम से बैठ पाएंगे, पढ़ाई कर पाएंगे? आप बिजली के मैकेनिक को देखिए, यदि वो बिजली की रिपेयर ना करे और बिजली चली जाए तो क्या आप अपना कोई भी काम सुलभ तरीके से कर पाएंगे भला? हर कार्य, चाहे वो बढ़ई गिरी हो, बिजली का काम हो या सफाई का,

या कोई भी काम, सबका अपना महत्व है। जब आप ये सोच विकसित कर लेते हैं तो आप सिर्फ अच्छे इंसान ही नहीं बनते बल्कि एक जिम्मेदार नागरिक भी बनते हैं। जी हाँ, एक सिविक सेंस वाला नागरिक। आगे किताब हमको समझाती है, सिखाती है। क्या आप कभी अपने घर में झाड़ू लगाते हैं? क्या आप कभी अपने घर में अलग अलग जगहों पर, विभिन्न जगहों पर जमी हुई धूल की सफाई करते हैं? क्या आप अपने स्कूल की सफाई में अथवा अन्य कार्यों में वहाँ के शिक्षकों और कार्यकर्ताओं की सहायता करते हैं? क्या आप कभी अपनी कॉलोनी के पार्क की सफाई स्वयं करते हैं या उसकी सफाई में कोई सहायक बनते हैं? क्या आप अपने छोटे कपड़े स्वयं धोते हैं? क्या आप कभी अपनी माताजी या भोजन बनाने वाले कर्मी की भोजन बनाने में मदद करते हैं? क्या आप अपनी कमीज में स्वयं बटन टांग सकते हैं, लगा सकते हैं? क्या सिलाई कढ़ाई बुनाई में आपको कुछ आता है? क्या सुबह उठकर अपना बिस्तर स्वयं लगाते हैं, बंद करते हैं? क्या आप कभी सब्जी स्वयं धोते हैं, छीलते हैं या काटते हैं? क्या आप अपने घर में उपलब्ध भूमि या जमीन या गमले में कभी कोई सब्जी, किसी के बीज बोते हैं और उसमें से निकले हुए पौधे को बढ़ते हुए देखते हैं, उससे उपजी हुई ताजी सब्जी लाकर अपनी माताजी को या पिताजी को देते हैं? क्या आप खाना खाने के बाद अपने बर्तन स्वयं चौके या रसोई में धुलने के लिए रखने जाते हैं या मेज पर ही छोड़ देते हैं? क्या आप अपने वे बर्तन जिसमें आपने खाना खाया हो कभी खुद भी धोते हैं? क्या आप बाजार से अपने घर का सामान लाने में अपने पिताजी या माताजी की सहायता करते हैं? क्या आपकी मेज टूट जाए तो क्या आप उसे खुद ठीक कर सकते हैं? यदि इन सभी बातों में से आप कुछ भी करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन यदि नहीं करते तो आज से ही शुरू करें। आप कह सकते हैं कि इन कामों को करने के लिए तो आपके घर में अलग अलग कार्यकर्ता काम करते ही रहते हैं। यदि ऐसा है तब भी आप उनका हाथ बटा सकते हैं। ये सब करने से आप आत्मनिर्भर बनते हैं। स्वयं काम करने का महत्व क्या होता है दोस्तों? व्यवसायिक कार्य क्यों सीखने चाहिए? आप सोच रहे होंगे कि पढ़ाई के साथ साथ ये व्यवसायिक कार्य सीखने से क्या आवश्यकता है, लेकिन ये जान लीजिए कि जब भी आप व्यवसायिक कार्यों जैसे बढ़ईगिरी, प्लंबिंग या बिजली का काम सीखते हैं तो आप अपने को अपने और दूसरों के लिए उपयोगी बनाते हैं। इतनी सारी बातें जो मैंने अभी यहाँ पर आपको किताब से पढ़कर बताई, दोस्तों जरा एक बार सोचिए, जो आपके बड़े बुजुर्ग थे, आपके माता पिता थे, पुराने जमाने में टीवी हो, रेडियो हो, घर में प्रेस हो, फ्रिज हो या कोई बिजली उपकरण हो, या अलमारी हो, सेफ हो, स्टूल हो, टेबल हो, इस तरह की छोटी मोटी चीजें हमारे बड़े बुजुर्ग, हमारे माता पिता या दादा वगैरह सब खुद से ठीक कर लिया करते थे, जबकि वो न बढ़ई थे, न मिस्त्री थे, न बिजली ठीक करना जानते थे। वो थोड़ा थोड़ा कार्य पहले जमाने के लोग सभी करते थे, पर आज के जमाने में हमको लगता है कि हम भला कोई दूसरा काम क्यों करें। नहीं दोस्तों, आपको अपनी पढ़ाई के साथ साथ अपनी कुछ स्किल्स को भी डेवलप करना चाहिए। राष्ट्र अनुभूति किताब में परमादरणीय डॉक्टर अतुल कृष्ण जी हमको सिखाते हैं कि पढ़ाई के साथ साथ हमें अपने स्किल्स पर भी ध्यान देना चाहिए, जिसकी आज बहुत ज्यादा जरूरत है। थोड़ी सी ही देर आपके घर में कोई छोटा मोटा काम करने के लिए कोई व्यक्ति आता है और अच्छे खासे पैसे लेकर जाता है, बिल्कुल अच्छी बात है, वो अपनी मेहनत का पैसा लेते हैं, लेकिन अगर छोटे मोटे काम करना आप जाने, जैसे आपके पिताजी आज भी प्रेस ठीक कर लेते हैं, रेडियो या टीवी ठीक कर सकते हैं, आज भी वो घर के छोटे मोटे कार्य खुद कर सकते हैं, हर काम के लिए वो किसी दूसरे पर निर्भर नहीं, वैसे ही आने वाली पीढ़ी को इस बात पर ध्यान देना चाहिए। आपको आज के खास कार्यक्रम राष्ट्र चेतना की ये कड़ी कैसी लगी जरूर बताएगा। आपकी फीडबैक दीजिए 9639012111 पर या हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब के माध्यम से भी कमेंट करके, मैसेज करके हमें बता सकते हैं। फेसबुक पर भी आपको हमारा पेज मिल जाएगा। फिर होगी मुलाकात। नमस्कार। जय हिंद। वंदे मातरम। एक भारत श्रेष्ठ भारत। राष्ट्र प्रथम सदैव प्रथम। जय हिंद।

0: आप भाषा और साहित्य की दुनिया में चमकना चाहते हैं? तो देर किस बात की, आज ही प्रवेश लें स्वामी विवेकानंद सुभारती विश्वविद्यालय मेरठ के भाषा विभाग में।
1: यहाँ आपको मिलेंगे भाषा विभाग द्वारा संचालित ये बेहतरीन पाठ्यक्रम: BA Honors Hindi, BA Honors English, MA Hindi, MA English। यहाँ आपको मिलेगा AI आधारित आधुनिक तकनीक से भाषा सीखने का अनोखा अवसर, अनुभवी प्रोफेसर्स का मार्गदर्शन, UGC NET, JRF तथा प्रतियोगी परीक्षाओं की पक्की तैयारी, मीडिया, अनुवाद, कॉरपोरेट या शिक्षण, अपने हर करियर गोल को दें एक नई उड़ान।
0: एडमिशन्स के लिए आज ही कॉल करें 9639222290 और 9639222293 पर, या विजिट करें भाषा विभाग स्वामी विवेकानंद सुभारती विश्वविद्यालय मेरठ में।
2: सुभारती कैंसर हॉस्पिटल, यहाँ आपको सिर्फ उपचार नहीं मिलता, आपको मिलता है प्यार, समर्थन और सबसे जरूरी उम्मीद। हम जानते हैं कि हर मरीज की जिंदगी की कहानी अलग होती है और हम हर कहानी को जीतने की पूरी कोशिश करते हैं। हमारे विशेषज्ञ डॉक्टरों के साथ हर कदम पर हम आपको उम्मीद और जीवन की नई राह दिखाते हैं। कैंसर के खिलाफ इस लड़ाई में हम आपके साथ हैं। विश्व स्तरीय और अत्याधुनिक इलाज, सुभारती कैंसर हॉस्पिटल। टू नो मोर कॉल नाउ 9639010313। सन्नाटा पसर जाता है उस परिवार में जहाँ किसी को कैंसर हो जाए। वीरानी लगती है ये दुनिया जिस परिवार में किसी को कैंसर हो जाए। अब कैंसर से डरिए नहीं, सुभारती कैंसर हॉस्पिटल। विश्व स्तरीय और अत्याधुनिक इलाज, कैंसर स्क्रीनिंग एंड डायग्नोसिस, ऑल टाइप ऑफ लेटेस्ट एंड एडवांस रेडिएशन थेरेपी, ऑल टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स कैंसर सर्जरी, हार्मोनल थेरेपी। No more call now 9639010313।
3: यूं ही मारते रहे दम तो जिंदगी हो जाएगी बेदम। बचाना चाहते हो किसी का जीवन तो संपर्क करे विश्व स्तरीय सुविधाओं से युक्त सुभारती नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केंद्र, सुभारती हॉस्पिटल झाजरा देहरादून। कॉल करें 9760920865।
2: लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड की ठोर, अत्याधुनिक नर्सरी, ECG, इको, कार्डियोग्राफी, सेमी प्राइवेट और प्राइवेट रूम्स, डिजिटल एक्सरे हो या अल्ट्रासाउंड, न्यूनेटल केयर यूनिट और बच्चों के लिए विशेष ऑपरेशन थिएटर, 2400 घंटे पैथोलॉजी लैब्स। लोकप्रिय हॉस्पिटल की ठोर में आज ही आकर मिले, हमारे अनुभवी डॉक्टर और विशेषज्ञ आपके स्वास्थ्य की देखभाल के लिए 2400 घंटे तैयार। अत्याधुनिक उपकरण और तकनीक जो आपको सर्वोत्तम सेवाएं प्रदान करें। लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड की ठोर। जुकाम, खांसी या बुखार कई दिनों तक रहे तो छोटे बच्चों को निमोनिया हो सकता है। अपने बच्चों के बेहतर इलाज के लिए आज ही संपर्क करें लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड किठोर, जहां पर 2400 घंटे हमारे बाल रोग विशेषज्ञ आपके बच्चों की बेहतर देखभाल के लिए उपलब्ध, 2400 घंटे इमरजेंसी सुविधाओं के साथ। लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड किठोर, SP पेट्रोल पंप के सामने। कॉल करें 8194007405।
4: लोकप्रिय अस्पताल सिर्फ नाम से ही नहीं बल्कि अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ मिलने वाली सेवाओं के कारण भी लोकप्रिय है। यहाँ आपको एक ही छत के नीचे मिलेंगे मेडिसिन, स्त्री रोग विशेषज्ञ, बाल रोग विशेषज्ञ, जनरल सर्जरी, गुर्दा रोग विशेषज्ञ, गुर्दा और मूत्र रोग विशेषज्ञ, दांत और मुंह के रोग विशेषज्ञ, आँख, कान, नाक और गला रोग विशेषज्ञ, हड्डी रोग विशेषज्ञ, हृदय और छाती रोग विशेषज्ञ, थायराइड और मधुमेह रोग विशेषज्ञ, ब्रेन और स्पाइन रोग विशेषज्ञ। लोकप्रिय अस्पताल किठोर में
5: यहाँ आपको मिलेंगे सभी प्रकार के ट्रॉमा एवं इमरजेंसी सुविधाएं, जैसे नॉर्मल डिलीवरी।

0: एवं ऑपरेशन डिलीवरी, आधुनिक आईसीयू एवं वेंटिलेटर की सुविधाएं, मॉडल ऑपरेशन थिएटर, आधुनिक नर्सरी, ईसीजी व इको कार्डियोग्राफी, जनरल वार्ड, सेमी प्राइवेट और प्राइवेट रूम्स, डिजिटल एक्सरे एवं अल्ट्रासाउंड 24 घंटे कार्यरत पैथोलॉजी लैब्स, 24 घंटे डायलिसिस की सुविधा, 24 घंटे मेडिकल स्टोर जैसे अनेकों सुविधाओं के साथ हम आपको 24/7 की इमरजेंसी सेवाएं भी प्रदान करते हैं।
1: अपनी बीमारियों और समस्याओं से निजात पाने के लिए मिले 20 बेड वाले लोकप्रिय अस्पताल सुपर मल्टी स्पेशलिटी किठोर के विशेषज्ञों से और पाएं सारी बीमारियों से निजात। एचपी पेट्रोल पंप के सामने निकट नहर गढ़ रोड किठोर। संपर्क कीजिए 8194007405।
2: Are you looking for a place from where your voice get a fame? Are you looking for a perfect platform to record your voice? Then why are you worrying a lot? Captain Ram Singh Sound Studio Subharti is here for you. Solution of your problem is under one roof. We provide facilities like dubbing, vocal recording, music composing, mixing and mastering. Visit here and we are giving you guarantee you gonna love it. Address Tathagat Block, 6th floor, Swami Vivekanand Subharti University, Meerut. For more information, contact 9759303022.
3: जब जीवन में अंधेरे घेर लेते हैं तब हर किसी को एक उम्मीद की किरण की तलाश होती है। सुभारती अस्पताल में हम सिर्फ इलाज नहीं करते, हम आपकी उम्मीदों को बचाते हैं। यहाँ हर दर्द का इलाज है, हर समस्या का समाधान है, क्योंकि हम जानते हैं उम्मीद कभी खत्म नहीं होती। सुभारती अस्पताल, जहाँ हर मरीज को मिलती है जिंदगी की नई उम्मीद। 2400 घंटे हम हैं आपकी सेवा में। किसी भी प्रकार की समस्या होने पर आज ही आइए छत्रपति शिवाजी सुभारती हॉस्पिटल, NH 58, परतापुर बाईपास रोड, मेरठ। द मार्स रिजॉर्ट्स, चाहे आपकी शादी हो, फैमिली आउटिंग हो या एक खास डिनर गेट टुगेदर हो, द मार्स रिजॉर्ट्स में बनाए अपनी जिंदगी का हर पल रॉयल। किटी पार्टीज हो या इंटीमेट गैदरिंग, हमारे ग्रैंड बैंकेट हॉल्स, फाइन डाइनिंग और शाही हॉस्पिटैलिटी से हर इवेंट हो जाएगा यादगार। द मार्स रिजॉर्ट्स, एक रॉयल एक्सपीरियंस नियर सुभारती, हरिद्वार बाईपास रोड, मेरठ।

0: जय हिंद, मैं हूँ वास्तुराज कृष्णा और आप सुन रहे हैं सुभारती आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM। और आइए दोस्तों, अब समय हो चला है आज की एक खास प्रस्तुति का। स्मार्ट एनजीओ के तत्वाधान में मिलकर सुभारती आजाद हिंद रेडियो पर यह खास प्रस्तुति।
1: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं सेहत सही लाभ कई। ये केवल एक नाम नहीं है बल्कि एक संकल्प है, हर घर तक बेहतर स्वास्थ्य की रोशनी पहुंचाने का, हर चेहरे पर मुस्कान लाने का। दोस्तों, हमारा ये विशेष कार्यक्रम समुदाय के बीच जाकर

0: लोगों के जीवन से जुड़कर उनकी दिनचर्या, उनकी परेशानियों और उनके स्वास्थ्य से जुड़े अनुभवों को समझने का एक सच्चा प्रयास है। हम न केवल उन्हें स्वस्थ रहने के आसान और प्रभावी उपाय बता रहे हैं, बल्कि उनके मन में उठ रहे सवालों और चिंताओं को भी ध्यान से सुन रहे हैं। और इन्हीं सब के बीच जब हमने टीकाकरण पर लोगों से बातचीत की तो लोगों के मन में कई तरह के सवाल थे, कभी संकोच, कभी डर, तो कभी जिज्ञासा। तब हमने इन सभी प्रश्नों को इकट्ठा किया और ये वादा किया कि हम उनके सभी प्रश्नों का जवाब विशेषज्ञों के माध्यम से जरूर उन तक पहुंचाएंगे। तो इसी क्रम में आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी समस्या पर जिस पर अगर अभी ध्यान न दिया जाए तो आने वाली पीढ़ियां हमेशा हमसे सवाल पूछती रहेंगी। दोस्तों, आज का ये खास पॉडकास्ट उन लोगों के लिए है जो बच्चों को होने वाले टीकाकरण को हल्के में लेते हैं या फिर इग्नोर करते हैं, और अगर स्वास्थ्य कर्मी घर तक पहुंचे तो कहते हैं कि हमारे बच्चे को टीके की जरूरत नहीं है। तो अगर आज आपके मन में भी इम्यूनाइजेशन को लेकर के बहुत सारे सवाल हैं, तो आज का ये पॉडकास्ट सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। आपको बता दें कि आज स्टूडियो में विशेषज्ञ के तौर पर मौजूद हैं SGPGI यानी कि संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज की बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर पियाली भट्टाचार्य, और आपसे बातचीत कर रही हैं सेंटर फॉर एडवोकेसी एंड रिसर्च यानी कि CFAR की प्रोग्राम लीड रंजना द्विवेदी जी। तो आइए इस कार्यक्रम के साथ जुड़कर टीकाकरण से जुड़ी सही जानकारी प्राप्त करें, अपने संदेह दूर करें और एक स्वस्थ, सुरक्षित और खुशहाल जीवन की ओर मजबूत कदम बढ़ाएं।
1: सभी श्रोताओं को नमस्कार। आज हम बात करेंगे टीकाकरण पर, और टीकाकरण ही नहीं, टीकाकरण क्यों नहीं कराते हैं लोग, लोगों को में क्यों हिचकिचाहट होती है टीकाकरण को लेके। बहुत सारे लोगों को कुछ तरह के संदेह होते हैं, कुछ उनकी अपनी मिथ्या धारणाएं होती हैं, और इन सब पर बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं वरिष्ठ बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर पियाली भट्टाचार्य, जो संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट में है। तो नमस्कार मैम।
2: सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। आज हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे।
1: मैम, टीकाकरण बहुत जरूरी है, सबको पता है
2: जी,
1: लेकिन फिर भी लोग हिचकिचाते हैं। जानते हैं बच्चे की जान बचेगी, फिर भी हिचकिचाते क्यों?
2: देखिए, ये तो बहुत बड़ा एक स्पेक्ट्रम है कि इसमें हिचकिचाहट ही सिर्फ नहीं है, कंप्लीट रिफ्यूजल भी होता है कि हम करवाएंगे ही नहीं, अच्छा सोचेंगे, अच्छा थोड़े दिन बाद करवा लेंगे। तो इसके लिए तो हम जब देखते हैं तो पूरा एक ये स्पेक्ट्रम है, कंप्लीट रिफ्यूजल ना से और सोचते हैं से लेकर अच्छा करवा लेते हैं तक। तो हेजिटेंसी जो है, मतलब हिचकिचाहट जो है टीकाकरण को लेके, ये हर एक के मन में होता है। कुछ लोग सोचते हैं कि अरे मेरा बच्चा तो भी कमजोर है, कुछ दिन बाद करवा लेंगे। कुछ लोग ये सोचते हैं कि अरे लेके जाएंगे बच्चे को, अगर बुखार हुआ, कोई और चीज हो गई तो। मतलब आपको ये समझना पड़ेगा कि जो बीमारी के लिए हम टीका लगवा रहे हैं वो बीमारी तो बहुत दूर की बात है, इसलिए लोगों को वो बीमारी के बारे में ज्यादा नहीं समझ में आता है। पर जो फीवर अभी होगा, बुखार अभी होगा, जो बच्चा रोएगा, वो अभी तुरंत उनको दिख रहा है, तो वो तुरंत की वजह से ज्यादा हिचकिचाहट होती है।
1: तो इसी पे मैं पूछना चाहूंगी मैम, जैसे अगर आपके पास तो रोज बहुत सारे पेरेंट्स आते हैं, क्या कुछ लोग सिर्फ पूछने के लिए आते हैं कि हम बच्चों का टीकाकरण कराएं या ना कराएं? संदेह रहता है उन्हें, मतलब इतना समझ के पढ़ लिख के भी आते हैं फिर भी उनके मन में संदेह रहता है कि कराएं या ना कराएं, तो क्या ऐसे लोग भी आते हैं आपके पास?
2: बिल्कुल आते हैं। जो ज्यादा पढ़ा लिखा वर्ग है वो तो अब गूगल चाचा से भी समझ के आता है और सब जगह से पढ़ के आता है, तो उसकी सारी पूछताछ ज्यादा होती है। जो थोड़ा हमारे गांव की महिलाएं हैं, गांव के लोग हैं, वो ANM के कांटेक्ट में बहुत ज्यादा रहते हैं, आंगनवाड़ी दीदी, ANM दीदी, तो उनसे लगातार मिलने की वजह से थोड़ा बहुत संदेह रहता है, पर उनको हेल्थ का इन्फॉर्मेशन मिलता रहता है इन लोगों से, तो इसलिए उनकी शंकाएं जरा सा कम होती है। बीच तबके के लोग जो हैं, न बहुत ज्यादा अमीर न बहुत ज्यादा गरीब, उनमें डाउट तो रहता है पर उनमें एक्सेप्टेंस बेटर होता है।
1: क्यों रहता है मैम? एक्चुअल में देख, अनुभव होता है, जैसे मेरे अपने बच्चे हैं, मैंने देखा कि उनको टीकाकरण हुआ, बुखार आ गया, मतलब कुछ उनका अपने अनुभव की वजह से ऐसा होता है या इन जनरल ऐसा होता है जिसका पहला टीकाकरण है वो भी इस तरह के होते हैं?
2: देखिए, हमारी सोसाइटी जो है ना वो कहानियां बहुत बनाती है।
1: हाँ,
2: तो एक बच्चे को अगर फीवर आया, उसने पड़ोस में बताया, भाई

0: ये बच्चे को टीकाकरण के बाद फीवर आ गया, वो तीसरे को बताता है, तीसरा बताता है अरे उसको 105 डिग्री आ गया। पांचवें चौथे तक सातवें तक पहुंचते पहुंचते फीवर के साथ में झटका भी आने लगता है, झटके के साथ मुंह से झाग भी निकलने लगता है। तो जब तक वो उस औरत के पास पहुंचता है जो अपने बच्चे को पहली बार लेके जाने वाली है, उसका इतना बतंगड़ बन चुका होता है उस बात का कि वो हिचकिचाती है, अब डरती है कि मैं ना जाऊं, मैं ना लगवाऊं, अरे उसके बच्चे के साथ ये हो गया था तो मेरे बच्चे के साथ ना हो जाए। तो ये जो छोटी छोटी कहानियां हैं जो एम्पलीफाई हो जाती हैं, बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं, तो वो बढ़ चढ़ के बताते बताते कई लोग जो लगाने भी जा रहे होते थे उनके कान तक पहुंचते पहुंचते वो इतना बढ़ गया होता है कि वो मना करने लगते हैं कि नहीं रहने तो भैया।
1: तो इसी से जुड़ा हुआ सवाल है मैम, नहीं लगाते लोग, किस संदेह के कारण नहीं लगाया, हिचकिचाहट के, और अल्टीमेटली बच्चे की सेहत पे असर पड़ता है, कुछ बच्चे कुपोषित हो जाते हैं, कमजोर हो जाते हैं, तो ऐसे बच्चों के लिए क्या कहेंगे, मतलब उनको इसको दूर करने के लिए किस तरह की चीजें होनी चाहिए समाज में, और दूसरी चीज अगर बच्चा कमजोर है कुपोषित है तो क्या उसका टीकाकरण किया, ये भी एक मिथ है लोगों के बीच में कि भाई हमारा बच्चा बहुत कमजोर है टीका लगेगा तो पता नहीं, और अगर बुखार उखार आ गया तो और कमजोर हो जाएगा, तो इन सब चीजों को कैसे देखें हम।
0: देखिए जो बच्चे कुपोषित हैं उसमें इन्फेक्शन के चांसेस ज्यादा होते हैं, उनमें बीमारी आने के चांसेस ज्यादा होते हैं। एक नॉर्मल रिष्ट पुष्ट बच्चे को शायद बीमारियां कम हो, पर एक कमजोर बच्चे को ये जितने कीटाणु होते हैं वो सब पकड़ने लगते हैं। तो उस बच्चे को अगर टीकाकरण होता है तो चांस बड़ी बीमारी होने का घट जाता है, तो उस बच्चे की जान बच जाती है। तो अगर ऐसे कुपोषित बच्चे हैं उनको तो टीकाकरण होना ही चाहिए, बहुत जरूरी है, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी वैसे ही कम होती है, टीकाकरण ना होने से उनके शरीर को इसका एहसास ही नहीं होता है कि वो बड़ी बीमारियों से कैसे लड़े। तो हमारे पास जब टीकाकरण है तो टीकाकरण करने से आप समझ लो शरीर को ये अभ्यास होता है कि ये बीमारी आए तो हमें कैसे लड़ना है, और जब वो बीमारी आती है तो कुपोषित बच्चे का शरीर भी तैयार होता है उस बीमारी से लड़ने के लिए, तो जान माल सब बच जाता है।
1: बहुत अच्छी बात बोली मैम आपने कि जब टीकाकरण होता है तो हमारा प्रतिरक्षा तंत्र जो होता है वो मजबूत होता है, अगर बच्चा कमजोर है कुपोषित है लेकिन टीकाकरण उसको वो ताकत देता है कि अगर कोई बीमारी उसको घेरती है तो वो उससे लड़ सकता है। एक बड़ी चीज ये भी है मैम कि बहुत सारे लोग दिहाड़ी मजदूर होते हैं, है ना, पढ़े लिखे भी बहुत नहीं होते हैं, उनको उन तक शायद हमारी पहुंच भी नहीं हो पाती है, और वो नहीं करवा पाते किसी कारण से टीकाकरण। तो अगर किसी का मतलब एक टीका छूटा पूरा हमारा, क्योंकि हमारा तो शेड्यूल है पूरा, हमारा एक पूरा एक नियम है कि ये टीका लगेगा फिर वो टीका, अगर ऐसा कुछ होता है तो उनके लिए क्या है कि जब जागे तब सवेरा, या मतलब किस तरह से वो अपने टीकाकरण को सुनिश्चित करवा पाए।
0: जब आपने दिहाड़ी की बात करी है तो आपको समझना पड़ेगा कि उनके मन में क्या शंकाएं रहती है या क्या प्रॉब्लम होती है, जब ये आप समझ जाओगे तो ही उसको दूर कर पाओगे। दिहाड़ी मजदूर का एक सेंटर पे बच्चे को लेके जाना, मैंने एक दिन की रोजी रोटी गई, आने जाने का खर्चा अलग से लगा, क्यू में खड़े होके टीकाकरण कराने का समय और गया, बच्चे को अगर फीवर आया डॉक्टर को दिखाना पड़ा दवा करनी पड़ी तो उसका खर्चा और गया, अगर उसको घर पे एक दिन और रुकना पड़ा तो एक दिन और की गई। और ये मत समझना कि अगर वो ड्यूटी पे नहीं गया तो किसी और को वो ड्यूटी नहीं दे देंगे और उसको बिठा नहीं देंगे, तो उसके लिए ये एक रिस्की बात हो जाती है, इसलिए वो डरता है। अगर वो इन सब शंकाओं से पार उतरे तभी तो वो बच्चे को लेके जाएगा ना।
1: बिल्कुल।
0: तो उसको सबसे ज्यादा रीअश्योरेंस की जरूरत है कि अगर छूटा है तो नहीं छूटना चाहिए, अगर छूटा है तब भी आप टीकाकरण पूरा करो।
1: तो बच्चे की सेहत के लिए, उसके भविष्य के लिए टीकाकरण जरूरी है, दिहाड़ी आप थोड़ा आगे पीछे कर लीजिए, सभी मतलब श्रोताओं से मेरा कहना है कि बच्चे अगर बच्चा स्वस्थ रहेगा तब आप दिहाड़ी पे भी जा पाओगे, अगर बच्चा बार बार बीमार पड़ेगा तो आप दिहाड़ी पे भी नहीं जा पाओगे, और टीकाकरण स्वस्थ रखने में बहुत मददगार होता है, इसलिए सबको टीकाकरण करना चाहिए। मैम एक और चीज देखी गई है, बच्चा तो छोटा होता है, माँ बाप होते हैं क्लोजली माँ बाप होते हैं, लेकिन ये निर्णय लेना कि बच्चे को टीकाकरण, क्योंकि बहुत मतलब समाज में हम देखते हैं दादी नानी सबके अपने अनुभव होते हैं, हमने 10 बच्चे पैदा किए होती है, हमारे बच्चे तो बिना टीकाकरण के अच्छे हैं। इस पे क्या आप सलाह देना चाहेंगी लोगों को, क्योंकि मतलब स्पेशली घर के बड़े लोगों को या जो भी उनको सपोर्ट करते हैं?
0: रंजना जी, ऐसा होता है कि माँ जो है वो अथॉरिटी नहीं होती है घर में, तो दो तरह के परिवार होते हैं, एक जैसे हमारे आपके, हम हमारे पति और हमारे दो बच्चे, इस तरह का परिवार होता है। एक होता है भरा पूरा परिवार जिसमें दादा दादी चाचा चाची सब होते हैं, तो वो एक सम्मिलित, एक सब लोगों का एक डिसीजन होता है, उसमें सिर्फ माँ बाप का नहीं होता है। तो ऐसे में माँ क्योंकि हेल्थ वर्कर के साथ बार बार बार बार उठती बैठती है, हमारी आंगनवाड़ी दीदियां सब घर जाती हैं, तो उन बहनों का इन्फ्लुएंस माँ पे होता है, पर फाइनल अथॉरिटी अगर न्यूक्लियर फैमिली है, हम दो, हमारे दो वाले, तो फादर की होती है। पर माँ समझा बुझा सकती है, कह सकती है, और अगर सम्मिलित परिवार है तो फिर तो सास का बहुत बोलबाला रहता है। सास ससुर अगर कह दे कि नहीं कराना है तो माँ बाप चाहते हुए भी नहीं कराते। तो आपने जैसे कहा कि सास कह देगी, हमने भी तो बच्चे पाले थे, कौन सा उनका टीका करवाया था, सब अच्छे हैं, कौन सा तुम्हारा बेटा जो है कहाँ से वो आ गया है कि उसको जो है टीकाकरण नहीं करवाए, तो कुछ नहीं, तुम काम नहीं करना चाहती हो, दिन भर वहां बैठी रहोगी, गप्पे मारोगी, इसलिए तुम जाना चाहती हो। पर हाँ, आज के जमाने में जैसे गूंज से या कहीं से भी अवेयरनेस जैसे हम फैला रहे हैं, तो कुछ समझदार सासें होती हैं, वो कहती हैं कि हाँ बीमारियां तो है तो लगवा ही लो, बहू भेज भी देती है। तो दो तरह के थॉट्स होते हैं, और जब ये सम्मिलित डिसीजन की बात आती है ना, तो वहाँ थोड़ी सी हिचक बढ़ जाती है। जो न्यूक्लियर फैमिली होता है वो फास्टर होता है, फटाक से कि हमें तो लगवाना है, पर पीछे से कौन देखेगा अगर बीमार हो, क्योंकि हम दो, हमारे दो में तो हम दो दोनों वर्किंग हैं, काम कर रहे होते हैं, वो तो काम पे निकल जाएंगे, पीछे से बच्चे को कौन देखेगा, या तो बड़ा बच्चा देखेगा उस छोटे बच्चे को, तो थोड़ी दिक्कत तो उसमें आ जाती है। और सम्मिलित परिवार में तो दादा दादी चाचा चाची सब मिलके बच्चे पाल देते हैं, तो उसमें एक बार अगर हाँ हो जाए तो फिर बच्चे के साथ कोई और दिक्कत नहीं आती है, मामला बहुत स्मूथ हो जाता है।
1: धन्यवाद मैम। एक डर लोगों के बीच में, क्योंकि कभी कभी होता है किन्हीं कारणों से किसी बच्चे की डेथ हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, और कोविड के बाद बहुत सारी अफवाहें फैली टीकाकरण के बाद लोगों की डेथ, और थोड़ा सा हमने देखा है कि हमारा जो प्रतिशत है वो कम हुआ है, एक दोबारा से वो उस विश्वास को जगाने में बहुत प्रयास करने पड़ रहे हैं। तो हम चाहेंगे कि आप लोगों को बताएं कि टीके कितना सुरक्षित हैं और इन अफवाहों पे ध्यान नहीं देना चाहिए।
0: देखिए, वो जो कोविड वाली मेमोरी है ना, वो तो इंसान के जहन में बैठ गई है। कितनों को ही हमने मरते देखा, कितनों को ही इतना परेशान दौड़ते हुए देखा, ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, तो वो जो मेमोरी है ना, वो यादें वो दिमाग में बस जाती हैं। ऊपर से जब कोई भी नया वैक्सीन आता है, जैसे कि हमने 2016 में IPV या इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीन, रोटा वायरस वैक्सीन, न्यूमोनिया का वैक्सीन, ये सब लॉन्च किए, तो कोई नई चीज आती है ना, तो इंसान की दुविधा बढ़ती है, हिचकिचाहट बढ़ती है, और कोविड के मौतों के बाद से तो लोगों के दिमाग में डर तो बैठ ही गया था। पर ये जानना पड़ेगा कि हमारी ये जिन वैक्सीन की हम बात कर रहे हैं, वो तो कोविड से पहले भी थी और आज भी हैं।
1: बिल्कुल,
0: अगर सुरक्षित नहीं होती वो वैक्सीन, तो इतने सालों से चली आ रही है, हम देखते कि वो सुरक्षित नहीं है, पर ऐसा तो नहीं हुआ, कोविड से पहले भी थी और आज भी है। और एक बच्चे का अगर देखो, उस वैक्सीन को हम एक बच्चे को तो नहीं लगाते, हम तो वही वैक्सीन पूरे इंडिया में वही बैच हजारों बच्चों को लगता है, तो एक बच्चे की अगर मौत होती है तो वो इन्वेस्टिगेट करने वाला होता है कि उस बच्चे की मौत क्यों ही, ऐसा तो नहीं हुआ कि इससे बहुत सारी मौतें हो गई, तब वो इन्वेस्टिगेशन का मामला बन जाता है। अदरवाइज अगर सिंपली एक क्लस्टर में एक ही बच्चे की मौत हुई, तो ये जांच लेना पड़ता है, ऐसा तो नहीं है उसमें कोई बड़ी बीमारी थी पहले से ही और उसको टीका लग गया, तो कई कारण हो सकते हैं कि बच्चे की मौत हुई हो। और ऐसी बातें ना, अफवाहें ऐसे फैलती हैं पागलों की तरह कि क्या बताएं हम, उससे लोग और डर जाते हैं। पर क्योंकि जैसा मैं कह रही हूँ कि हमारे टीके कोविड से पहले भी थे, आज भी हैं, तो वो बहुत ही सुरक्षित टीके हैं, तभी वो पब्लिक में अभी तक विश्वास के साथ दिए जा रहे हैं।
1: थैंक यू मैम। और धीरे धीरे हम लोग टीकों में बदलाव भी कर रहे हैं, बहुत सारे टीके लगने की जगह कई टीकों का एक वैक्सीन बना रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। मैम, क्या आपको लगता है कि शिक्षा का स्तर जो होता है समुदाय में, उसका असर होता है, वो प्रभावित करता है टीकाकरण के प्रति लोगों को प्रेरित करने या ना

0: सा प्रयास करके रीअश्योर करना पड़ता है।
1: मैम एक चीज है कि मुझे टीके की जानकारी है और एक चीज है कि मुझे टीके की समझ है, दोनों में अंतर है थोड़ा।
0: बहुत बड़ा अंतर है रंजना। जानकारी है वो तो चारों तरफ से उनको आते रहते हैं कि मेरे बच्चे को पोलियो का टीका लगना है, ये हुआ जानकारी। मेरे बच्चे को टीकाकरण होना है, किस उम्र पे पोलियो लगना है, कितने बूंद पिलाने हैं, उसको पिलाने के बाद बच्चे के साथ कोई ऐसी बात तो नहीं होगी जिसकी समझ हमें होनी चाहिए, बुखार तो नहीं आएगा, कोई और परेशानी तो नहीं होगी, मेरा बच्चा रोएगा तो नहीं। ये होती है जानकारी कि अगर ऐसा होता है मुझे क्या करना है, किसके पास जाना है, दवा क्या करनी होगी। तो ये होती है जानकारी। ये तो ठीक है, समझ है कि होना है टीकाकरण, उससे फर्क नहीं पड़ता, पर जब उनको जानकारी पूरी समझदारी के साथ समझाई जाए तब उनके जहन में ये होता है कि हाँ टीकाकरण होना है।
1: इसी से जुड़ा हुआ सवाल है मैम, आप डॉक्टर हैं, आपके पास जब लोग आते हैं, पेरेंट्स आते हैं, तो आप बहुत अच्छे से समझा ले जाती हैं क्योंकि आप सब कुछ अच्छे से खुद जानती हैं और आपको पता है कि किसको कैसे समझाना है। लेकिन समुदाय स्तर पे जो हमारे फ्रंटलाइन वर्कर हैं, वो जब काउंसलिंग करते हैं तो उनको क्या ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि उनके पास बिल्कुल ब्लंट सवाल आते हैं, है ना, क्योंकि सबसे पहला उन्हीं को झेलना है, माँ को तैयार भी उनको करना है, माँ को हिचकिचाहट है तो वो भी उन्हीं को दूर करनी है, और उनका अपने संदेश भी बहुत सही होने चाहिए जिससे वो कन्विंस हो सके और आप तक मतलब टीका लगवाने के लिए आ सके। तो उनके लिए कोई मतलब कुछ टिप्स देंगी कि किस तरह से वो लोगों से बात करें, वो मतलब स्पष्ट भी हो संदेश उनका और वो पेरेंट्स को भी अहमियत उसकी समझ में आए। होता क्या है ना, मतलब मेरे घर वाले अगर मुझे समझा रहे हैं तो मुझे उतनी वैल्यू नहीं समझ में आती जितना आप मुझे समझाएंगे। वही हाल आशा दीदी और हमारी आंगनवाड़ी दीदी और एनम की भी होती है क्योंकि वो रोज हमसे मिलते हैं। तो उनके लिए मैं जानना चाहूंगी, मतलब उनको आपकी तरफ से क्या चीजें उनको इम्पोर्टेंस बतानी चाहिए जिससे लोग टीकाकरण के लिए तैयार हों।
0: आशा दीदी लोग जब घर घर जाती है ना, दस्तक एक चलता है कि वो आपके बच्चे में कोई बीमारी तो नहीं, नया बच्चा हुआ उनके घर में जाके उनको उन लोगों ने कॉन्ग्रेचुलेट किया, अरे बिटिया हुई है, वेरी नाइस, लड़का हुआ है, बहुत बढ़िया। तो वो एक आशा दीदी के साथ ऑलरेडी विलेजेस में, गांव में, घरों में माओ का, दादियों का, चाचियों का, सबका एक अलग सा रिश्ता बना होता है। तो कई बार ऐसा होता है कि कहीं कोई मौत हो गई या कहीं कोई बीमारी हो गई तो वो लोग हिचकिचाते हैं उसमें भी। आशा दीदी इज अ वेरी इम्पोर्टेंट पर्सन उस समय कि, और पहली बार में वो नहीं कर पाएगी, उसको बार बार बार बार जाना पड़ेगा। तो पहले ही समय कि वो रिएश्योर कर देगी और हो जाएगा ऐसा नहीं मानना पड़ेगा उसको। पहली बार जाके कि कैसे हो कैसे नहीं हो, बच्चे के बारे में खबर लेना, अच्छा ये हो गया है, दूसरी बार में जाके तुम्हारे बच्चे को ऐसा हुआ था ना, अब कैसा है, तो तीसरी बार में जाके इसका तो एक टीकाकरण है, तुमने कितने बच्चे हैं, तुमने इनको लगाया है, ये किया है, तो फिर वो बाकी घर के बच्चों के लिए भी बात करना। ये शायद चौथी पांचवी बार में ऐसा होता है कि आशा दीदी ये कम्युनिकेट कर पाती हैं कि आप लोग जो हैं अपने बच्चे का टीकाकरण कर लीजिए। तो बच्चे की खबर लेने से शुरू करके बच्चे के बारे में बताना और बार बार जाके माँ को रीअश्योर करना और टीके के बारे में बताना, अच्छा फला को और अगल बगल के जो लोगों को टीका लग रहा है उनके बारे में भी जानकारी देना, अरे फला मौसी के बच्चे को टीका लगा था देखिए कितना बढ़िया तंदुरुस्त है, और फला मौसी के नहीं लगाया था उनको तो दस्त आ गए भाई। तो इस तरह से आप दूसरे लोगों की कहानियां बताकर भी उनको रीअश्योर कर सकते हैं।
1: बिल्कुल मैम, अच्छी चीज है। आशा दीदी लोग जो भी हमारी प्रथम पंक्ति के कार्यकर्ता हैं, जब उनके पारिवारिक रिश्ते भी बन जाते हैं सभी जितने भी उनके लाभार्थी होते हैं उनके साथ, और अलग अलग उदाहरण देके वो दूसरों को, मतलब एक परिवार अगर तैयार हुआ है तो उनके लिए एक उदाहरण होता है कि वो बाकी परिवारों के लिए करते हैं। इसमें क्या जो समुदाय का वृहद, मतलब इनकी तो एक तरह से कहते हैं ना तुम्हारी तो ड्यूटी है तो तुम टीका कर रही हो और वो करती भी है, लेकिन और भी लोग हैं जो इनको सहयोग कर सकते हैं, आपको लगता है समुदाय में टीकाकरण के विषय में भी, जैसे एक तो हम लोग जिस तरह से रेडियो पे कार अभी बात कर रहे हैं, प्रचार प्रसार के साधन होते हैं, गांव में और भी लोग होते हैं जो जिनको इन्वॉल्व किया जा सकता है, तो आप मतलब कुछ बताना चाहेंगे इस पे कि कैसे लोगों से वो लोग सहयोग ले सकती है अगर कोई परिवार नहीं तैयार है, क्योंकि हिचकिचाहट दूर करना बहुत आसान चीज नहीं होती, वो भी एक बच्चे के लिए तैयार करना बहुत मुश्किल होता है, अगर नहीं मेरे से तैयार हो रहा तो मैं किसकी मदद लूं।
0: रंजना, जब हम लोगों ने

0: मुकॉकल वैक्सीन की लॉन्च करी थी तो ये थोड़ा सा हमें प्रॉब्लम आई थी, नए वैक्सीन को लोग जल्दी एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो जिन लोगों से हमने गांव में लिया वो थे गांव के प्रधान। प्रधान साहब को सब लोग अगर प्रधान ने कह दिया तो ठीक ही होगा, ये रवैया रहता है। तो हमारे साथ ये बहुत मदद हुई कि कई गांवों में प्रधानों ने हमारी बड़ी मदद की कि उन्होंने कहा कि नहीं ये वैक्सीन ठीक है, आप सबको जाके टीकाकरण करवाना चाहिए। कई जगह हमें मस्जिद जाना पड़ा, वहाँ के मौलानाओं से बात करनी पड़ी। कई जगह स्कूलों में जाना पड़ा, वहाँ के प्रिंसिपल से बात करनी पड़ी। तो ये कई लोग होते हैं जो पीपल ऑफ अथॉरिटी होते हैं उस जगह पर। इन लोगों से बात करने से कई बार हमारी समस्याओं का समाधान होता है, लोग आगे आते हैं और ये मानते हैं कि जब ये इन्होंने कह दिया तो सही ही होगा और हम तब टीकाकरण आगे स्मूथली बढ़ता है।
1: तो मैम अच्छी चीज है कि अगर प्रधान है, हमारे बाकी जो भी इन्फ्लुएंसर्स हैं वो इनको सहयोग करेंगे तो हम जो हिचकिचाहट होती है इनको समझाने में, समझा के टीकाकरण करवाने में उसमें मदद मिलेगी। आपको क्या लगता है कि कुछ और चीजें भी, कुछ और प्लेटफॉर्म हो सकते हैं जो हमारे एक होते ना कहते हैं एंट्री पॉइंट होता है परिवार का विश्वास जीतने के लिए? या दूसरी चीज मैं ये भी कहूंगी कि क्या टीकाकरण के अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं जो पेरेंट्स को नवजात के संबंध में ध्यान रखनी चाहिए?
0: दूसरे सवाल का पहले जवाब दूं मैं आपका कि नवजात जो होता है ना उसका पहला टीकाकरण माँ का दूध होता है, क्योंकि माँ के शरीर से कहते हैं ना माँ का दूध पिया हो तो सामने आ जा। तो माँ का दूध जो होता है उसमें से माँ की इम्यूनिटी बच्चे में ट्रांसफर होती है। कई विटामिन्स हैं, कई इम्यूनोग्लोबुलिन जो रक्षात्मक तंत्र होते हैं वो चीजें बच्चे में जाती हैं। सो जिन बच्चों ने माँ का दूध नहीं पिया है वो बच्चों के साथ परेशानियां ज्यादा होती हैं। जिन बच्चों ने माँ का दूध पिया है तो कम से कम 6 महीने तक अगर उन्होंने माँ का दूध पिया होता है तो उनमें इम्यूनिटी बहुत अच्छी होती है। और साथ साथ हम जब टीकाकरण कर देते हैं तो यही बच्चे हैं जो कम बीमार पड़ते हैं। तो माँ का दूध तो पहला टीकाकरण हुआ, उसके बाद हमने एज डॉक्टर्स टीकाकरण करना शुरू किया। पहली रक्षात्मक शक्ति माँ होती है। अब आई बात कि टीकाकरण कैसे और कहाँ से और एंट्री पॉइंट कहाँ होता है। देखिए एक एंट्री पॉइंट तो होता है ICDS वाला सेंटर, जब माएं राशन लेने जाती है ना वहाँ पर दूसरी माओं से बातचीत होती है। तो वहाँ एक संगोष्ठी टाइप की हो गई कि एक ने दूसरे से कहा अरे हम तो उस दिन गए थे फला दिन तो वो दीदी मिली थी, बहुत अच्छे से हमारा टीकाकरण हो गया बच्चे का। दूसरी बोलेगी अरे मैं तो देर हो गया, मैं तो लगवाया नहीं, अरे पोलियो का टीका छूट गया, रोटा वायरस का टीका छूट गया, बच्चे को बड़े दस्त हो रहे हैं। तो वो माँ की समझदारी पे है कि कौन सा मैसेज वो उसमें से लेती है कि टीकाकरण हुआ तो हमारा बच्चा स्वस्थ है। और इंसेंटिव क्या रहता है कि हमें राशन लेना है, जाती इसलिए है कि हमें राशन लेने जाना है। और वहां जाके उसका दूसरे लोगों के साथ एंगेजमेंट होता है, दूसरे लोगों के साथ बातचीत होती है और फाइनली ये बातचीत जो है उसको एक बिहेवियरल चेंज कराती है। तो उसके बिहेवियर में ये चेंज होता है कि हाँ हमें टीकाकरण करवाना चाहिए। तो वहाँ दूसरों से जब बातचीत करती है जो उसके मन में शंकाएं होती हैं वो भी दूर हो जाती हैं। इसलिए ये एक एंट्री पॉइंट होता है जहाँ पर माँ ये हाँ या ना सोचती है कि हम टीकाकरण कराएं या ना कराएं, गई वो राशन के लिए होती है। फिर जो हमारे VHNDs होते हैं उसमें भी यही होता है कि पोषक तत्वों के बारे में बताया जाता है, पर कई बार ये भी उसमें बातें होती हैं कि फला के बच्चे को लगवाया था देखो और फला ने नहीं लगवाया देखो, आशा दीदी ने बहुत डांट लगाई कि समय पे टीकाकरण नहीं हुआ। तो ये जो डिलेज करते हैं, मिस करते हैं टीकाकरण, इसके बारे में भी उनको ज्ञान मिलता है कि नहीं करना चाहिए हमें। और आउटराइट जिनमें रिफ्यूजल होता है जो कि बहुत कम होते हैं कि हम नहीं करवाएंगे, वो वाले बहुत डिफिकल्ट केस होते हैं। वरना थोड़ा आप अगर रिएश्योर करो, समझाओ, उनके साथ एंगेज करो तो बहुत समझदार है माताएं, क्योंकि हर माँ को चाहिए कि हमें अपने बच्चे को प्रोटेक्शन देना है, माँ तो माँ ही होती है।
1: बिल्कुल मैम, बहुत अच्छी चीज है कि अगर आपको दिक्कतें हो रही हैं कोई पेरेंट्स को समझाने में तो ये प्लेटफॉर्म्स आप आंगनवाड़ी केंद्र उनको ले जा सकती हैं, VHND के सेशन में उनको ले जा सकती हैं, या आप किसी ऐसे लाभार्थी के घर भी ले जा सकती हैं जिन्होंने अपने बच्चों का पूरा टीकाकरण कराया है और उन्होंने अगर टीकाकरण के बाद बुखार आया है तो उसको कैसे मैनेज किया वो समझने के लिए भी हो सकता है। या आप छोटी छोटी क्लिप्स बना के ना, वीडियो क्लिप्स भी आप लोगों को मिलती है वो भी दे सकती हैं। बहुत अच्छी मैम, एक और चीज में, मतलब अब हम अंत में आ रहे हैं अपने, अगर इस व्यवहारिक यात्रा को समझे हम तो क्या यह कहना सही होगा कि अधिकांश परिवार पूरी तरह इनकार करने के बजाय हिचकिचाहट से स्वीकृति की ओर आगे बढ़ते हैं? यह यात्रा आमतौर पर कैसी दिखती है? किस बिंदु पर डर भरोसे में बदलना शुरू होता है?
0: बहुत अच्छा सवाल है आपने कहा। देखिए, इंसान का जो व्यवहार होता है ना, वो कई चीजों से इन्फ्लुएंस होता है। तो जैसे कि इन माओं में होता है कि पहले डरते डराते जाती हैं, उसके बाद एक कंडीशनल एक्सेप्टेंस होता है कि हम सोच रहे हैं। तो जितनी बार हमारा या आंगनवाड़ी दीदी का या किसी हेल्थ वर्कर का उनसे कांटेक्ट बनता है, तो डर के बाद सोच रहे हैं के बाद एक कॉन्फिडेंट एक्सेप्टेंस आता है कि हाँ लगवाएंगे। उस दौरान अगर उनको आप बार बार बार बार रीअश्योर करो, मतलब डर जो है ना उसको आउट नंबर करना पड़ेगा आपको, किससे ना, बार बार रीअश्योर करके कि हाँ लगवाना है। तो जैसा मैं आपको पहले भी बताया कि 3-4 बार ये सब एड्रेस करने के बाद वो डर से लगवाएंगे तक पहुंच जाते हैं। तो उसके बाद अगर सेफ एक्सपीरियंस हुआ तो अगली बार जरूर आएंगे टीके के लिए। तो आपको जो है ये देखना है कि जो सोर्स उनको रीअश्योर कर रहा है, जो उनको बता रहा है, जो हेल्थ वर्कर बात कर रहा है, वो ट्रस्टेड हो। सो अगर बुखार में कोई भी अनसर्टेनिटी रहे कि हाँ कुछ गलत हो रहा है, वो बदल जाए कि उसमें नहीं, कुछ गलत नहीं होगा, आपका बच्चा प्रोटेक्टेड है, हम टीकाकरण करेंगे, और सिर्फ टीकाकरण नहीं करेंगे, उसके आगे भी कुछ भी हुआ तो उसके लिए हम मौजूद हैं, हम रहेंगे, आप कभी भी हमारे पास आ सकते हो। तो ये रिअश्योरेंस जब मिलता है कि पहले टीकाकरण में और उसके बाद तक हमारे साथ ये हेल्थ वर्कर हैं, तब वो डर धीरे धीरे चला जाता है। और एक बार टीकाकरण हुआ और सेफ एक्सपीरियंस हुआ तो उसके बाद तो दोबारा तो आएगा ही आएगा।
1: तो हमें टीकाकरण करने वाले को भी भरोसा होना चाहिए कि वो बिल्कुल टीके सुरक्षित हैं और बच्चे को कुछ नहीं होगा, और टीका करवाने वाले माँ बाप को भी पूरा विश्वास, क्योंकि जब विश्वास करने लगते हैं हम चीजों पे तो हमारा डर दूर होना शुरू होता है और फिर वो हमारे व्यवहार में आ जाता है और तभी वो हमें फायदेमंद भी होता है। इसी के साथ मैम हम अपने पॉडकास्ट के अंत में हैं, फिर से एक बार समराइज करते हैं इस चीज को, और अगर संक्षेप में कहना हो तो इन समुदायों में टीकाकरण को लेकर हिचकिचाहट वास्तव में किस बारे में, हम रिकैप करेंगे मैम, है ना। सीधे सीधे मैं पूछना चाहूंगी कि हिचकिचाहट किस चीज को लेके होती है, स्वीकृति बढ़ाने में सबसे ज्यादा कौन से फैक्टर्स काम करते हैं, और तीसरी चीज जो लोग हमारे सुन रहे हैं उन परिवारों के बारे में क्या समझना चाहिए, वो क्यों हिचकिचाते हैं। मतलब ये मैं डॉक्टर्स के लिए भी पूछ रही हूँ कि जब आता है कोई पेरेंट तो उसको एक होता ना, मेरी सुन लोगे आप तब मैं आपकी सुनूंगी, क्योंकि मेरे अंदर का जब सब कुछ बाहर आ जाएगा तभी शायद आप जो मुझे ज्ञान देंगी वो अंदर जाएगा। तो तीन चीजें हैं मैम, हिचकिचाहट जो होती है वो वास्तव में किस चीज को लेके होती है, स्वीकृति बढ़ाने में कौन से फैक्टर्स काम आते हैं, और तीसरी चीज हमारा जो सर्विस प्रोवाइडर है जो टीकाकरण दे रहा है उसका क्या व्यवहार होना चाहिए।
0: बिल्कुल सही आपने पूछा, उत्तर भी आपने शायद बता ही दिया होगा, फिर भी मैं बता रही हूँ कि डर एक बहुत बड़ा कारण है जिसकी वजह से टीका नहीं लगवाते। डेली वेजेस में इनकम का लॉस होता है इसलिए कई बार नहीं बताते हैं। पिछले एपिसोड में कहीं उनको कोई एक गलत एक्सपीरियंस हो गया होगा, या ये डर, मैंने सबसे पहले बोला है डर कि मेरे बच्चे को कुछ गलत तो नहीं हो जाएगा, तो ये बहुत बड़ी बात होती है जो रोकती है हिचकिचाहट जिसकी वजह से होती है। तो एक चीज जो डिफरेंस ला सकती है वो है जैसा आपने कहा कि उनकी बात को सुनना। उनकी बात को सुनना बहुत बड़ी बात है, बिकॉज वो अपने डर को जब बाहर निकालेंगे तभी हम समाधान बता पाएंगे। उनकी डर को सुनना और उसके बाद देखना कि कहाँ क्या हो सकता है, उसको आजमाना, उनको देखना होता है कि हम आजमा के तो देखें, और उसके बाद तब उसको मानना। ये एक पूरा सर्कल होता है जिसके थ्रू वो माँ बाप जाते हैं। तो जो भी हेल्थ वर्कर उनके साथ होता है उसको होम विजिट पे उनकी बातों को सुनना, और वैक्सीन के लगने पर वैक्सीन के बाद भी उपस्थित रहना, और सबसे बड़ी बात है कि वैक्सीन से बुखार आएगा ये पहले से एक्सप्लेन करना। जब पहले से इंसान को पता होता है ना तो वो इतना नहीं डरता, लेकिन जब उसको कुछ पता ही नहीं है, अनसर्टेन है, तो वो ज्यादा डरता है। मतलब आप सोचो, आपको कल ऑफिस जाना है तो आप ठीक है कल ऑफिस जाना है, ये करना है और कल ऑफिस जाना है, जब आपको पता ही नहीं है कल क्या लेके आएगा। कोविड टाइम्स में कितना अनसर्टेनिटी हुआ था, कितना डर मन में बैठ गया था कि कल हो ना हो, तो ये सिचुएशन नहीं आनी चाहिए। पहले ही उनको एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि हाँ इस टीकाकरण से बुखार आ सकता है, इस टीकाकरण की वजह से आपको ये परेशानी हो सकती है, ऐसे में आप हमारे पास आइए या ऐसे में ये दवा हम आपको दे रहे हैं इसे खिलाइएगा। तो वो जब रिएश्योर हो जाता है ना, तब वो पेरेंट कभी नहीं हिचकिचाएगा। एक एक्सपीरियंस अच्छा तो सब अच्छा, पहल अच्छी हो जाए ना तो सब अच्छा हो जाता है।
1: बहुत अच्छी बात कही मैम आपने, पहल तो करिए अच्छा ही होगा। और मैं श्रोताओं को बताना चाहूंगी, पॉडकास्ट से पहले मैडम से मेरी बात हो रही थी और मैम ने मुझे एक बहुत अच्छी चीज बोली थी कि टीकाकरण जो है ना वो सिर्फ एक माँ की जिम्मेदारी नहीं है, उस बच्चे का अधिकार भी है। तो हमें हर बच्चे को उसका अधिकार देना है, सुनिश्चित करना है कि हर बच्चे का पूरा पूरा टीकाकरण हो।
0: डरिए नहीं, हम आपके साथ हैं।
1: मैम अंत में मैं चाहूंगी आप एक संदेश के साथ हम इस पॉडकास्ट को खत्म करना चाहेंगे, हमारे पेरेंट्स के लिए, हमारे हेल्थ वर्कर्स के लिए, सबके लिए एक संदेश।
0: अंत में मैं यही कहना चाहूंगी, सब आगे आए माता पिता, अपने बच्चे को टीकाकरण करवाएं, क्योंकि स्वस्थ बच्चा स्वस्थ भविष्य। तो अगर आप अपने बच्चे के भविष्य को स्वस्थ देखना चाहते हैं, टीकाकरण जरूर करवाएं।
1: बिल्कुल। तो धन्यवाद मैम, आपने इतने अच्छे से हमें बताया, इतनी सरल भाषा में सहज तरीके से हमें बताया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैम। और मुझे पूरा विश्वास है कि पेरेंट्स आगे आएंगे, सभी अपने बच्चों का टीकाकरण कराएंगे, उनको उनका अधिकार दिलाएंगे। थैंक यू वेरी मच।
2: तो दोस्तों, उम्मीद है कि सेहत सही लाभ कई का ये प्रयास आपके जीवन में जागरूकता और विश्वास की एक नई किरण लेकर आया होगा। याद रखिए, सही जानकारी ही बेहतर स्वास्थ्य की पहली सीढ़ी है। टीकाकरण न केवल आपको बल्कि आपके परिवार और पूरे समाज को सुरक्षित रखने का एक मजबूत कवच है। इसी संदेश के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। अपना और अपनों का ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, जागरूक रहें, क्योंकि जब सेहत सही होती है तो लाभ सच में कई होते हैं। नमस्कार।
3: स्मार्ट एनजीओ प्रस्तुत करता है

0: हेलो दोस्तों, आप सुन रहे हैं आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट। और दोस्तों, मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त आरजी वंशी, और लेकर आई हूं आज आपके लिए बहुत ही खास बातें। लेकिन प्रोग्राम को शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि ये जो जानकारी है जो मैं आज आपसे साझा करने वाली हूं, वो स्मार्ट एनजीओ के सौजन्य से है, और इस प्रोग्राम का नाम है सेहत सही लाभ कई, जिसमें हम कुछ ऐसी बातें करते हैं जो आपकी सेहत से रिलेटेड होती हैं। वहीं आपको हम समय समय पर जानकारी देते हैं कि आप किस तरीके से अपनी हेल्थ का ध्यान रख सकते हैं, या उन महिलाओं के बारे में बात करते हैं जो गर्भावस्था में हैं इस वक्त, और किस तरीके से वो अपनी सेहत का ख्याल रख सकती हैं और अपने खाने पीने की ध्यान रख सकती हैं। और साथ ही साथ हम ये भी बताते हैं कि परिवार किस तरीके से उस महिला की मदद कर सकता है। देखिए, ये सफर बड़ा ही कठिन होता है, तो ऐसे में परिवार की भागीदारी और उनकी जिम्मेदारी काफी मायने रखती है। जैसा कि आपको पता है कि गर्भावस्था के दौरान महिला के स्वास्थ्य का ख्याल रखना माँ और बच्चे दोनों के लिए बहुत जरूरी हो जाता है। तो इसी दौरान शरीर में कई तरीके के बदलाव आते हैं, जिसमें से एक आम समस्या होती है खून की कमी, जिसे हम एनीमिया के नाम से भी जानते हैं। और अक्सर इसके जो सिम्टम्स होते हैं वो हम जाने अनजाने ऐसे ही जाने देते हैं, हमें लगता है क्योंकि गर्भावस्था में ऐसा होता ही है तो ये एक आम बात है। लेकिन दोस्तों, कई बार सिम्टम्स आम होते हुए भी हमें समझ नहीं आता कि वो किस ओर इशारा कर रही हैं। तो चलिए कुछ इस बारे में आज आपसे जानकारी साझा कर देती हूँ। देखो, गर्भावस्था के दौरान जो शरीर में खून की कमी आती है वो इसलिए आती है क्योंकि प्लाज्मा की मात्रा बढ़ जाती है, ठीक, और जिससे हीमोग्लोबिन को बनाए रखने के लिए अधिक आयरन की जरूरत पड़ती है हमारे शरीर को। और आप मानो कि अगर शरीर को पर्याप्त आयरन ही नहीं मिलेगा तो हीमोग्लोबिन का जो लेवल है वो अपने आप कम होता चला जाता है, और इसी कंडीशन को, इसी स्थिति को एनीमिया के नाम से जाना जाता है। तो इसके सिम्टम्स क्या होते हैं जो आम होकर भी आम नहीं होते, तो चलिए इस पर बात कर लेते हैं। इस अवस्था में एक महिला को बहुत ज्यादा थकावट महसूस हो सकती है, कमजोरी उसे महसूस हो सकती है, उसके चेहरे पर नाखूनों या आंखों के नीचे पीलापन आपको देखने को मिल सकता है, उसका सांस फूल सकता है, या उसको बार बार चक्कर आने की समस्या हो सकती है, सरदर्द उसे हो सकता है, और हाथ पांव उसके ठंडे पड़ सकते हैं। और ये वही सिम्टम्स हैं, ये वही संकेत हैं जिन्हें हम अक्सर यूं ही समझकर कि ऐसा तो होता ही है ये समझकर हम टाल देते हैं। लेकिन दोस्तों, इन सिम्टम्स को टालना नहीं है, जब भी ये लक्षण आपको दिखाई दे एक बार जरूर अपने पास के स्वास्थ्य केंद्र पर जाकर एक बार जरूर अपनी जाँच कराएं, क्योंकि जाँच करा लेंगे तो आपके मन का जो वहम है वो भी निकल आएगा, और साथ ही साथ जो आपकी स्वस्थ होने की अपडेट है वो भी आप तक पहुंच जाएगी। देखो, खून की कमी जो है वो आपके खानपान से होती है। अगर आप अपने खानपान का ध्यान रखेंगे, अपनी सही से देखभाल रखेंगी, तो खून की कमी बिल्कुल भी नहीं आएगी। आपको बस ध्यान देना है अपने आहार पर, और आपका जो आहार होना चाहिए वो होना चाहिए आयरन से भरपूर, जिसमें कि आप पालक, मेथी, चुकंदर और बाकी की जो हरी पत्तेदार सब्जियां होती हैं वो जरूर खाएं। साथ ही साथ जो फल होते हैं, खास तौर से अनार, खजूर, मुनक्खा और गुड़, ये भी अपनी डाइट में जरूर शामिल करें। और जो आपकी रसोई घर में दालें मौजूद होती हैं वो तो प्रोटीन का बेहतरीन सोर्स होती हैं, तो रोजाना नहीं तो आप एक दिन छोड़ करके दाल जरूर खाएं। काला चना आप खा सकती हैं, वो भी आपकी सेहत के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा, और राजमा भी बहुत अच्छा रहता है, आयरन से भरपूर रहता है। वहीं आपको बता दूं कि विटामिन सी भी बड़ा ही जरूरी हो जाता है ऐसे टाइम में, तो आयरन को शरीर में अच्छी तरीके से सोखने के लिए विटामिन सी की जरूरत और भी ज्यादा बढ़ जाती है। इसके लिए आप नींबू खा सकते हैं, आंवला, संतरा और टमाटर, इसको आप अपने जो खाने की थाली है उसमें जरूर शामिल करें, यानी कि जो खट्टी चीजें होती हैं, जो तासीर जिनका नेचुरली ही खट्टा होता है, आप उसको जरूर खाएं। और आयरन की गोलियां जो डॉक्टर देते हैं उसको आप सही समय पर लें, फॉलिक एसिड सही पर लें, और नियमित रूप से उनका सेवन करें। ऐसे ना करें कि आज हमने खा ली, कल को हम उसको छोड़ देंगे, क्योंकि ये लापरवाही होती है और इसके जो परिणाम होते हैं वो ज्यादा अच्छे नहीं होते, और बाद में आपको लगता है कि हमने तो दवाइयाँ खाई थी लेकिन आप एक शब्द भूल जाते हैं कि क्या आपने नियमित रूप से वो दवाई खाई भी थी या आपने छोड़ छोटी सी लापरवाही बरती थी अपनी सेहत के साथ। तो अपनी सेहत के साथ कोई भी लापरवाही आपको नहीं बरतनी है। इसी के साथ एक बात आपको जरूर बता दूं कि जो महिलाएं गर्भावस्था में होती हैं और आयरन की गोलियां वो खा रही हैं, उसको आप बिल्कुल भी चाय के साथ ना लें, कॉफी के साथ भी बिल्कुल ना लें, क्योंकि ये क्या करते हैं, ये आयरन को आपके शरीर में सोखने से रोक लेते हैं। इसे या तो आप सादे पानी से ले सकते हैं या नींबू पानी के साथ आप इसको लेंगी तो और भी अच्छा हो जाएगा। और किस तरीके से आप गर्भावस्था में अपना देख रेख कर सकती हैं और क्या इसके खास तरीके हो जाते हैं, इसके बारे में थोड़ी सी आपको बात बता देती हूँ। आपको सबसे पहले तो नियमित जांच करानी है, यानी कि डॉक्टर से समय समय पर आपको जांच करानी है, ANC विजिट करानी है, हीमोग्लोबिन, ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर की जांच आपको नियमित रूप से करानी है। साथ ही साथ डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही जरूरी अल्ट्रासाउंड कराने हैं। अपनी मनमर्जी से कोई अल्ट्रासाउंड नहीं कराना है। अपनी जो डाइट है वो आपको बैलेंस लेनी है। प्रोटीन के लिए आप दूध, पनीर, दही, दालें, अगर अंडा खाती हैं तो अंडा भी आप खा सकती हैं। कैल्शियम के लिए, क्योंकि आपके बच्चे के विकास के लिए भी आपको कैल्शियम चाहिए होगा, तो वो आपको दूध और डेयरी उत्पाद से ही मिलता है, तो इसलिए वो आप जरूर खाएं। इसी के साथ दिन भर में कम से कम 8 से 10 गिलास पानी जरूर आपको पीना है। और दोस्तों एक खास बात और हो जाती है, मैं आपको बता दूं कि रात में कम से कम आपको 8 घंटे की नींद लेना जरूरी हो जाता है और दिन भर में भी आपको समय निकाल करके 1 से 2 घंटे आराम जरूर करना है, क्योंकि जितना आप आराम करेंगी।
1: ये है मेरठ का नंबर 1 सुबह आरती, आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM।

0: लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड की ठोर, अत्याधुनिक नर्सरी, ईसीजी, इको, कार्डियोग्राफी, सेमी प्राइवेट और प्राइवेट रूम्स, डिजिटल एक्सरे हो या अल्ट्रासाउंड, न्यूनेटल केयर यूनिट और बच्चों के लिए विशेष ऑपरेशन थिएटर, 2400 घंटे पैथोलॉजी लैब्स। लोकप्रिय हॉस्पिटल की ठोर में आज ही आकर मिले, हमारे अनुभवी डॉक्टर और विशेषज्ञ आपके स्वास्थ्य की देखभाल के लिए 2400 घंटे तैयार, अत्याधुनिक उपकरण और तकनीक जो आपको सर्वोत्तम सेवाएं प्रदान करें। लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड की ठोर, सुभारती कैंसर हॉस्पिटल। यहाँ आपको सिर्फ उपचार नहीं मिलता, आपको मिलता है प्यार, समर्थन और सबसे जरूरी उम्मीद। हम जानते हैं कि हर मरीज की जिंदगी की कहानी अलग होती है और हम हर कहानी को जीतने की पूरी कोशिश करते हैं। हमारे विशेषज्ञ डॉक्टरों के साथ हर कदम पर हम आपको उम्मीद और जीवन की नई राह दिखाते हैं। कैंसर के खिलाफ इस लड़ाई में हम आपके साथ हैं। विश्व स्तरीय और अत्याधुनिक इलाज, सुभारती कैंसर हॉस्पिटल। टू नो मोर कॉल नाउ 9639010313।
1: यूं ही मारते रहे दम तो जिंदगी हो जाएगी बेदम। बचाना चाहते हो किसी का जीवन तो संपर्क करे विश्व स्तरीय सुविधाओं से युक्त सुभारती नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केंद्र, सुभारती हॉस्पिटल झाजरा देहरादून। कॉल करे 9760920865।
0: दमार्स रिजॉर्ट्स, चाहे आपकी शादी हो, फैमिली आउटिंग हो या एक खास डिनर गेट टुगेदर हो, दमार्स रिजॉर्ट्स में बनाए अपनी जिंदगी का हर पल रॉयल। किटी पार्टीज हो या इंटीमेट गैदरिंग, हमारे ग्रैंड बैंकेट हॉल्स, फाइन डाइनिंग और शाही हॉस्पिटैलिटी से हर इवेंट हो जाएगा यादगार। द मार्स रिजॉर्ट्स, एक रॉयल एक्सपीरियंस नियर सुभारती, हरिद्वार बाईपास रोड, मेरठ। जब जीवन में अंधेरे घेर लेते हैं तब हर किसी को एक उम्मीद की किरण की तलाश होती है। सुभारती अस्पताल में हम सिर्फ इलाज नहीं करते, हम आपकी उम्मीदों को बचाते हैं। यहाँ हर दर्द का इलाज है, हर समस्या का समाधान है, क्योंकि हम जानते हैं उम्मीद कभी खत्म नहीं होती। सुभारती अस्पताल, जहाँ हर मरीज को मिलती है जिंदगी की नई उम्मीद। 2400 घंटे हम हैं आपकी सेवा में, किसी भी प्रकार की समस्या होने पर आज ही आइए। छत्रपति शिवाजी।

सुभारती हॉस्पिटल NH 58 परतापुर बाईपास रोड मेरठ। जुकाम खांसी या बुखार कई दिनों तक रहे तो छोटे बच्चों को निमोनिया हो सकता है। अपने बच्चों के बेहतर इलाज के लिए आज ही संपर्क करें लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड किठोर, जहां पर 2400 घंटे हमारे बाल रोग विशेषज्ञ आपके बच्चों की बेहतर देखभाल के लिए उपलब्ध। 2400 घंटे इमरजेंसी सुविधाओं के साथ लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड किठोर SP पेट्रोल पंप के सामने। कॉल करें 8194007405।

0: आप सुन रहे हैं आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM आरजे वंशी के साथ।
1: स्टूडियो है। हेलो नमस्ते आदाब दोस्तों, मैं हूँ आपके साथ आपकी आरजी वंशी और लेकर हाजिर हूँ आपके वाले प्रोग्राम नाम है जिसका सेहत सखी और संसार। 9:10 हो गई है, 27 अगस्त आज की तारीख है और जनाब कल है राखी। यस, रक्षाबंधन का त्योहार है कल और सभी बहुत एक्साइटेड हैं, बहनें भी एक्साइटेड हैं तो वहीं भाई के दिल में भी धक धक धक धक जोरों से हो रही है क्योंकि खर्चा पूरा होने वाला है। इसी के साथ दोस्तों, क्योंकि आज है गुरुवार का दिन और आज गुड वाली मॉर्निंग, सूर्यदेव अभी तक नहीं निकले हैं, हो सकता है कि बारिश हो जाए और बहुत ज़्यादा उमस भरा ये मौसम हो रखा है। गर्मी पूरी है, बारिश चाहे कितने भी हो रही हो। बाकी आपके यहाँ पर क्या है मौसम के हाल, लेट मी नो इन माई नंबर 9639012111। फिलहाल चलिए आपको बता देती हूँ आज का फॉर्मूला ऑफ द डे, जो कुछ यूँ कहता है, सुनेंगे साथ में। विश्वास वो शक्ति है जिससे उजड़ी हुई दुनिया में भी प्रकाश लाया जा सकता है और ये बात कही हमारे APJ अब्दुल कलाम ने। और इस बात से उन्होंने ये बताया कि आत्मविश्वास और सकारात्मक सोच की जो शक्ति है वो वाकई बहुत बड़ी होती है, और क्योंकि ये देश के महान वैज्ञानिक और पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वारा कहा गया है। इसका मतलब सीधे सीधे यही है कि परिस्थिति चाहे कितने भी विपरीत या फिर निराशजनक क्यों ना हो, यदि खुद पर और अपने सपनों पर अटूट विश्वास है तो कठिन से कठिन समय को भी बदला जा सकता है। वहीं उजड़ी हुई दुनिया का अर्थ जीवन के वे कठिन दौर हैं जो जब सब कुछ बिखर जाता है, असफलता, आर्थिक तंगी या व्यक्तिगत नुकसान। ऐसे समय में केवल आपका विश्वास ही होता है जो आपको आगे बढ़ाने का काम करता है, आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा निरंतर देता रहता है। जब मन में पक्का विश्वास होता है ना, तो असंभव दिखने वाले काम भी संभव हो जाते हैं। विश्वास ही वो ईंधन है जो हमें विपरीत परिस्थितियों में भी हार नहीं मानने देता। निराशा इंसान को कमज़ोर बनाती है जबकि विश्वास उसे हर चुनौती से लड़ने की नई ऊर्जा भी देता है। तो इसीलिए उन लोगों और विचारों से दूर रहें जो आपके आत्मबल को कमज़ोर करते हैं, और चाहे कोई आप पर भरोसा करे ना करे, आपको अपनी कैपेबिलिटीज़ पर पूरा विश्वास होना चाहिए। कठिन समय हमेशा के लिए नहीं होता, इस बात को हमेशा याद रखें।

का दृढ़ विश्वास ही उस समय को पार लगाने की सबसे बड़ी कुंजी होती है। तो चलिए दोस्तों, अभी हम इंजॉय करेंगे अपकमिंग गाना, उसके बाद आई विल बी बैक टू यू, कहीं मत जाइएगा।

0: सुन रहे हैं आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM आरजे वंशी के साथ।
1: जी बिल्कुल, आप सुन रहे हैं आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट। और दोस्तों, ढेर सारी बातें लेकर फिर से आ गई हूँ आपके पास। 9:24 हो गए हैं, 27 अगस्त आज की तारीख है। और फिलहाल चलिए आज के इतिहास के बारे में आपको बता देती हूँ कि भारतीय और विश्व इतिहास में आज का जो दिन है, आज की जो तारीख है, वो काफ़ी जो है महत्व हो जाती है इसकी। इस दिन धर्म, विज्ञान, अंतरिक्ष, खेल और राजनीति के फील्ड में कई सारे ऐसे ऐतिहासिक काम हुए जिनके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। जैसे कि बात करें 1604 की, 1604 की, तो स्वर्ण मंदिर की स्थापना आज के दिन की गई थी। सिखों का ये पवित्र ग्रंथ है आदि गुरु ग्रंथ साहिब। इसकी पहली बार अमृतसर के प्रसिद्ध स्वर्ण मंदिर यानी के श्री हर मंदिर साहिब में प्रतिष्ठापना की गई थी। इसी के साथ आपको बता दूं कि 1870 की ये बात है जब भारत के पहले मजदूर संगठन के रूप में कलकत्ता में श्रमजीवी संघ यानी के लेबर यूनियन की स्थापना आज ही के दिन की गई थी। वहीं 1939 की बात करें तो जेट ईंधन से चलने वाले दुनिया के पहले विमान ने जर्मनी में अपनी सफल पहली उड़ान भी भरी थी। वहीं 1991 में मोल्डोवा देश ने सोवियत संघ से आधिकारिक रूप से स्वतंत्र होने की घोषणा भी की थी। और सबसे ज़रूरी बात आपको बता देती हूँ स्पेस रिलेटेड, ये बात है 2003 की, जब खगोल विज्ञान के इतिहास में लगभग 60,000 वर्षों के अंतराल के बाद मंगल ग्रह पृथ्वी के सबसे अधिक करीब पहुंच गया था। और इस दुर्लभ खगोलीय घटना को देखने के लिए दुनिया भर में भारी उत्साह भी देखा गया था। वेल दोस्तों, और भी कई बातें हैं जो आज के दिन को और भी ज़्यादा खास बनाने के लिए दर्ज की गई हैं, बताऊंगी आपको सारी की सारी बातें। बट मीनवाइल हम एंजॉय करेंगे बूम मूवी का ये बहुत ही प्यारा सा गाना। आपका कुछ कहना है, कुछ बताना है तो बिल्कुल मुझे कॉल या मैसेज कर सकते हैं। 9639012111 नंबर हो जाता है मेरा। फिलहाल ये गाना आपके लिए।

0: आप भाषा और साहित्य की दुनिया में चमकना चाहते हैं? तो देर किस बात की, आज ही प्रवेश ले स्वामी विवेकानंद सुभारती विश्वविद्यालय मेरठ के भाषा विभाग में।
1: यहाँ आपको मिलेंगे भाषा विभाग द्वारा संचालित ये बेहतरीन पाठ्यक्रम: BA ऑनर्स हिंदी, BA ऑनर्स इंग्लिश, MA हिंदी, MA इंग्लिश। यहाँ आपको मिलेगा AI आधारित आधुनिक तकनीक से भाषा सीखने का अनोखा अवसर, अनुभवी प्रोफेसर्स का मार्गदर्शन, UGC NET, JRF तथा प्रतियोगी परीक्षाओं की पक्की तैयारी, मीडिया, अनुवाद, कॉरपोरेट या शिक्षण, अपने हर करियर गोल को दें एक नई उड़ान।
0: एडमिशन के लिए आज ही कॉल करें 9639222290 और 9639222293 पर, या विजिट करें भाषा विभाग स्वामी विवेकानंद सुभारती विश्वविद्यालय मेरठ में।
2: सुभारती कैंसर हॉस्पिटल, यहाँ आपको सिर्फ उपचार नहीं मिलता, आपको मिलता है प्यार, समर्थन और सबसे जरूरी उम्मीद। हम जानते हैं कि हर मरीज की जिंदगी की कहानी अलग होती है और हम हर कहानी को जीतने की पूरी कोशिश करते हैं। हमारे विशेषज्ञ डॉक्टरों के साथ हर कदम पर हम आपको उम्मीद और जीवन की नई राह दिखाते हैं। कैंसर के खिलाफ इस लड़ाई में हम आपके साथ हैं। विश्व स्तरीय और अत्याधुनिक इलाज, सुभारती कैंसर हॉस्पिटल। टू नो मोर कॉल नाउ 9639010313। दमार्स रिजॉर्ट्स, चाहे आपकी शादी हो, फैमिली आउटिंग हो या एक खास डिनर गेट टुगेदर हो, दमार्स रिजॉर्ट्स में बनाए अपनी जिंदगी का हर पल रॉयल। किटी पार्टीज हो या इंटीमेट गैदरिंग, हमारे ग्रैंड बैंकेट हॉल्स, फाइन डाइनिंग और शाही हॉस्पिटैलिटी से हर इवेंट हो जाएगा यादगार। द मार्स रिजॉर्ट्स, एक रॉयल एक्सपीरियंस नियर सुभारती, हरिद्वार बाईपास रोड, मेरठ।
1: लोकप्रिय अस्पताल सिर्फ नाम से ही नहीं बल्कि अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ मिलने वाली सेवाओं के कारण भी लोकप्रिय है। यहाँ आपको एक ही छत के नीचे मिलेंगे मेडिसिन, स्त्री रोग विशेषज्ञ, बाल रोग विशेषज्ञ, जनरल सर्जरी, गुर्दा रोग विशेषज्ञ, गुर्दा और मूत्र रोग विशेषज्ञ, दांत और मुंह के रोग विशेषज्ञ, आँख, कान, नाक और गला रोग विशेषज्ञ, हड्डी रोग विशेषज्ञ, हृदय और छाती रोग विशेषज्ञ, थायराइड और मधुमेह रोग विशेषज्ञ, ब्रेन और स्पाइन रोग विशेषज्ञ। लोकप्रिय अस्पताल किठोर में।
3: यहाँ आपको मिलेंगे सभी प्रकार के ट्रॉमा एवं इमरजेंसी सुविधाएं, जैसे नॉर्मल डिलीवरी एवं ऑपरेशन डिलीवरी, आधुनिक ICU एवं वेंटिलेटर की सुविधाएं, मॉडल ऑपरेशन थिएटर, आधुनिक नर्सरी, ECG व इको कार्डियोग्राफी, जनरल वार्ड, सेमी प्राइवेट और प्राइवेट रूम्स, डिजिटल एक्सरे एवं अल्ट्रासाउंड 24 घंटे कार्यरत, पैथोलॉजी लैब्स, 24 घंटे डायलिसिस की सुविधा, 24 घंटे मेडिकल स्टोर जैसे अनेकों सुविधाओं के साथ हम आपको 24/7 की इमरजेंसी सेवाएं भी प्रदान करते हैं।
1: अपनी बीमारियों और समस्याओं से निजात पाने के लिए मिले 120 बेड वाले लोकप्रिय अस्पताल सुपर मल्टी स्पेशलिटी किठोर के विशेषज्ञों से और पाएं सारी बीमारियों से निजात। HP पेट्रोल पंप के सामने, निकट नहीं।

0: सुन रहे हैं आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM आरजे वंशी के साथ।
1: वंस अगेन वेलकम बैक टू आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट। और दोस्तों, बहुत सारी बातें मैं आपसे करने के लिए बिल्कुल आ गई हूँ। लगान मूवी का भी बहुत ही बेहतरीन सा गाना भी हमने इंजॉय किया। मतलब लगान मूवी जब आप देखते हैं ना, तो सच में आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, क्योंकि इसकी मेकिंग इतनी ज़्यादा मतलब स्ट्रगल भरी वाली रही है और इतनी ज़्यादा संख्या में इसमें कास्ट लगी है। अगर आप इस मूवी को बहुत ध्यान से देखते हैं, बारीकी से देखते हैं, तो आपको सच में इसके पीछे किया गया बहुत सारा हार्डवर्क डेडिकेशन दिखाई देने वाला है। बहुत ही बेहतरीन मूवी में से ये एक रही है। इसी के साथ चलिए आपसे आज मैं साझा कर रही हूँ अभी फ़िलहाल आज का ही इतिहास। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि खगोल विज्ञान के इतिहास में लगभग 60,000 वर्षों के अंतराल के बाद मंगल ग्रह पृथ्वी के सबसे अधिक करीब पहुँचा था 2003 में, और इस दुर्लभ घटना को देखने के लिए दुनिया भर में काफ़ी उत्साह भी देखा गया था। वहीं 2018 की बात करें तो नीरज चोपड़ा का ऐतिहासिक स्वर्ण पदक भी आज ही के दिन दर्ज किया गया। यानी कि भारतीय स्टार जेवलिन थ्रोअर, भाला फेंक खिलाड़ी जो हैं हमारे नीरज चोपड़ा, उन्होंने जकार्ता एशियाई खेलों में शानदार प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण पदक जीतकर देश का नाम रोशन किया था। इसी दिन भारत में पहली बार जेव जेट ईंधन यानी के बायो जेट फ्यूल से विमान का प्रशिक्षण भी किया गया था, तो इसलिए आज का दिन और भी ज़्यादा खास हो जाता है। आपको बताऊं कि क्रिकेट के इतिहास के सबसे महान बल्लेबाजों में गिने जाने वाले ऑस्ट्रेलिया के सर डॉन ब्रेडमैन का जन्म आज के दिन हुआ था 1907 में, जिनके टेस्ट क्रिकेट का औसत आज भी अछूता और ऐतिहासिक माना जाता है। वहीं भारत की पहली महिला तलवारबाज यानी कि फेंसर सीए भवानी देवी का जन्म आज ही के दिन हुआ था, जिन्होंने ओलंपिक में देश का प्रतिनिधित्व भी किया था यानी कि रिप्रेजेंटेशन भी किया था। चलिए अभी ना मैं आपको लेकर चलती हूँ बहुत ही प्यारे से गाने की तरफ, उसके बाद आई विल बी बैक टू यू विद बहुत सारी बातें। आपको कुछ कहना है, कुछ बताना है, तो बिल्कुल आप मुझसे ज़रूर बात कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं हमारे नंबर के माध्यम से जो कि है 9639012111। मीनवाइल ये गाना आपके लिए, कहीं मत जाइए, यूं ही सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM।

0: अरे अरे अरे रुको, क्या कर रही हो?
1: क्या कर रही हो मतलब रात का बासी पानी पैक कर ताज़ा पानी भर रही हूँ।
0: रात का बासी पानी?
1: जी, अब पीने के लिए तो ताज़ा पानी भरना ही पड़ेगा ना।
0: तुम्हें पता भी है देश के ना जाने कितने हिस्सों में लोगों को ऐसा पानी नसीब नहीं होता, वो सड़ा हुआ गंदा पानी पीने को मजबूर हैं। और तुम कहती हो बासी पानी, एक दिन में थोड़ी पानी खराब होता है।
1: तो फिर कैसे किया जाए?
0: इस पानी का जहाँ हो सके उपयोग किया जाए और इस तरीके से फेंका या बहाया तो बिल्कुल ना जाए।
2: क्योंकि ऐसा करना पानी को उड़ेलना नहीं है बल्कि अपने भविष्य के साथ खेलना है। जल है तो कल है, पानी बचाइए, भविष्य बनाइए।
3: सुभारती विश्वविद्यालय और आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM द्वारा जनहित में जारी।
4: ये है मेरठ का नंबर 1 सुभारती, आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM।

0: जुकाम, खांसी या बुखार कई दिनों तक रहे तो छोटे बच्चों को निमोनिया हो सकता है। अपने बच्चों के बेहतर इलाज के लिए आज ही संपर्क करें लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड किठोर, जहां पर 2400 घंटे हमारे बाल रोग विशेषज्ञ आपके बच्चों की बेहतर देखभाल के लिए उपलब्ध। 2400 घंटे इमरजेंसी सुविधाओं के साथ लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड किठोर, SP पेट्रोल पंप के सामने। कॉल करें 8194007405।
1: यूं ही मारते रहे दम तो जिंदगी हो जाएगी बेदम। बचाना चाहते हो किसी का जीवन तो संपर्क करें विश्व स्तरीय सुविधाओं से युक्त सुभारती नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केंद्र सुभारती हॉस्पिटल झाजरा देहरादून। कॉल करें 9760920865।
2: Are you looking for a place from where your voice get a fame? Are you looking for a perfect platform to record your voice? Then why are you worrying a lot? Captain Ram Singh Sound Studio Subharti is here for you. Solution of your problem is under one roof. We provide facilities like dubbing, vocal recording, music composing, mixing and mastering. Visit here and we are giving you guarantee you gonna love it. Address Tathagat Block, 6th floor, Swami Vivekanand Subharti University, Meerut. For more information, contact 9759303022.
0: जुकाम, खांसी या बुखार कई दिनों तक रहे तो छोटे बच्चों को निमोनिया हो सकता है। अपने बच्चों के बेहतर इलाज के लिए आज ही संपर्क करें लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड किठोर, जहां पर 2400 घंटे हमारे बाल रोग विशेषज्ञ आपके बच्चों की बेहतर देखभाल के लिए उपलब्ध। 2400 घंटे इमरजेंसी सुविधाओं के साथ लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड किठोर, SP पेट्रोल पंप के सामने। कॉल करें 8194007405।

0: सुन रहे हैं आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM आरजे वंशी के साथ।
1: Once again, welcome back to Azad Hind Radio 90.0 FM, Nation First, Always First. और दोस्तों 10:10 हो गए हैं as per my studio clock, 27 अगस्त आज की तारीख है और अभी हमने अभिजीत की वॉइस में काफ़ी प्यारा सा गाना सुना। इसी के साथ चलिए आपको बता देती हूँ, क्योंकि आज हम बातें कर रहे हैं 27 अगस्त के बारे में कि आज का दिन क्यों हो जाता है खास और खासम खास। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये बात है साल 1604 की, जब 27 अगस्त का दिन, यानी कि ये बड़ा ही खास है सिख इतिहास और भारतीय आध्यात्मिक परंपरा में बड़ा महत्वपूर्ण ये दिन माना जाता है। इस दिन सिखों के पवित्र ग्रंथ आदि ग्रंथ, जिसे वर्तमान में श्री गुरु ग्रंथ साहिब के नाम से जाना जाता है, इसकी पहली बार अमृतसर के प्रसिद्ध स्वर्ण मंदिर यानी कि श्री हरमंदिर साहिब में प्रतिष्ठापना की गई थी। और इसके बारे में चलिए आपको कुछ और भी बातें बता देती हूँ। देखिए, सिखों के पांचवें गुरु यानी कि गुरु अर्जन देव जी ने आदि ग्रंथ साहिब का संकलन किया था। गुरु अर्जन देव जी ने सिख गुरुओं के साथ साथ कुछ अन्य जो संत रहे, जैसे कि कबीर जी, रविदास जी, राम नामदेव जी, बाबा फरीद जी की वाणी और भजनों को इसमें एकत्र किया, ताकि ये मानवता और सर्वधर्म संभाव का प्रतीक बन सके। उसके बाद गुरु अर्जन जी ने इस पवित्र वाणी को बोला और महान सिख विद्वान भाई गुरुदास जी ने इसे अपने हाथों से गुरुमुखी लिपि में लिखा भी। अगस्त 1604 में संकलन पूरा होने के बाद 27 अगस्त 1604 यानी कि आज ही के दिन को इसे श्री हरमंदिर साहिब यानी स्वर्ण मंदिर में स्थापित भी किया गया था। इस पवित्र ग्रंथ की स्थापना के बाद बाबा बुद्धा जी को हर मंदिर साहिब का पहला ग्रंथी यानी के मुख्य पुजारी नियुक्त किया गया था। गुरु अर्जन देव जी ने अपनी विनम्रता का परिचय देते हुए इस ग्रंथ को स्वर्ण मंदिर में सबसे ऊंचे स्थान यानी के मंच पर रखा और खुद इसके नीचे जमीन पर बैठ गए। तो ये होती है इज्जत देना। फिलहाल चलिए बहुत ही प्यारा सा गाना इज वेटिंग फॉर यू, उसके बाद बाकी की बातें आपसे करूंगी, लेकिन ये गाना पहले सुनेंगे साथ में, उसके बाद आई बी बैक टू यू। कहीं मत जाइएगा दोस्तों।

0: आप सुन रहे हैं आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM आरजे वंशी के साथ।
1: वंस अगेन वेलकम बैक टू आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट। और दोस्तों, जैसा कि हम बात कर रहे हैं, बहुत सारी आपसे 10:27 हो गए हैं, 27 अगस्त आज की तारीख है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि 1604 में स्वर्ण मंदिर में स्थापना की गई थी, और इसी के बारे में मैं आपको काफ़ी सारी बातें बता रही हूँ। चलिए इसके ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व को समझ लेते हैं। देखिए, इस ग्रंथ में विभिन्न जातियाँ, वर्गों और धर्मों के संतों की वाणी को स्थान मिला। ये दर्शाता है कि सिख धर्म मानवता, समानता और भाईचारे को सबसे ऊपर रखता है। इसी के साथ शुरुआत में इसे आदि ग्रंथ भी कहा गया था। बाद में सिखों के 10वें गुरु, जिनका नाम गुरु गोबिंद सिंह जी रहा, उन्होंने इसमें 9वें गुरु यानी के श्री गुरु तेग बहादुर जी की वाणी को जोड़ दिया। और 1708 में नादेड़ में इसे हमेशा के लिए सिखों के अंतिम और जीवंत गुरु यानी श्री गुरु ग्रंथ साहिब के रूप में सुशोभित भी किया गया। आज भी स्वर्ण मंदिर में इसी ऐतिहासिक परंपरा के तहत गुरु ग्रंथ साहिब का प्रकाश किया जाता है, और देश दुनिया से आने वाले लाखों श्रद्धालु वहाँ पर माथा टेक करके आध्यात्मिक शांति भी प्राप्त करते हैं। आप कभी गए हैं स्वर्ण मंदिर, मुझे बता सकते हैं? बिल्कुल। बाकी आपको कुछ कहना है, कुछ बताना है, किसी का बर्थडे है या फिर किसी को कोई गाने की फरमाइश है, किसी को कोई गाना डेडिकेट करना है, तो बिल्कुल मुझे कॉल या मैसेज कर सकते हैं। नंबर बहुत ही आसान सा है मेरा, 9639012111। इस नंबर पर आप गाने की रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं। फिलहाल चलिए बहुत ही प्यारा सा गाना आपके लिए लेकर आई हूँ, इस गाने को इन्जॉय करेंगे। उसके बाद आई विल बी बैक टू यू विद बहुत सारी बातें। कहीं मत जाइएगा, यूं ही सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, मेरे यानी आरजे वंशी के साथ।

0: आप भाषा और साहित्य की दुनिया में चमकना चाहते हैं? तो देर किस बात की, आज ही प्रवेश लें स्वामी विवेकानंद सुभारती विश्वविद्यालय मेरठ के भाषा विभाग में।
1: यहाँ आपको मिलेंगे भाषा विभाग द्वारा संचालित ये बेहतरीन पाठ्यक्रम: BA ऑनर्स हिंदी, BA ऑनर्स इंग्लिश, MA हिंदी, MA इंग्लिश। यहाँ आपको मिलेगा AI आधारित आधुनिक तकनीक से भाषा सीखने का अनोखा अवसर, अनुभवी प्रोफेसर्स का मार्गदर्शन, UGC NET, JRF तथा प्रतियोगी परीक्षाओं की पक्की तैयारी, मीडिया, अनुवाद, कॉरपोरेट या शिक्षण। अपने हर करियर गोल को दें एक नई उड़ान।
0: एडमिशन्स के लिए आज ही कॉल करें 9639222290 और 9639222293 पर, या विजिट करें भाषा विभाग स्वामी विवेकानंद सुभारती विश्वविद्यालय मेरठ में।
2: यूं ही मारते रहे दम तो जिंदगी हो जाएगी बेदम। बचाना चाहते हो किसी का जीवन तो संपर्क करें विश्वस्तरीय सुविधाओं से युक्त सुभारती नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केंद्र, सुभारती हॉस्पिटल झाझरा देहरादून। कॉल करें 9760920865।
3: दम मार्स रिजॉर्ट्स, चाहे आपकी शादी हो, फैमिली

0: आउटिंग हो या एक खास डिनर गेट टुगेदर हो, द मार्स रिजॉर्ट्स में बनाए अपनी जिंदगी का हर पल रॉयल। किटी पार्टीज हो या इंटीमेट गैदरिंग, हमारे ग्रैंड बैंकेट हॉल्स, फाइन डाइनिंग और शाही हॉस्पिटैलिटी से हर इवेंट हो जाएगा यादगार। द मार्स रिजॉर्ट्स, एक रॉयल एक्सपीरियंस, नियर सुभारती, हरिद्वार बाईपास रोड, मेरठ।
1: Are you looking for a place from where your voice get a fame? Are you looking for a perfect platform to record your voice? Then why are you worrying a lot? Captain Ram Singh Sound Studio Subharti is here for you. Solution of your problem is under one roof. We provide facilities like dubbing, vocal recording, music composing, mixing and mastering. Visit here and we are giving you guarantee you gonna love it. Address Tathagat Block, 6th floor, Swami Vivekanand Subharti University, Meerut. For more information, contact 9759303022.
0: सुभारती कैंसर हॉस्पिटल, यहाँ आपको सिर्फ उपचार नहीं मिलता, आपको मिलता है प्यार, समर्थन और सबसे जरूरी उम्मीद। हम जानते हैं कि हर मरीज की जिंदगी की कहानी अलग होती है और हम हर कहानी को जीतने की पूरी कोशिश करते हैं। हमारे विशेषज्ञ डॉक्टरों के साथ हर कदम पर हम आपको उम्मीद और जीवन की नई राह दिखाते हैं। कैंसर के खिलाफ इस लड़ाई में हम आपके साथ हैं। विश्व स्तरीय और अत्याधुनिक इलाज, सुभारती कैंसर हॉस्पिटल। टू नो मोर कॉल नाउ 9639010313।
2: ये है आजाद हिंदू रेडियो 90.0 FM।

0: सुन रहे हैं आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM आरजे वंशी के साथ।
1: वेलकम बैक टू आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट। और दोस्तों, बहुत सारी बातें आपसे हो रही हैं। 10:49 हो गई हैं और मैं आपको बताने वाली हूँ कल से रिलेटेड कुछ बातें। देखिए, राखी का त्यौहार के लिए ना कुछ पहले से प्रेप्स भी लगते हैं, यानी कि प्रिपरेशन भी लगती हैं, तो वो आप किस तरीके से कर सकते हैं, चलिए उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, आप पूजा की थाली को सजा सकते हैं ताकि आपका जो राखी का त्यौहार है थोड़ा और अच्छा लगे, है ना। आप क्या कर सकते हैं, एक थाली में रोली आप ले सकते हैं जिसको आप कुमकुम बोलते हैं, अक्षत यानी के साबुत चावल, दिया, धूप, या आप अगरबत्ती भी रख सकते हैं, नारियल और कुछ मीठा, जैसे कि कुछ भी मिठाई आप उसमें रख सकते हैं, रक्षा सूत्र यानी के कलावा, और सुंदर राखियों को थाली में सजा कर आप रखें, और भाई के दाहिने हाथ की कलाई पर राखी बांधने से पहले माथे पर रोली और अक्षत का तिलक लगाया जाता है, फिर आरती उतारी जाती है। कुछ ऐसी प्रिपरेशंस होती हैं छोटी छोटी सी राखी की, लेकिन ये छोटी छोटी सी राखी की प्रिपरेशन त्यौहार में ना जान डाल देती हैं। बहुत क्यूट हो जाता है त्यौहार और बहुत शुभ भी माना जाता है। त्यौहार की मिठास बढ़ाने के लिए घर पर अगर आप कुछ स्वादिष्ट बनाना चाहते हैं तो चलिए उस पर बात कर लेते हैं। देखिए, क्योंकि ऐसे त्यौहार पर मीठा खाना बड़ा ही शुभ माना जाता है, और ये तो हमारे कंट्री की परंपरा भी रही है कि जब भी कोई त्यौहार होता है मीठे के बिना तो बिल्कुल उसका कोई कहते हैं ना रौनक ही नहीं रहती। तो इसीलिए आज कुछ ऐसी रेसिपीज़ बताने वाली हूँ जो इंस्टेंट तो होती ही हैं, साथ ही साथ आपके त्यौहार पर चार चांद लगाने वाली भी होती हैं। तो इंस्टेंट मखाना खीर इसमें सबसे पहले शामिल करना चाहूँगी। इसके लिए आपको चाहिए 2 कप मखाना, 1 लीटर दूध, 4 से 5 चम्मच चीनी, और कटे हुए बादाम पिस्ता, और थोड़ी सी इलायची का पाउडर आपको लेना होगा। इसको आप किस तरीके से बना सकते हैं, आपको लेना है एक पैन, और उसमें थोड़ा सा घी गरम करके आपको मखानों को हल्का सुनहरा और कुरकुरा होने तक रोस्ट करना है। आधे मखानों को दरदरा पीस लेना है और आधे साबुत रहने देना है आपको। एक भारी तले के बर्तन में दूध आपको उबालना है। जब आपको लगे कि दूध गाढ़ा होने लगा है तो उसमें पिसे हुए और साबुत मखाने आप डाल देंगे। इसे मीडियम फ्लेम पर आप पकने दें, जब तक कि खीर मलाईदार ना हो जाए तब तक आप इसको पकने दें, चलाते रहें, और सबसे लास्ट में चीनी, इलायची पाउडर और ड्राई फ्रूट्स डाल करके 2 मिनट आपको एडिशनली पकाना है और इसको गर्मा गर्म सर्व करना है। चाहे तो आप इसको ठंडा करके भी खा सकते हैं। देखिए, खीर के मज़े ना ठंडा करके कुछ अलग ही बात आती है, तो आप ठंडा करके भी इसको खा सकते हैं। बाकी गर्मा गर्म चीज़ का जो स्वाद होता है वो तो आउट ऑफ द यूनिवर्स होता है ना। मेरे मुँह में पानी आ गया आपसे बात करते करते। तो चलिए, मैं जाती हूँ एक छोटे से ब्रेक पर, आपके लिए छोड़कर जाऊँगी कुछ गाने। तो इन्जॉय करते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM पर।

0: अरे अरे अरे रुको, क्या कर रही हो?
1: क्या कर रही हो मतलब रात का बासी पानी फेंक कर ताज़ा पानी भर रही हूँ।
0: रात का बासी पानी?
1: जी, अब पीने के लिए तो ताज़ा पानी भरना ही पड़ेगा ना।
0: तुम्हें पता भी है देश के ना जाने कितने हिस्सों में लोगों को ऐसा पानी नसीब नहीं होता, वो सड़ा हुआ गंदा पानी पीने को मजबूर हैं। और तुम कहती हो बासी पानी, एक दिन में थोड़ी पानी खराब होता है।
1: तो फिर कैसे किया जाए?
0: इस पानी का जहाँ हो सके उपयोग किया जाए और इस तरीके से फेंका या बहाया तो बिल्कुल ना जाए।
2: क्योंकि ऐसा करना पानी को उड़ेलना नहीं है बल्कि अपने भविष्य के साथ खेलना है। जल है तो कल है, पानी बचाइए, भविष्य बनाइए।
3: सुभारती विश्वविद्यालय और आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM द्वारा जनहित में जारी।
4: यू आर लिसनिंग आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, राष्ट्र प्रथम सदैव प्रथम।
3: ये है मेरठ का नंबर 1 सुभारती आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM।

0: आप भाषा और साहित्य की दुनिया में चमकना चाहते हैं? तो देर किस बात की, आज ही प्रवेश ले स्वामी विवेकानंद सुभारती विश्वविद्यालय मेरठ के भाषा विभाग में।
1: यहाँ आपको मिलेंगे भाषा विभाग द्वारा संचालित ये बेहतरीन पाठ्यक्रम: BA ऑनर्स हिंदी, BA ऑनर्स इंग्लिश, MA हिंदी, MA इंग्लिश। यहाँ आपको मिलेगा AI आधारित आधुनिक तकनीक से भाषा सीखने का अनोखा अवसर, अनुभवी प्रोफेसर्स का मार्गदर्शन, UGC नेट, JRF तथा प्रतियोगी परीक्षाओं की पक्की तैयारी, मीडिया, अनुवाद, कॉरपोरेट या शिक्षण, अपने हर करियर गोल को दें एक नई उड़ान।
0: एडमिशन के लिए आज ही कॉल करें 9639222290 और 9639222293 पर, या विजिट करें भाषा विभाग स्वामी विवेकानंद सुभारती विश्वविद्यालय मेरठ में।
2: जुकाम, खांसी या बुखार कई दिनों तक रहे तो छोटे बच्चों को निमोनिया हो सकता है। अपने बच्चों के बेहतर इलाज के लिए आज ही संपर्क करें लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड किठोर, जहां पर 2400 घंटे हमारे बाल रोग विशेषज्ञ आपके बच्चों की बेहतर देखभाल के लिए उपलब्ध। 2400 घंटे इमरजेंसी सुविधाओं के साथ लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड किठोर, SP पेट्रोल पंप के सामने। कॉल करें 8194007405।
3: Are you looking for a place from where your voice get a fame? Are you looking for a perfect platform to record your voice? Then why are you worrying a lot? Captain Ram Singh Sound Studio Subharti is here for you. Solution of your problem is under one roof. We provide facilities like dubbing, vocal recording, music composing, mixing and mastering. Visit here and we are giving you guarantee you gonna love it. Address: Tathagat Block, 6th floor, Swami Vivekanand Subharti University, Meerut. For more information, contact 9759303022.
2: दमार्स रिजॉर्ट्स, चाहे आपकी शादी हो, फैमिली आउटिंग हो या एक खास डिनर गेट टुगेदर हो, दमार्स रिजॉर्ट्स में बनाए अपनी जिंदगी का हर पल रॉयल। किटी पार्टीज हो या इंटीमेट गैदरिंग, हमारे ग्रैंड बैंकेट हॉल्स, फाइन डाइनिंग और शाही हॉस्पिटैलिटी से हर इवेंट हो जाएगा यादगार। द मार्स रिजॉर्ट्स, एक रॉयल एक्सपीरियंस नियर सुभारती, हरिद्वार बाईपास रोड, मेरठ।
4: यूं ही मारते रहे दम तो जिंदगी हो जाएगी बेदम। बचाना चाहते हो किसी का जीवन तो संपर्क करे विश्वस्तरीय सुविधाओं से युक्त सुभारती नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केंद्र, सुभारती हॉस्पिटल झाझरा देहरादून। कॉल करे 9760920865।
2: जब जीवन में अंधेरे घेर लेते हैं तब हर किसी को एक उम्मीद की किरण की तलाश होती है। सुभारती अस्पताल में हम सिर्फ इलाज नहीं करते, हम आपकी उम्मीदों को बचाते हैं। यहाँ हर दर्द का इलाज है, हर समस्या का समाधान है, क्योंकि हम जानते हैं उम्मीद कभी खत्म नहीं होती। सुभारती अस्पताल, जहाँ हर मरीज को मिलती है जिंदगी की नई उम्मीद। 2400 घंटे हम हैं आपकी सेवा में। किसी भी प्रकार की समस्या होने पर आज ही आइए छत्रपति शिवाजी सुभारती हॉस्पिटल, NH 58, परतापुर बाईपास रोड, मेरठ।

0: आप सुन रहे हैं आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM आरजे वंशी के साथ।
1: वंस अगेन वेलकम बैक टू आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट। और दोस्तों, बहुत सारी बातें आपसे करने के लिए फिर से आ गई हूँ। 11:11 हो गई हैं और जनकपुरी सहारनपुर वालों की रिक्वेस्ट भी आ गई है। वो कह रहे हैं कि इंसान भी बहुत अजीब है, अपने बच्चों को सब कुछ देना चाहता है और अपने माँ बाप का सब कुछ लेना चाहता है, तो ये तो कुछ ज़्यादा ही पर्सनल हो गया है। तो डिकेस्ट्रो जी, हम समझ पा रहे हैं आप क्या कहना चाह रहे हैं। इसी के साथ आप कह रहे हैं कि सत्य के बाद मनुष्य निर्भय हो जाता है और झूठ के बाद कायर। ये तो बात बिल्कुल आपकी सत्य ही है। फिलहाल चलिए, आपकी फरमाइश पर हम अगला वाला गाना ज़रूर इंजॉय करेंगे। गाना फ्रॉम द मूवी अराउंड द वर्ल्ड और ये 1967 में आई थी। काफ़ी पुराना गाना आपने फरमाया है इस गाने को, लेकिन फिर भी मैं आपके लिए ढूंढ करके लेकर आई हूँ, तो आपके लिए ये गाना ज़रूर चलने वाला है। दोस्तों, हम बातें कर रहे थे राखी से संबंधित और मैं आपको बता रही थी कि घर में आप किस तरीके से झटपट वाली मिठाई बना सकते। देखिए, बाहर की मिठाई इतनी कंटामिनेटेड हो चुकी है कि उसके बाद खांसी और ज़ुकाम और ये तमाम वायरल जो चल रहा है ये होना तय है। तो ऐसे में और भी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि आप घर पर रहकर ही कुछ ऐसा बना लें जिसमें कि सेहत को आपको सेहत के साथ कुछ खिलवाड़ ना हो आपके। तो आप बना सकते हैं इंस्टेंट कोकोनट बर्फी भी। अभी ब्रेक पर जाने से पहले हमने बनाया था इंस्टेंट मखाना खीर, और अब मैं आपको बता दूं कि इंस्टेंट कोकोनट बर्फी भी आप बना सकते हैं। इसके लिए आप 2 कप कद्दूकस किया हुआ सूखा नारियल लेंगे। आप या तो कोकोनट पाउडर भी ले सकते हैं। 1 कप कंडेंस्ड मिल्क लेंगे, यानी कि मीठा दूध लेंगे। 1/2 कप दूध आपको फीका लेना है और 1 छोटा चम्मच इलायची पाउडर आपको लेना है। अब इसको बनाने की क्या प्रक्रिया है, चलिए इस पर बात कर लेते हैं। एक पैन में थोड़ा सा घी गर्म आपको करना है और उसमें नारियल का बुरादा जो होता है उसको डाल करके 2 मिनट धीमी आंच पर उसको आपको रोस्ट कर लेना है। अब आपको इस वक्त ये ध्यान देना है कि वो जल ना जाए, ठीक है। उसमें से एक स्मेल भी आने लगती है जलने की, तो वो आनी नहीं चाहिए, अन्यथा जो आप मीठा बनाने वाले हैं उसमें वो स्मेल जो है वो बरकरार रहेगी और खाने में इतना मज़ा भी नहीं आएगा। अब इसमें दूध और कंडेंस्ड मिल्क आपको मिक्स करना है और इस मिक्सर को लगातार चलाते रहना है जब तक कि ये पैन छोड़ने ना लगे और एक दो यानी कि गाढ़ा मिश्रण की तरह बिल्कुल भी ना हो जाए। तब तक आप इसको चलाते रहें। डो इसको आपको बनाना है बेसिकली। इसमें इलायची पाउडर मिलाना है और गैस बंद कर देना है। उसके बाद एक थाली में घी लगाकर इस मिश्रण को आप स्प्रेड कर दें। ठंडा होने पर मन चाहे आकार में आप इसको काट सकते हैं। जिस शेप में आपका बच्चा खाना चाहता है उस शेप में इसको ज़रूर काट सकते हैं। इसके लिए काफ़ी सारे सांचे भी आते हैं। चलिए, फ़िलहाल ये गाना जो कि फरमाया है डिकेस्ट्रो फैमिली एंड फ्रेंड्स ने, सुनेंगे साथ में। उसके बाद आई विल बी बैक टू यू।

0: द मार्स रिजॉर्ट्स, चाहे आपकी शादी हो, फैमिली आउटिंग हो या एक खास डिनर गेट टुगेदर हो, द मार्स रिजॉर्ट्स में बनाएं अपनी जिंदगी का हर पल रॉयल। किटी पार्टीज हो या इंटीमेट गैदरिंग, हमारे ग्रैंड बैंकेट हॉल्स, फाइन डाइनिंग और शाही हॉस्पिटैलिटी से हर इवेंट हो जाएगा यादगार। द मार्स रिजॉर्ट्स, एक रॉयल एक्सपीरियंस नियर सुभारती, हरिद्वार बाईपास रोड, मेरठ।
1: क्या आप भाषा और साहित्य की दुनिया में चमकना चाहते हैं? तो देर किस बात की, आज ही प्रवेश ले स्वामी विवेकानंद सुभारती विश्वविद्यालय मेरठ के भाषा विभाग में।
2: यहाँ आपको मिलेंगे भाषा विभाग द्वारा संचालित ये बेहतरीन पाठ्यक्रम: BA ऑनर्स हिंदी, BA ऑनर्स इंग्लिश, MA हिंदी, MA इंग्लिश। यहाँ आपको मिलेगा AI आधारित आधुनिक तकनीक से भाषा सीखने का अनोखा अवसर, अनुभवी प्रोफेसर्स का मार्गदर्शन, UGC नेट, JRF तथा प्रतियोगी परीक्षाओं की पक्की तैयारी, मीडिया, अनुवाद, कॉरपोरेट या शिक्षण, अपने हर करियर गोल को दें एक नई उड़ान।
1: एडमिशन के लिए आज ही कॉल करें 9639222290 और 9639222293 पर, या विजिट करें भाषा विभाग स्वामी विवेकानंद सुभारती विश्वविद्यालय मेरठ में।
0: सुभारती कैंसर हॉस्पिटल, यहाँ आपको सिर्फ उपचार नहीं मिलता, आपको मिलता है प्यार, समर्थन और सबसे जरूरी, उम्मीद। हम जानते हैं कि हर मरीज की जिंदगी की कहानी अलग होती है और हम हर कहानी को जीतने की पूरी कोशिश करते हैं। हमारे विशेषज्ञ डॉक्टरों के साथ हर कदम पर हम आपको उम्मीद और जीवन की नई राह दिखाते हैं। कैंसर के खिलाफ इस लड़ाई में हम आपके साथ हैं। विश्व स्तरीय और अत्याधुनिक इलाज, सुभारती कैंसर हॉस्पिटल। टू नो मोर कॉल नाउ 9639010313। सन्नाटा पसर जाता है उस परिवार में जहाँ किसी को कैंसर हो जाए। वीरानी लगती है ये दुनिया जिस परिवार में किसी को कैंसर हो जाए। अब कैंसर से डरिए नहीं, सुभारती कैंसर हॉस्पिटल। विश्व स्तरीय और अत्याधुनिक इलाज, कैंसर स्क्रीनिंग एंड डायग्नोसिस, ऑल टाइप ऑफ लेटेस्ट एंड एडवांस रेडिएशन थेरेपी, ऑल टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स कैंसर सर्जरी, हार्मोनल थेरेपी। No more call now 9639010313। जुकाम, खांसी या बुखार कई दिनों तक रहे तो छोटे बच्चों को निमोनिया हो सकता है। अपने बच्चों के बेहतर इलाज के लिए आज ही संपर्क करें लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड किठोर, जहां पर 2400 घंटे हमारे बाल रोग विशेषज्ञ आपके बच्चों की बेहतर देखभाल के लिए उपलब्ध। 2400 घंटे इमरजेंसी सुविधाओं के साथ लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड किठोर, SP पेट्रोल पंप के सामने। कॉल करें 8194007405। जब जीवन में अंधेरे घेर लेते हैं तब हर किसी को एक उम्मीद की किरण की तलाश होती है। सुभारती अस्पताल में हम सिर्फ इलाज नहीं करते, हम आपकी उम्मीदों को बचाते हैं। यहाँ हर दर्द का इलाज है, हर समस्या का समाधान है, क्योंकि हम जानते हैं उम्मीद कभी खत्म नहीं होती। सुभारती अस्पताल, जहाँ हर मरीज को मिलती है जिंदगी की नई उम्मीद। 2400 घंटे हम हैं आपकी सेवा में। किसी भी प्रकार की समस्या होने पर आज ही आइए छत्रपति शिवाजी सुभारती हॉस्पिटल, NH 58, परतापुर बाईपास रोड, मेरठ।
3: अरे अरे अरे, ना ना ना ना ना ना ना।

0: ये है आजाद हिंदू रेडियो 90.0 FM।
1: मैं उसके लिए मर चुकी हूँ।
2: वो भी आपकी यादों में पल पल मर रहा है।
1: तो कह दो उसे कि उन यादों की चिता बना के जला दे।
2: उस चिता से उठता धुआं भी आपके प्यार का ही होगा।

0: आप सुन रहे हैं आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM आरजे वंशी के साथ।
1: जी बिल्कुल, आप सुन रहे हैं आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट। और दोस्तों 11:41 हो गई हैं, 27 अगस्त आज की तारीख है और मैं आपसे ढेर सारी बातें कर रही हूं कल के बारे में, यानी कि राखी के बारे में हम बातें कर रहे हैं कि किस तरीके से आप अपनी इनिशियल जो प्रिपरेशंस होती हैं वो कर सकते हैं या एक माइंड मेकअप कर सकते हैं। देखिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों को बाहर की जो मिठाइयाँ हैं उनसे परहेज होता है। देखिए, बहुत सारे लोगों को काफ़ी सारी बीमारियाँ भी हैं, डायबिटिक भी हैं कुछ, और बहुत सारे लोगों को फूड पॉइजनिंग बहुत जल्दी से होती है। अगर आप देखेंगे त्योहारों का जब भी टाइम आता है तो मिठाइयों में ना जाने इतना सारा फूड कलर मिक्स कर दिया जाता है, वो देखने में अट्रैक्टिव तो लगता है, बच्चों को भी बहुत पसंद आता है, लेकिन उसके अपने ही नुकसान होते हैं। तो इसीलिए कुछ लोग ये इनिशिएट करते हैं कि वो घर पर ही सही, चाहे वो छोटा मोटा कुछ बना सकें तो वो ज़रूर बनाने की ट्राई करते हैं। तो मैं उन्हीं लोगों की आज हेल्प कर रही हूँ कि आप किस तरीके से घर पर रहकर ही अपने फेस्टिवल को और भी सेहत भरा और सभी इन कंटामिनेशन से दूर रख करके बना सकते हैं। तो अभी मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप इंस्टेंट ब्रेड मलाई रोल किस तरीके से बना सकते हैं। इसके लिए आप ले सकते हैं ब्रेड की स्लाइस, इसके किनारे आप काटे 6 से 8 आप ले सकते हैं। दूध 1 लीटर आपको लेना है उसको गाढ़ा करने के लिए। चीनी 4 से 5 चम्मच या फिर अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। मावा, जिसको हम खोया बोलते हैं, या मलाई भी आप ले सकते हैं, वो आपको लेना है 3 चम्मच। बारीक कटे हुए ड्राई फ्रूट्स, बादाम, पिस्ता, जो भी आपको पसंद हो वो आप 2 चम्मच लें। इलायची पाउडर 1/2 छोटा चम्मच और केसर के धागे ऑप्शनल हैं, अगर हैं आपके पास तो अच्छा और नहीं है तो और भी ज़्यादा अच्छा। इसी के साथ चलिए आपको बता देती हूँ कि इसके बनाने की विधि क्या है। एक पैन लेना है आपको, उसमें दूध उबाल कर आधा होने तक, यानी कि जब तक कि वो हाफ ना हो जाए तब तक उसको गाढ़ा कर लें। इसमें चीनी, इलायची पाउडर और केसर मिक्स कर लें और ये सबसे पहले तो आपकी रबड़ी तैयार हो जाएगी ऐसा करने पर। अगर आप इसको इसी स्टेट में खाना चाहते हैं तो ये भी आप कर सकते हैं। बाकी एक अलग कटोरी आपको लेनी है, उसमें मावा आप ले सकते हैं या फिर अगर आपके घर में ताज़ी मलाई है तो आप उसे लें। मावे की प्लेस पर थोड़े से कटे हुए ड्राई फ्रूट्स और थोड़ी सी चीनी मिक्स करके स्टफिंग एक आप तैयार कर लें। ब्रेड की जो स्लाइस है उसको बेलन से हल्का सा चपटा यानी कि फ्लैट कर लें और ब्रेड के बीच में तैयार मावा या मलाई की स्टफिंग रखें और उसका रोल आपको बना लेना है। इन रोल को सर्विंग प्लेट में रखें और ऊपर से ठंडी ठंडी मलाईदार रबड़ी और कटे हुए पिस्ते से आप इसको गार्निश करके परोस सकते हैं और ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन हो जाता है। इंस्टेंट तो बनता ही है, सभी को पसंद भी आता है और इसमें कोई टॉक्सिसिटी भी नहीं होती है ना, कमाल की बात। चलिए फिलहाल ये गाना हम इंजॉय करेंगे खुद गर्ल्स मूवी का, उसके बाद आई विल बी बैक टू यू, कहीं मत जाइएगा दोस्तों।

0: भाषा और साहित्य की दुनिया में चमकना चाहते हैं, तो देर किस बात की, आज ही प्रवेश लें स्वामी विवेकानंद सुभारती विश्वविद्यालय मेरठ के भाषा विभाग में।
1: यहाँ आपको मिलेंगे भाषा विभाग द्वारा संचालित ये बेहतरीन पाठ्यक्रम: BA ऑनर्स हिंदी, BA ऑनर्स इंग्लिश, MA हिंदी, MA इंग्लिश। यहाँ आपको मिलेगा AI आधारित आधुनिक तकनीक से भाषा सीखने का अनोखा अवसर, अनुभवी प्रोफेसर्स का मार्गदर्शन, UGC NET, JRF तथा प्रतियोगी परीक्षाओं की पक्की तैयारी, मीडिया, अनुवाद, कॉरपोरेट या शिक्षण, अपने हर करियर गोल को दें एक नई उड़ान।
0: एडमिशन के लिए आज ही कॉल करें 9639222290 और 9639222293 पर, या विजिट करें भाषा विभाग स्वामी विवेकानंद सुभारती विश्वविद्यालय मेरठ में।
2: सुभारती कैंसर हॉस्पिटल, यहाँ आपको सिर्फ उपचार नहीं मिलता, आपको मिलता है प्यार, समर्थन और सबसे जरूरी उम्मीद। हम जानते हैं कि हर मरीज की जिंदगी की कहानी अलग होती है और हम हर कहानी को जीतने की पूरी कोशिश करते हैं। हमारे विशेषज्ञ डॉक्टरों के साथ हर कदम पर हम आपको उम्मीद और जीवन की नई राह दिखाते हैं। कैंसर के खिलाफ इस लड़ाई में हम आपके साथ हैं।

विश्व स्तरीय और अत्याधुनिक इलाज सुभारती कैंसर हॉस्पिटल। टू नो मोर कॉल नाउ 9639010313। जब जीवन में अंधेरे घेर लेते हैं तब हर किसी को एक उम्मीद की किरण की तलाश होती है। सुभारती अस्पताल में हम सिर्फ इलाज नहीं करते, हम आपकी उम्मीदों को बचाते हैं। यहाँ हर दर्द का इलाज है, हर समस्या का समाधान है, क्योंकि हम जानते हैं उम्मीद कभी खत्म नहीं होती। सुभारती अस्पताल, जहाँ हर मरीज को मिलती है जिंदगी की नई उम्मीद। 24 घंटे हम हैं आपकी सेवा में। किसी भी प्रकार की समस्या होने पर आज ही आइए छत्रपति शिवाजी सुभारती हॉस्पिटल, NH 58 परतापुर बाईपास रोड मेरठ। दमार्स रिजॉर्ट्स, चाहे आपकी शादी हो, फैमिली आउटिंग हो या एक खास डिनर गेट टुगेदर हो, दमार्स रिजॉर्ट्स में बनाए अपनी जिंदगी का हर पल रॉयल। किटी पार्टीज हो या इंटीमेट गैदरिंग, हमारे ग्रैंड बैंकेट हॉल्स, फाइन डाइनिंग और शाही हॉस्पिटैलिटी से हर इवेंट हो जाएगा यादगार। द मार्स रिजॉर्ट्स, एक रॉयल एक्सपीरियंस नियर सुभारती हरिद्वार बाईपास रोड मेरठ। सन्नाटा पसर जाता है उस परिवार में जहाँ किसी को कैंसर हो जाए। वीरानी लगती है ये दुनिया जिस परिवार में किसी को कैंसर हो जाए। अब कैंसर से डरिए नहीं, सुभारती कैंसर हॉस्पिटल। विश्व स्तरीय और अत्याधुनिक इलाज, कैंसर स्क्रीनिंग एंड डायग्नोसिस, ऑल टाइप ऑफ लेटेस्ट एंड एडवांस रेडिएशन थेरेपी, ऑल टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स कैंसर सर्जरी, हार्मोनल थेरेपी। नो मोर कॉल नाउ 9639010313।

0: आप सुन रहे हैं आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM आरजे वंशी के साथ।
1: जी बिल्कुल, आप सुन रहे हैं आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट। और दोस्तों, ढेर सारी बातें लेकर फिर से आपके पास आ गई हूँ। प्रोग्राम चल रहा है सेहत सखी और संसार, 12:08, 27 अगस्त आज की तारीख और गुरुवार आज का दिन। दोस्तों, ढेर सारी बातें आपसे कर रही हूँ रिगार्डिंग कल। यस, कल किस तरीके से आप अपने दिन को खास कर सकते हैं या कैसे आप आज की तैयारी से कल को और भी ज़्यादा खासम खास कर सकते हैं। बहुत सारे लोग घर पर बनाना कुछ प्रेफर करते हैं, मीठा बाहर से नहीं लेकर के आते, तो उन्हीं लोगों के लिए आज का ये प्रोग्राम पूरा का पूरा। और मैं उनको बता रही हूँ कुछ ऐसे इंस्टेंट स्वीट्स ऑप्शन जो कि वो घर पर रहकर बहुत ही कम बजट में बना सकते हैं और जिससे कोई भी सेहत को नुकसान नहीं होगा और बड़े मज़े से आपके बच्चे और आपके घर में जो बुज़ुर्ग हैं वो भी खा सकते हैं और साथ ही साथ आप जो आपके घर पर गेस्ट आने वाले हैं उनकी मेहमान नवाजी में भी वो पेश कर सकते हैं। तो अभी मैं आपको बताने वाली हूँ कि पनीर शाही खीर कैसे बनाई जाती है। देखिए, पनीर के पकौड़े आपने खाए होंगे, पनीर की सब्जी भी ज़रूर खाई होगी, पनीर करी आपने खाई होगी, पराठे भी खाए होंगे और पनीर के रसगुल्ले भी बनाए जाते हैं वो भी खाए होंगे, लेकिन खीर शायद आपने नहीं खाई होगी। तो चलिए कुछ हटकर बनाते हैं इस तरह की। तो इसके लिए आपको चाहिए कद्दूकस किया हुआ ताज़ा पनीर 1 कप कम से कम, दूध 1 लीटर, चीनी 1/2 कप, काजू बादाम और किशमिश 2 चम्मच बारीक कटे हुए, इलायची पाउडर आपको चाहिए 1/2 छोटा चम्मच और उसके साथ ही आपको चाहिए केवड़ा जल या फिर आप इसके साथ इसके अलावा गुलाब जल भी ले सकते हैं। कुछ बूंदे ही हमें चाहिए होती हैं बस एरोमा के लिए। इसी के साथ भारी तेल की कढ़ाई में दूध आपको उबालना है और इसे गाढ़ा होने तक धीमी आँच पर लगभग 15 से 20 मिनट तक इसको पकाना है। जब दूध थोड़ा गाढ़ा हो जाए तब इसमें कद्दूकस किया हुआ पनीर आपको डालना है और लगातार चलाते हुए 5 से 7 मिनट तक इसको पकाना है। अब इसमें चीनी और कटे हुए ड्राई फ्रूट्स आपको डालने हैं और लास्ट में इलायची पाउडर और केवड़ा जल मिक्स करके गैस आपको कर देनी है ऑफ। इसे फ्रिज में आप ठंडा करके बाद में परोसकर खा सकते हैं। देखिए, ठंडी खीर अगर आप खाते हैं तो वाकई मतलब और भी ज़्यादा टेस्टी हो जाती है खीर, ऐसा मेरा मानना है, क्योंकि हमारे घर में भी खीर को सिर्फ ठंडा ही खाया जाता है। फिलहाल आप क्या स्पेशल बना रहे हैं आप भी मुझे ज़रूर बता सकते हैं अपनी रेसिपी 9639012111।

दोस्तों आप गाना एंजॉय कर रहे हैं काल मूवी का, और इस गाने में हम शामिल करना चाहेंगे सहारनपुर से जुड़े हमारे लिसनर्स को। सैयद मसरूर हमारे साथ जुड़ गए हैं, साइना हसन, अक्सा, अदीब, नाजिया, आफिया और इब्राहिम सद्दाम, आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया। यूं ही एंजॉय करते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM पर।

0: सुन रहे हैं आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM आरजे वंशी के साथ।
1: वंस अगेन वेलकम बैक टू आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट। और दोस्तों 12:24 हो गई हैं और अभी हमने अच्छा सा गाना सुना है ना, आई होप आपको पसंद आया होगा। सहारनपुर से रिक्वेस्ट आई थी और इसी के साथ मैं ना आपसे बातें कर रही हूँ किस तरीके से आप कल के दिन को और भी ज़्यादा स्पेशल कर सकते हैं आज थोड़ा सा काम करके, है ना। देखिए सभी लोग मीठे के ऊपर फोकस्ड होते हैं लेकिन मेरा ऐसा नहीं है, बहुत सारे लोग मीठे का परहेज भी करते हैं। तो अभी ना मैं आपको कुछ नमकीन स्नैक भी बनाना सिखा देती हूँ जो कि काफ़ी इंस्टेंट बन जाता है, हेल्दी भी होता है और कोई भी इसको ना नहीं कह पाता है ना। तो अभी मैं आपको बताऊंगी कि स्पाइसी रोस्टेड मखाना यानी कि क्रिस्पी मसाला मखाना जो होता है ये वाकई बड़ा अच्छा लगता है जब आप मीठे के साथ इसको कंबाइन करके खाते हैं। तो ये हेल्दी स्नैक तो है ही अपने आप में लेकिन ये बड़े गज़ब की चीज़ है। इसके लिए आपको लेना है मखाना 2 कप, घी या मक्खन 1 बड़ा चम्मच आप लेंगे, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, चाट मसाला और अपने टेस्ट के हिसाब से नमक आप ले सकते हैं। इसको बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, एक पैन में घी

आप गर्म करें। इसमें मखाने डालकर धीमी आंच पर कुरकुरे होने तक आप इसको भून लें। लगभग 5 मिनट में ये सब हो जाता है। फिर इसके बाद गैस बंद करने से ठीक पहले उसमें हल्दी, लाल मिर्च, चाट मसाला और नमक डालकर अच्छी तरीके से मिक्स कर लें ताकि मसाला मखानों पर लिपट जाए। चाय के साथ ये एक बेहतरीन और हेल्दी स्नैक तैयार हो जाता है, आप इसको ज़रूर ले सकते हैं। त्योहारों पर देखिए, ज़रूरी नहीं है कि आप अंटशंठी चीज़ें खाएं, आप कुछ हेल्दी बनाकर भी खा सकते हैं और इससे कोई आपको दिक्कत परेशानी भी नहीं होगी बाद में। फ़िलहाल चलिए बहुत ही प्यारा सा गाना आपके लिए लेकर आई हूँ, शागिर्द मूवी का। आई होप आपको पसंद आएगा। बाकी आपकी क्या तैयारी शैयारी चल रही है आप भी मुझे ज़रूर बता सकते हैं। हैंडमेड राखी बनाई है आपने या फिर आप भी मार्केट से लेकर के आए हैं, ये भी आप मुझे ज़रूर बता सकते हैं। और पहले ना एक तरीके की राखी चला करती थी गोटे वाली, मुझे आज भी याद है, और उसको याद जब करती हूँ तो सच में नॉस्टैल्जिक राखी सब याद आ जाती है। फिलहाल चलिए ये गाना आपके लिए, उसके बाद आई बी बैक टू यू, उसके बाद ढेर सारी बातें आपसे करने वाली हूँ।

0: आप भाषा और साहित्य की दुनिया में चमकना चाहते हैं? तो देर किस बात की, आज ही प्रवेश लें स्वामी विवेकानंद सुभारती विश्वविद्यालय मेरठ के भाषा विभाग में।
1: यहाँ आपको मिलेंगे भाषा विभाग द्वारा संचालित ये बेहतरीन पाठ्यक्रम: BA ऑनर्स हिंदी, BA ऑनर्स इंग्लिश, MA हिंदी, MA इंग्लिश। यहाँ आपको मिलेगा AI आधारित आधुनिक तकनीक से भाषा सीखने का अनोखा अवसर, अनुभवी प्रोफेसर्स का मार्गदर्शन, UGC NET, GRF तथा प्रतियोगी परीक्षाओं की पक्की तैयारी, मीडिया, अनुवाद, कॉरपोरेट या शिक्षण। अपने हर करियर गोल को दें एक नई उड़ान।
0: एडमिशन्स के लिए आज ही कॉल करें 9639222290 और 9639222293 पर, या विजिट करें भाषा विभाग स्वामी विवेकानंद सुभारती विश्वविद्यालय मेरठ में।
2: यूं ही मारते रहे दम तो जिंदगी हो जाएगी बेदम। बचाना चाहते हो किसी का जीवन तो संपर्क करें विश्व स्तरीय सुविधाओं से युक्त सुभारती नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केंद्र सुभारती हॉस्पिटल झाजरा देहरादून। कॉल करें 9760920865।
3: सुभारती कैंसर हॉस्पिटल, यहाँ आपको सिर्फ उपचार नहीं मिलता, आपको मिलता है प्यार, समर्थन और सबसे जरूरी उम्मीद। हम जानते हैं कि हर मरीज की जिंदगी की कहानी अलग होती है और हम हर कहानी को जीतने की पूरी कोशिश करते हैं। हमारे विशेषज्ञ डॉक्टरों के साथ हर कदम पर हम आपको उम्मीद और जीवन की नई राह दिखाते हैं। कैंसर के खिलाफ इस लड़ाई में हम आपके साथ हैं। विश्व स्तरीय और अत्याधुनिक इलाज सुभारती कैंसर हॉस्पिटल। टू नो मोर कॉल नाउ 9639010313। जब जीवन में अंधेरे घेर लेते हैं तब हर किसी को एक उम्मीद की किरण की तलाश होती है। सुभारती अस्पताल में हम सिर्फ इलाज नहीं करते, हम आपकी उम्मीदों को बचाते हैं। यहाँ हर दर्द का इलाज है, हर समस्या का समाधान है, क्योंकि हम जानते हैं उम्मीद कभी खत्म नहीं होती। सुभारती अस्पताल, जहाँ हर मरीज को मिलती है जिंदगी की नई उम्मीद। 24 घंटे हम हैं आपकी सेवा में। किसी भी प्रकार की समस्या होने पर आज ही आइए छत्रपति शिवाजी सुभारती हॉस्पिटल, NH 58, परतापुर बाईपास रोड, मेरठ।
1: लोकप्रिय अस्पताल सिर्फ नाम से ही नहीं बल्कि अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ मिलने वाली सेवाओं के कारण भी लोकप्रिय है। यहाँ आपको एक ही छत के नीचे मिलेंगे मेडिसिन, स्त्री रोग विशेषज्ञ, बाल रोग विशेषज्ञ, जनरल सर्जरी, गुर्दा रोग विशेषज्ञ, गुर्दा और मूत्र रोग विशेषज्ञ, दांत और मुंह के रोग विशेषज्ञ, आँख, कान, नाक और गला रोग विशेषज्ञ, हड्डी रोग विशेषज्ञ, हृदय और छाती रोग विशेषज्ञ, थायराइड और मधुमेह रोग विशेषज्ञ, ब्रेन और स्पाइन रोग विशेषज्ञ। लोकप्रिय अस्पताल किठोर में।
4: यहाँ आपको मिलेंगे सभी प्रकार के ट्रॉमा एवं इमरजेंसी सुविधाएं, जैसे नॉर्मल डिलीवरी एवं ऑपरेशन डिलीवरी, आधुनिक ICU एवं वेंटिलेटर की सुविधाएं, मॉडल ऑपरेशन थिएटर, आधुनिक नर्सरी, ECG व इको कार्डियोग्राफी, जनरल वार्ड, सेमी प्राइवेट और प्राइवेट रूम्स, डिजिटल एक्सरे एवं अल्ट्रासाउंड, 24 घंटे कार्यरत पैथोलॉजी लैब्स, 24 घंटे डायलिसिस की सुविधा, 24 घंटे मेडिकल स्टोर जैसे अनेकों सुविधाओं के साथ हम आपको 24/7 की इमरजेंसी सेवाएं भी प्रदान करते हैं।
1: अपनी बीमारियों और समस्याओं से निजात पाने के लिए मिले 120 बेड वाले लोकप्रिय अस्पताल सुपर मल्टी स्पेशलिटी किठोर के विशेषज्ञों से और पाएं सारी बीमारियों से निजात। HP पेट्रोल पंप के सामने निकट नहर गढ़ रोड किठोर। संपर्क कीजिए 8194007405।
5: ये है आजाद हिंदू रेडियो 90.0 FM।

0: You are listening Azad Hind Radio 90.0 FM with one and only RJ Vanshi.
1: Well, well, well, welcome back to Azad Hind Radio 90.0 FM, Nation First, Always First. और दोस्तों, ढेर सारी बातें आपसे कर रही हूँ और प्रोग्राम में हमने ढेर सारी बातें तो की ही, कुछ बातें आपकी थी तो कुछ बातें मेरी थी. वही चलिए अभी ना एक ऐसी बात आपको बताने वाली हूँ जिसके प्रति हमारी जिम्मेदारी बहुत ज्यादा हो जाती है और अक्सर हम ये सोच बैठते हैं कि इसकी जिम्मेदारी सरकार पर है या प्रशासन पर है. तो भूल जाइए, क्यों

क्योंकि इन्वायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी हर एक नागरिक की जिम्मेदारी होती है। हम अक्सर ये सोच लेते हैं कि प्रदूषण है या कचरा प्रबंधन है या पेड़ पौधों की जो कटाई है, ऐसे कुछ इश्यूज जो सिर्फ सरकार के अंडर ही आते हैं या फिर प्रशासन की जिम्मेदारी होती है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जबकि सच बात ये है कि जब तक हर एक नागरिक इसे अपना व्यक्तिगत कर्तव्य नहीं मानेगा, तब तक बड़े पैमाने पर बदलाव संभव है ही नहीं। आपको परेशानी हो सकती है बढ़ते प्रदूषण से, परेशानी हो सकती है कि कचरा प्रबंधन नहीं है ठीक से, या फिर परेशानी हो सकती है कि पेड़ पौधों की कटाई बहुत ज्यादा हो रही है। तो ऐसे में आपको सचेत रहना होगा, आपको अवेयर रहना होगा और एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बन के दिखाना होगा, और साथ ही साथ छोटे छोटे स्टेप्स जो आपको अपनाने होंगे, जैसे कि प्लास्टिक का कम से कम उपयोग आपको करना है, सिंगल यूज प्लास्टिक को आपको बिल्कुल त्याग देना है, क्योंकि ये हमारी लाइफस्टाइल में इतनी ज्यादा मशगूल हो चुकी है कि इसको पीछे छोड़ना या इसके बिना रहना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, लेकिन नामुमकिन नहीं। तो आप इसके लिए जरूर अपने आप कुछ स्टेप्स बढ़ाएं ताकि जो आपके आजू बाजू के लोग हैं वो आपको देखकर इंस्पायर हों। बाकी पानी और बिजली की बचत करना, ये भी आप अपनी आदत में ला सकते हैं। जल संरक्षण को अपनी आदत बनाएं और एक एक बूंद की कीमत को समझें, और वहीं वृक्षारोपण जरूर करें। अपनी आने वाली पीढ़ी को साफ हवा और स्वच्छ पानी देने के लिए आप इस चीज को जरूर अपनी आदत में लाएं, क्योंकि ये हमारा नैतिक कर्तव्य भी हो जाता है। तो याद रखें, एनवायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी सरकार की या किसी प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं है, सिर्फ ये जन जन की जिम्मेदारी है। इसमें सभी की भागीदारी लगेगी, तभी काम आसान हो पाएंगे और तभी हम इस चीज को अटेन कर पाएंगे। फिलहाल चलिए अटेन तो करते रहेंगे, एंटरटेनमेंट जरूर रहेगा आपका आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM पर। ये गाना सुनेंगे, फिर उसके बाद आई विल बी बैक टू यू।

0: अरे अरे अरे रुको, क्या कर रही हो?
1: क्या कर रही हो मतलब रात का बासी पानी फेंक कर ताज़ा पानी भर रही हूँ।
0: रात का बासी पानी?
1: जी, अब पीने के लिए तो ताज़ा पानी भरना ही पड़ेगा ना।
0: तुम्हें पता भी है देश के ना जाने कितने हिस्सों में लोगों को ऐसा पानी नसीब नहीं होता, वो सड़ा हुआ गंदा पानी पीने को मजबूर हैं। और तुम कहती हो बासी पानी, एक दिन में थोड़ी पानी खराब होता है।
1: तो फिर कैसे किया जाए?
0: इस पानी का जहाँ हो सके उपयोग किया जाए और इस तरीके से फेंका या बहाया तो बिल्कुल ना जाए।
2: क्योंकि ऐसा करना पानी को उड़ेलना नहीं है बल्कि अपने भविष्य के साथ खेलना है। जल है तो कल है, पानी बचाइए, भविष्य बनाइए।
3: सुभारती विश्वविद्यालय और आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM द्वारा जनहित में जारी।

0: भाषा और साहित्य की दुनिया में चमकना चाहते हैं, तो देर किस बात की, आज ही प्रवेश ले स्वामी विवेकानंद सुभारती विश्वविद्यालय मेरठ के भाषा विभाग में।
1: यहाँ आपको मिलेंगे भाषा विभाग द्वारा संचालित ये बेहतरीन पाठ्यक्रम: BA ऑनर्स हिंदी, BA ऑनर्स इंग्लिश, MA हिंदी, MA इंग्लिश। यहाँ आपको मिलेगा AI आधारित आधुनिक तकनीक से भाषा सीखने का अनोखा अवसर, अनुभवी प्रोफेसर्स का मार्गदर्शन, UGC नेट, JRF तथा प्रतियोगी परीक्षाओं की पक्की तैयारी, मीडिया, अनुवाद, कॉर्पोरेट या शिक्षण, अपने हर करियर गोल को दें एक नई उड़ान।

0: एडमिशन्स के लिए आज ही कॉल करें 9639222290 और 9639222293 पर, या विजिट करें भाषा विभाग स्वामी विवेकानंद सुभारती विश्वविद्यालय मेरठ में।
1: सुभारती कैंसर हॉस्पिटल, यहाँ आपको सिर्फ उपचार नहीं मिलता, आपको मिलता है प्यार, समर्थन और सबसे जरूरी उम्मीद। हम जानते हैं कि हर मरीज की जिंदगी की कहानी अलग होती है और हम हर कहानी को जीतने की पूरी कोशिश करते हैं। हमारे विशेषज्ञ डॉक्टरों के साथ हर कदम पर हम आपको उम्मीद और जीवन की नई राह दिखाते हैं। कैंसर के खिलाफ इस लड़ाई में हम आपके साथ हैं। विश्व स्तरीय और अत्याधुनिक इलाज, सुभारती कैंसर हॉस्पिटल। टू नो मोर कॉल नाउ 9639010313। सन्नाटा पसर जाता है उस परिवार में जहाँ किसी को कैंसर हो जाए। वीरानी लगती है ये दुनिया जिस परिवार में किसी को कैंसर हो जाए। अब कैंसर से डरिए नहीं, सुभारती कैंसर हॉस्पिटल। विश्व स्तरीय और अत्याधुनिक इलाज, कैंसर स्क्रीनिंग एंड डायग्नोसिस, ऑल टाइप ऑफ लेटेस्ट एंड एडवांस रेडिएशन थेरेपी, ऑल टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स कैंसर सर्जरी, हार्मोनल थेरेपी। नो मोर कॉल नाउ 9639010313।
2: यूं ही मारते रहे दम तो जिंदगी हो जाएगी बेदम। बचाना चाहते हो किसी का जीवन तो संपर्क करे विश्व स्तरीय सुविधाओं से युक्त सुभारती नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केंद्र, सुभारती हॉस्पिटल झाजरा देहरादून। कॉल करे 9760920865।
1: लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड की ठोर, अत्याधुनिक नर्सरी, ईसीजी, इको, कार्डियोग्राफी, सेमी प्राइवेट और प्राइवेट रूम्स, डिजिटल एक्सरे हो या अल्ट्रासाउंड, न्यूनेटल केयर यूनिट और बच्चों के लिए विशेष ऑपरेशन थिएटर, 2400 घंटे पैथोलॉजी लैब्स। लोकप्रिय हॉस्पिटल की ठोर में आज ही आकर मिले, हमारे अनुभवी डॉक्टर और विशेषज्ञ आपके स्वास्थ्य की देखभाल के लिए 2400 घंटे तैयार। अत्याधुनिक उपकरण और तकनीक जो आपको सर्वोत्तम सेवाएं प्रदान करें। लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड की ठोर। जुकाम, खांसी या बुखार कई दिनों तक रहे तो छोटे बच्चों को निमोनिया हो सकता है। अपने बच्चों के बेहतर इलाज के लिए आज ही संपर्क करें लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड किठोर, जहां पर 2400 घंटे हमारे बाल रोग विशेषज्ञ आपके बच्चों की बेहतर देखभाल के लिए उपलब्ध, 2400 घंटे इमरजेंसी सुविधाओं के साथ। लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड किठोर, SP पेट्रोल पंप के सामने। कॉल करें 8194007405।
3: लोकप्रिय अस्पताल सिर्फ नाम से ही नहीं बल्कि अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ मिलने वाली सेवाओं के कारण भी लोकप्रिय है। यहाँ आपको एक ही छत के नीचे मिलेंगे मेडिसिन, स्त्री रोग विशेषज्ञ, बाल रोग विशेषज्ञ, जनरल सर्जरी, गुर्दा रोग विशेषज्ञ, गुर्दा और मूत्र रोग विशेषज्ञ, दांत और मुंह के रोग विशेषज्ञ, आँख, कान, नाक और गला रोग विशेषज्ञ, हड्डी रोग विशेषज्ञ, हृदय और छाती रोग विशेषज्ञ, थायराइड और मधुमेह रोग विशेषज्ञ, ब्रेन और स्पाइन रोग विशेषज्ञ। लोकप्रिय अस्पताल किठोर में
4: यहाँ आपको मिलेंगे सभी प्रकार के ट्रॉमा एवं इमरजेंसी सुविधाएं, जैसे नॉर्मल डिलीवरी एवं ऑपरेशन डिलीवरी, आधुनिक ICU एवं वेंटिलेटर की सुविधाएं, मॉडल ऑपरेशन थिएटर, आधुनिक नर्सरी, ECG व इको कार्डियोग्राफी, जनरल वार्ड, सेमी प्राइवेट और प्राइवेट रूम्स, डिजिटल एक्सरे एवं अल्ट्रासाउंड, 24 घंटे कार्यरत पैथोलॉजी लैब्स, 24 घंटे डायलिसिस की सुविधा, 24 घंटे मेडिकल स्टोर जैसे अनेकों सुविधाओं के साथ हम आपको 24/7 की इमरजेंसी सेवाएं भी प्रदान करते हैं।
3: अपनी बीमारियों और समस्याओं से निजात पाने के लिए मिले 120 बेड वाले लोकप्रिय अस्पताल सुपर मल्टी स्पेशलिटी किठोर के विशेषज्ञों से और पाएं सारी बीमारियों से निजात। HP पेट्रोल पंप के सामने, निकट नहर गढ़ रोड किठोर। संपर्क कीजिए 8194007405।
5: Are you looking for a place from where your voice get a fame? Are you looking for a perfect platform to record your voice? Then why are you worrying a lot? Captain Ram Singh Sound Studio Subharti is here for you. Solution of your problem is under one roof. We provide facilities like dubbing, vocal recording, music composing, mixing and mastering. Visit here and we are giving you guarantee you gonna love it. Address Tathagat Block, 6th floor, Swami Vivekanand Subharti University, Meerut. For more information, contact 9759303022.
1: जब जीवन में अंधेरे घेर लेते हैं तब हर किसी को एक उम्मीद की किरण की तलाश होती है। सुभारती अस्पताल में हम सिर्फ इलाज नहीं

आपकी उम्मीदों को बचाते हैं। यहाँ हर दर्द का इलाज है, हर समस्या का समाधान है, क्योंकि हम जानते हैं उम्मीद कभी खत्म नहीं होती। सुभारती अस्पताल, जहाँ हर मरीज को मिलती है जिंदगी की नई उम्मीद। 24 घंटे हम हैं आपकी सेवा में। किसी भी प्रकार की समस्या होने पर आज ही आइए छत्रपति शिवाजी सुभारती हॉस्पिटल, NH 58 परतापुर बाईपास रोड मेरठ। द मार्स रिजॉर्ट्स, चाहे आपकी शादी हो, फैमिली आउटिंग हो या एक खास डिनर गेट टुगेदर हो, द मार्स रिजॉर्ट्स में बनाए अपनी जिंदगी का हर पल रॉयल। किट पार्टीज हो या इंटीमेट गैदरिंग, हमारे ग्रैंड बैंकेट हॉल्स, फाइन डाइनिंग और शाही हॉस्पिटैलिटी से हर इवेंट हो जाएगा यादगार। द मार्स रिजॉर्ट्स, एक रॉयल एक्सपीरियंस नियर सुभारती हरिद्वार बाईपास रोड मेरठ। ये है मेरठ का नंबर 1 सुभारती, आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM।

0: भाषा और साहित्य की दुनिया में चमकना चाहते हैं, तो देर किस बात की। आज ही प्रवेश ले स्वामी विवेकानंद सुभारती विश्वविद्यालय मेरठ के भाषा विभाग में।
1: यहाँ आपको मिलेंगे भाषा विभाग द्वारा संचालित ये बेहतरीन पाठ्यक्रम: BA ऑनर्स हिंदी, BA ऑनर्स इंग्लिश, MA हिंदी, MA इंग्लिश। यहाँ आपको मिलेगा AI आधारित आधुनिक तकनीक से भाषा सीखने का अनोखा अवसर, अनुभवी प्रोफेसर्स का मार्गदर्शन, UGC नेट, JRF तथा प्रतियोगी परीक्षाओं की पक्की तैयारी, मीडिया, अनुवाद, कॉरपोरेट या शिक्षण। अपने हर करियर गोल को दें एक नई उड़ान।
0: एडमिशन्स के लिए आज ही कॉल करें 9639222290 और 9639222293 पर, या विजिट करें भाषा विभाग स्वामी विवेकानंद सुभारती विश्वविद्यालय मेरठ में।
2: सुभारती कैंसर हॉस्पिटल, यहाँ आपको सिर्फ उपचार नहीं मिलता, आपको मिलता है प्यार, समर्थन और सबसे जरूरी उम्मीद। हम जानते हैं कि हर मरीज की जिंदगी की कहानी अलग होती है और हम हर कहानी को जीतने की पूरी कोशिश करते हैं। हमारे विशेषज्ञ डॉक्टरों के साथ हर कदम पर हम आपको उम्मीद और जीवन की नई राह दिखाते हैं। कैंसर के खिलाफ इस लड़ाई में हम आपके साथ हैं। विश्व स्तरीय और अत्याधुनिक इलाज, सुभारती कैंसर हॉस्पिटल। टू नो मोर कॉल नाउ 9639010313। सन्नाटा पसर जाता है उस परिवार में जहाँ किसी को कैंसर हो जाए। वीरानी लगती है ये दुनिया जिस परिवार में किसी को कैंसर हो जाए। अब कैंसर से डरिए नहीं, सुभारती कैंसर हॉस्पिटल। विश्व स्तरीय और अत्याधुनिक इलाज, कैंसर स्क्रीनिंग एंड डायग्नोसिस, ऑल टाइप ऑफ लेटेस्ट एंड एडवांस रेडिएशन थेरेपी, ऑल टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स कैंसर सर्जरी, हार्मोनल थेरेपी। No more call now 9639010313।
3: यूं ही मारते रहे दम तो जिंदगी हो जाएगी बेदम। बचाना चाहते हो किसी का जीवन तो संपर्क करें विश्वस्तरीय सुविधाओं से युक्त सुभारती नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केंद्र, सुभारती हॉस्पिटल, झाजरा, देहरादून। कॉल करें 9760920865।
2: लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड की ठोर, अत्याधुनिक नर्सरी, ECG, इको, कार्डियोग्राफी, सेमी प्राइवेट और प्राइवेट रूम्स, डिजिटल एक्सरे हो या अल्ट्रासाउंड, न्यूनेटल केयर यूनिट और बच्चों के लिए विशेष ऑपरेशन थिएटर, 24 घंटे पैथोलॉजी लैब्स। लोकप्रिय हॉस्पिटल की ठोर में आज ही आकर मिले, हमारे अनुभवी डॉक्टर और विशेषज्ञ आपके स्वास्थ्य की देखभाल के लिए 24 घंटे तैयार। अत्याधुनिक उपकरण और तकनीक जो आपको सर्वोत्तम सेवाएं प्रदान करें। लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड की ठोर। जुकाम, खांसी या बुखार कई दिनों तक रहे तो छोटे बच्चों को निमोनिया हो सकता है। अपने बच्चों के बेहतर इलाज के लिए आज ही संपर्क करें लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड किठोर, जहां पर 24 घंटे हमारे बाल रोग विशेषज्ञ आपके बच्चों की बेहतर देखभाल के लिए उपलब्ध, 24 घंटे इमरजेंसी सुविधाओं के साथ। लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड किठोर, SP पेट्रोल पंप के सामने। कॉल करें 8194007405।
4: लोकप्रिय अस्पताल सिर्फ नाम से ही नहीं बल्कि अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ मिलने वाली सेवाओं के कारण भी लोकप्रिय है। यहाँ आपको एक ही छत के नीचे मिलेंगे मेडिसिन, स्त्री रोग विशेषज्ञ, बाल रोग विशेषज्ञ, जनरल सर्जरी, गुर्दा रोग विशेषज्ञ, गुर्दा और मूत्र रोग विशेषज्ञ, दांत और मुंह के रोग विशेषज्ञ, आँख, कान, नाक और गला रोग विशेषज्ञ, हड्डी रोग विशेषज्ञ, हृदय और छाती रोग विशेषज्ञ, थायराइड और मधुमेह रोग विशेषज्ञ, ब्रेन और स्पाइन रोग विशेषज्ञ। लोकप्रिय अस्पताल किठोर में
5: यहाँ आपको मिलेंगे सभी प्रकार के ट्रॉमा एवं इमरजेंसी सुविधाएं, जैसे नॉर्मल डिलीवरी एवं ऑपरेशन डिलीवरी, आधुनिक ICU एवं वेंटिलेटर की सुविधाएं, मॉडल ऑपरेशन थिएटर, आधुनिक नर्सरी, ECG व इको कार्डियोग्राफी, जनरल वार्ड, सेमी प्राइवेट और प्राइवेट रूम्स, डिजिटल एक्सरे एवं अल्ट्रासाउंड, 24 घंटे कार्यरत पैथोलॉजी लैब्स, 24 घंटे डायलिसिस की सुविधा, 24 घंटे मेडिकल स्टोर जैसे अनेकों सुविधाओं के साथ हम आपको 24/7 की इमरजेंसी सेवाएं भी प्रदान करते हैं।
4: अपनी बीमारियों और समस्याओं से निजात पाने के लिए मिले 120 बेड वाले लोकप्रिय अस्पताल सुपर मल्टी स्पेशलिटी किठोर के विशेषज्ञों से और पाएं सारी बीमारियों से निजात। HP पेट्रोल पंप के सामने, निकट नहर गढ़ रोड किठोर। संपर्क कीजिए 8194007405।
6: Are you looking for a place from where your voice get a fame? Are you looking for a perfect platform to record your voice? Then why are you worrying a lot? Captain Ram Singh Sound Studio Subharti is here for you. Solution of your problem is under one roof. We provide facilities like dubbing, vocal recording, music composing, mixing and mastering. Visit here and we are giving you guarantee you gonna love it. Address: Tathagat Block, 6th floor, Swami Vivekanand, Subharti University, Meerut. For more information, contact 9759303022.
2: जब जीवन में अंधेरे घेर लेते हैं, तब हर किसी को एक उम्मीद की किरण की तलाश होती है। सुभारती अस्पताल में हम सिर्फ इलाज नहीं करते, हम आपकी उम्मीदों को बचाते हैं। यहाँ हर दर्द का इलाज है, हर समस्या का समाधान है, क्योंकि हम जानते हैं उम्मीद कभी खत्म नहीं होती। सुभारती अस्पताल, जहाँ हर मरीज को मिलती है जिंदगी की नई उम्मीद। 24 घंटे हम हैं आपकी सेवा में। किसी भी प्रकार की समस्या होने पर आज ही आइए छत्रपति शिवाजी सुभारती हॉस्पिटल, NH 58, परतापुर बाईपास रोड, मेरठ। दमार्स रिजॉर्ट्स, चाहे आपकी शादी हो, फैमिली आउटिंग हो या एक खास डिनर गेट टुगेदर हो, दमार्स रिजॉर्ट्स में बनाए अपनी जिंदगी का हर पल रॉयल। किटी पार्टीज हो या इंटीमेट गैदरिंग, हमारे ग्रैंड बैंकेट हॉल्स, फाइन डाइनिंग और शाही हॉस्पिटैलिटी से हर इवेंट हो जाएगा यादगार। द मार्स रिजॉर्ट्स, एक रॉयल एक्सपीरियंस नियर सुभारती, हरिद्वार बाईपास रोड, मेरठ। ये है मेरठ का नंबर 1 सुभारती, आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM।

मेहरबानों, खुदा करे किसी का कोई हबीब ना हो, खुदा करे किसी का कोई हबीब ना हो, ये दाग वो है कि जो दुश्मन को भी नसीब ना हो। मेहरबानों, कितनी तड़फन हीरे के दिल और दिमाग में थी, लेकिन मजबूर हीरे अटखेड़े पहुंच गई। और कब कि जब रंझा डोले तनी चौतर के और कहन लग्या

गोरी के गले में हार है नौ हजार के, और सब देख रहे हैं तड़पते जो आशिक हैं प्यार के। मेहरबानों खूबसूरती को देखकर

0: वास्तु कृष्णा के साथ
1: सुभारती आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM राष्ट्र प्रथम सदैव प्रथम।
2: मेहरबानों कयामत है किसी को प्यार करना। इस जमाने में कजा का सामान रखा हुआ है इस जमाने में। मेहरबानों जिस समय हीरे पैदा होकर के जा रही थी तो उसने रांझे से वायदा किया था कि अगर 3 दिन के अंदर तेरी और मेरी मुलाकात न हो

0: वास्तु कृष्णा के साथ
1: सुभारती आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM राष्ट्र प्रथम सदैव प्रथम।
2: दोस्तों तीसरा दिन हो चुका और रांधे की आशा और उम्मीद टूट गई। सोचने लगा रूहे मजार पर यह मिश्रा खुदाएंगे मर जाएंगे पर दिल किसी से न लगाएंगे। मेहरबानों अपने कान छिदवा लेता है और फकीर बन गया।

और उधर सेती ने अपने भाई अखंड से कहा, भैया तेरी जो घरवाली है मेरी भाभी हीरे को तो जहरी नाग ने रस लिया, मेहरबानों कैसे सेती जब ये बताया कि मारे तो साधक पीर पूजा करता था, तुम उस मठ पर चले जाओ तो सेती जाती है और कैसे

0: मेरे मेहरबानों 100 औस भी ले आइए और पिए चतुरंग, तुरंत मिटे तन की तपन, शीतल हो गए अंग। मेहरबानों कोई सवारी साधक पीर के पसंद नहीं आई फकीर की, कहन लगा कि मेरे कोई सवारी पसंद नहीं है तो फिर कैसे होगा, बताया मैं तेरी पीठ पे बैठ के चलूंगा। भला कैसे पीठ पे बैठ गया और उससे तेरी कैसे परेशान होगी।
1: वास्तु कृष्णा के साथ
2: शुभारती आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, राष्ट्र प्रथम सदैव प्रथम।
3: अरे नाजुक नरम शरीर मेरा।
0: अरे फिर तो बहुत अच्छा
3: अच्छा रे, स्वाद सा आ गया होगा ना। अरे नाजुक नरम शरीर मेरा,

0: वास्तु कृष्ण के साथ
1: शुभारती आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM राष्ट्र प्रथम सदैव प्रथम।

मेहरबानों दुनिया के चलन को क्या कहिए, इस दुनिया के चलन को क्या कहिए, जो चीज है फानी होती है, बरसों जो हकीकत रहनी है, एक रोज कहानी होती है। एक ठेस लगी कांटा सा चुभा, एक ठेस लगी कांटा सा चुभा, कुछ दर्द हुआ आंसू तपके, बर्बाद मोहब्बत की अक्सर ऐसी ही कहानी।

0: अगर न मिलते, तुम अगर न मिलते तो न जाने कुदरत क्या हो जाता। और उधर रांझा क्या कहता है, हीरे मैं तुझे बताऊं, अगर तू मुझे न मिलती तो मैं अपनी कब्र खोद कर जिंदगी भर के लिए खुदा की कसम सो जाता। दोस्तों यहीं पर हीरे और रांझे का मिलन होता है और इतिहास यहीं पर समाप्त किया जाता है।
1: वास्तु कृष्णा के साथ
2: सुधारती आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, राष्ट्र प्रथम सदैव प्रथम।
3: हर मुझसे ज्यादा पापी बैठे

नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। सुबह भारती आजादी रेडियो 90.0 एफएम पर आपका फिर से स्वागत कर रहा हूं। मैं हूं वास्तु कृष्णा। कार्यक्रम शुरू हो चुका है, जय जवान जय किसान। और दोस्तों, पिछले कार्यक्रम में हमने बात की थी खादी और ग्रामोद्योग आयोग के बारे में। ये आयोग क्या करता है, कैसे हम किसानों की, हम ग्रामीण लोगों की मदद करता है, कैसे हमें छोटे मोटे काम धंधे शुरू करने में मदद करता है, कैसे हमें ट्रेनिंग मिल सकती है, और भी कुछ और बातें हम इस बारे में आज करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के खास कार्यक्रम की इस बढ़िया सी रागनी के साथ।

0: आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM राष्ट्र प्रथम सदैव प्रथम।
1: खादी ग्रामोद्योग क्या है? खादी ग्रामोद्योग यानी KVIC से हम कैसे ट्रेनिंग ले सकते हैं, कैसे हम इसके माध्यम से सरकारी मदद प्राप्त कर सकते हैं? खादी और ग्रामोद्योग आयोग यानी खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन भारत सरकार के मंत्रालय MSME के अंडर आता है। गांव के लोग कैसे जिंदगी में आगे बढ़ जाएं, यही काम है इनका। KVIC देश भर में फैले अपने प्रशिक्षण केंद्र जो कि ट्रेनिंग सेंटर होते हैं, इनके मल्टी डिसिप्लिनरी ट्रेनिंग सेंटर्स MDTC के जरिए बहुत कम फीस या कई बार बिल्कुल फ्री में भी व्यावहारिक ट्रेनिंग देता है। कृषि और खाद्य आधारित उद्योग, मधुमक्खी पालन, मसाला पीसने और पैकेजिंग का काम, फल और सब्जी प्रसंस्करण जैसे अचार, जैम, जूस, सॉस बनाना, ये सारा जो बेकरी का काम होता है, डेयरी का काम होता है, ये सब की ट्रेनिंग भी देते हैं, कई बार फ्री में देते हैं। हर्बल और कॉस्मेटिक उद्योग जो होते हैं, नीम, एलोवेरा के साबुन, शैंपू, हर्बल तेल बनाना, धूप बत्ती, अगरबत्ती, मोमबत्ती बनाना, ये सारे ट्रेनिंग देते हैं। टेक्सटाइल और हस्तशिल्प की अगर बात करें तो हालांकि अब चरखे वगैरह चलते नहीं, सूत नहीं काटा जाता, पर डिपार्टमेंट इन्हीं के अंदर आता है। चरखा चलाना, सूत काटना, सिलाई करना, कढ़ाई करना, स्क्रीन प्रिंटिंग करना, दोना पत्तल बनाना, पेपर बनाना, तो कपड़े के बैग बनाना, ये सब ट्रेनिंग यहां से मिल जाती है। इसके अलावा जैसे सोलर चरखा, सोलर उपकरण संचालन, गोबर से पेंट और वर्मी कंपोस्ट बनाना, इसके अलावा ये योजनाएं बदलती रहती हैं, ऐसा नहीं कि फिक्स ही रहता है, नई भी आती हैं, बहुत कुछ नया होता रहता है। अगर हम कुछ करना चाहते हैं तो इस डिपार्टमेंट के अधिकारियों से जाकर मिल सकते हैं और हम मदद प्राप्त कर सकते हैं।

0: वास्तु कृष्णा के साथ
1: सुभारती आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM राष्ट्र प्रथम सदैव प्रथम
2: रोज हस

0: वास्तु कृष्णा के साथ।
1: आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, राष्ट्र प्रथम सदैव प्रथम।
2: मेहरबानो रांझे के दिल में क्या क्या मलाल थे, रंज के बादल मडरा रहे थे। तुझमें ये हमदम, तुझमें ये हमदम, अगर है दम तो दामन थाम ले। तुझमें ये हमदम, अगर है दम तो मेरा दामन थाम ले। हे अगर हैरान तो ए नादान फिर ना मेरा नाम ले। मेहरबानो बस हीरे के दिल में कांटा सा चुभ गया, जख्म बन गया, और क्या सोचने लगी इन दौलत वालों के आगे पार नहीं बसाएगी। कहीं ताकत के पंजे में उसे ख्याल आ गया, कहीं ताकत के पंजे में कलाई बदनसीबों की, कहीं दौलत की बाहों में बहु बेटियां गरीबों की। भरे हैं गम के आंसू और आंख में बह नहीं सकते, तुम्हारे सामने लुटते हैं और हम कह नहीं सकते। मेहरबानों क्या आलम था।
3: अरे चली बेछड़ के हीरे, जब रांझे की याद आई, तन पटमल

0: आप भाषा और साहित्य की दुनिया में चमकना चाहते हैं? तो देर किस बात की, आज ही प्रवेश लें स्वामी विवेकानंद सुभारती विश्वविद्यालय मेरठ के भाषा विभाग में।
1: यहाँ आपको मिलेंगे भाषा विभाग द्वारा संचालित ये बेहतरीन पाठ्यक्रम: BA ऑनर्स हिंदी, BA ऑनर्स इंग्लिश, MA हिंदी, MA इंग्लिश। यहाँ आपको मिलेगा AI आधारित आधुनिक तकनीक से भाषा सीखने का अनोखा अवसर, अनुभवी प्रोफेसर्स का मार्गदर्शन, UGC NET, JRF तथा प्रतियोगी परीक्षाओं की पक्की तैयारी, मीडिया, अनुवाद, कॉरपोरेट या शिक्षण। अपने हर करियर गोल को दें एक नई उड़ान।
0: एडमिशन्स के लिए आज ही कॉल करें 9639222290 और 9639222293 पर, या विजिट करें भाषा विभाग स्वामी विवेकानंद सुभारती विश्वविद्यालय मेरठ में।
2: सुभारती कैंसर हॉस्पिटल, यहाँ आपको सिर्फ उपचार नहीं मिलता, आपको मिलता है प्यार, समर्थन और सबसे जरूरी उम्मीद। हम जानते हैं कि हर मरीज की जिंदगी की कहानी अलग होती है और हम हर कहानी को जीतने की पूरी कोशिश करते हैं। हमारे विशेषज्ञ डॉक्टरों के साथ हर कदम पर हम आपको उम्मीद और जीवन की नई राह दिखाते हैं। कैंसर के खिलाफ इस लड़ाई में हम आपके साथ हैं। विश्व स्तरीय और अत्याधुनिक इलाज, सुभारती कैंसर हॉस्पिटल। टू नो मोर कॉल नाउ 9639010313। सन्नाटा पसर जाता है उस परिवार में जहाँ किसी को कैंसर हो जाए। वीरानी लगती है ये दुनिया जिस परिवार में किसी को कैंसर हो जाए। अब कैंसर से डरिए नहीं, सुभारती कैंसर हॉस्पिटल। विश्व स्तरीय और अत्याधुनिक इलाज, कैंसर स्क्रीनिंग एंड डायग्नोसिस, ऑल टाइप ऑफ लेटेस्ट एंड एडवांस रेडिएशन थेरेपी, ऑल टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स कैंसर सर्जरी, हार्मोनल थेरेपी। नो मोर कॉल नाउ 9639010313।
3: यूं ही मारते रहे दम तो जिंदगी हो जाएगी बेदम। बचाना चाहते हो किसी का जीवन तो संपर्क करे विश्व स्तरीय सुविधाओं से युक्त सुभारती नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केंद्र, सुभारती हॉस्पिटल झाजरा देहरादून। कॉल करे 9760920865।
4: लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड की ठोर, अत्याधुनिक नर्सरी, ECG, इको, कार्डियोग्राफी, सेमी प्राइवेट और प्राइवेट रूम्स, डिजिटल एक्सरे हो या अल्ट्रासाउंड, न्यूनेटल केयर यूनिट और बच्चों के लिए विशेष ऑपरेशन थिएटर, 24 घंटे पैथोलॉजी लैब्स। लोकप्रिय हॉस्पिटल की ठोर में आज ही आकर मिले, हमारे अनुभवी डॉक्टर और विशेषज्ञ आपके स्वास्थ्य की देखभाल के लिए 24 घंटे तैयार। अत्याधुनिक उपकरण और तकनीक जो आपको सर्वोत्तम सेवाएं प्रदान करें। लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड की ठोर।
2: जुकाम, खांसी या बुखार कई दिनों तक रहे तो छोटे बच्चों को निमोनिया हो सकता है। अपने बच्चों के बेहतर इलाज के लिए आज ही संपर्क करें लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड किठोर, जहां पर 24 घंटे हमारे बाल रोग विशेषज्ञ आपके बच्चों की बेहतर देखभाल के लिए उपलब्ध, 24 घंटे इमरजेंसी सुविधाओं के साथ। लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड किठोर, SP पेट्रोल पंप के सामने। कॉल करें 8194007405।
5: लोकप्रिय अस्पताल सिर्फ नाम से ही नहीं बल्कि अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ मिलने वाली सेवाओं के कारण भी लोकप्रिय है। यहाँ आपको एक ही छत के नीचे मिलेंगे मेडिसिन, स्त्री रोग विशेषज्ञ, बाल रोग विशेषज्ञ, जनरल सर्जरी, गुर्दा रोग विशेषज्ञ, गुर्दा और मूत्र रोग विशेषज्ञ, दांत और मुंह के रोग विशेषज्ञ, आँख, कान, नाक और गला रोग विशेषज्ञ, हड्डी रोग विशेषज्ञ, हृदय और छाती रोग विशेषज्ञ, थायराइड और मधुमेह रोग विशेषज्ञ, ब्रेन और स्पाइन रोग विशेषज्ञ। लोकप्रिय अस्पताल किठोर में
6: यहाँ आपको मिलेंगे सभी प्रकार के ट्रॉमा एवं इमरजेंसी सुविधाएं, जैसे नॉर्मल डिलीवरी एवं ऑपरेशन डिलीवरी, आधुनिक ICU एवं वेंटिलेटर की सुविधाएं, मॉडल ऑपरेशन थिएटर, आधुनिक नर्सरी, ECG व इको कार्डियोग्राफी, जनरल वार्ड, सेमी प्राइवेट और प्राइवेट रूम्स, डिजिटल एक्सरे एवं अल्ट्रासाउंड, 24 घंटे कार्यरत पैथोलॉजी लैब्स, 24 घंटे डायलिसिस की सुविधा, 24 घंटे मेडिकल स्टोर जैसे अनेकों सुविधाओं के साथ हम आपको 24/7 की इमरजेंसी सेवाएं भी प्रदान करते हैं।
5: अपनी बीमारियों और समस्याओं से निजात पाने के लिए मिले 120 बेड वाले लोकप्रिय अस्पताल सुपर मल्टी स्पेशलिटी किठोर के विशेषज्ञों से और पाएं सारी बीमारियों से निजात। HP पेट्रोल पंप के सामने, निकट नहर गढ़ रोड किठोर। संपर्क कीजिए 8194007405।
7: Are you looking for a place from where your voice get a fame? Are you looking for a perfect platform to record your voice? Then why are you worrying a lot? Captain Ram Singh Sound Studio Subharti is here for you. Solution of your problem is under one roof. We provide facilities like dubbing, vocal recording, music composing, mixing and mastering. Visit here and we are giving you guarantee you gonna love it. Address: Tathagat Block, 6th floor, Swami Vivekanand, Subharti University, Meerut. For more information, contact 9759303022.
8: जब जीवन में अंधेरे घेर लेते हैं तब हर किसी को एक उम्मीद की किरण की तलाश होती है। सुभारती अस्पताल में हम सिर्फ इलाज नहीं करते, हम आपकी उम्मीदों को बचाते हैं। यहाँ हर दर्द का इलाज है, हर समस्या का समाधान है, क्योंकि हम जानते हैं उम्मीद कभी खत्म नहीं होती। सुभारती अस्पताल, जहाँ हर मरीज को मिलती है जिंदगी की नई उम्मीद। 2400 घंटे हम हैं आपकी सेवा में। किसी भी प्रकार की समस्या होने पर आज ही आइए छत्रपति शिवाजी सुभारती हॉस्पिटल, NH 58, परतापुर बाईपास रोड, मेरठ। दमार्स रिजॉर्ट्स, चाहे आपकी शादी हो, फैमिली आउटिंग हो या एक खास डिनर गेट टुगेदर हो, दमार्स रिजॉर्ट्स में बनाए अपनी जिंदगी का हर पल रॉयल। किटी पार्टीज हो या इंटीमेट गैदरिंग, हमारे ग्रैंड बैंकेट हॉल्स, फाइन डाइनिंग और शाही हॉस्पिटैलिटी से हर इवेंट हो जाएगा यादगार। द मार्स रिजॉर्ट्स, एक रॉयल एक्सपीरियंस नियर सुभारती, हरिद्वार बाईपास रोड, मेरठ।

0: वास्तु कृष्णा के साथ
1: सुभारती आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM राष्ट्र प्रथम सदैव प्रथम।

0: वास्तु कृष्णा के साथ।
1: आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, राष्ट्र प्रथम सदैव प्रथम।

जय हिंद। एक बार फिर से आपका स्वागत है, मैं हूँ वास्तु कृष्ण और हम बात कर रहे हैं कि सरकार की मदद से गांव में रहकर ज्यादा कमाई कैसे करें, कुछ नए काम कैसे करें, कुछ नए बिजनेस कैसे करें। बहुत से लोग कई बार सिर्फ इसलिए काम को नहीं कर पाते, या तो उनके पास ट्रेनिंग नहीं है, व्यवस्थाएं नहीं है, या सिर्फ इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि उन्हें पता नहीं है कि कहां जाकर मदद मांगे। तो सरकार का प्रॉपर एक डिपार्टमेंट होता है, हर जिले में होता है, इसे बोलते हैं खादी और ग्रामोद्योग आयोग, और ये एमएसएमई मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है। ग्रामीण परिवेश को आगे बढ़ाना, गांव के लोगों की मदद करना ही इनका काम होता है। इनका सिस्टम जो होता है ये ऑनलाइन भी होता है और आप ऑनलाइन भी आवेदन कर सकते हैं। मैं तो कहूंगा जाकर अपने डिपार्टमेंट के इन लोगों से जाकर बात कर लीजिए। मेरठ में भी जो खादी भवन है या जो गांधी आश्रम हम जिसको कहते हैं उसके पास में उपस्थित है, वैसे आप इंटरनेट पर ढूंढेंगे तो आपको कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा। तो आप जाकर अपनी बात बताइए, आप क्या काम करना चाहते हैं, कितनी ट्रेनिंग की आपको जरूरत है, क्या लोन की जरूरत है, क्या ब्याज पे पैसों की जरूरत है, हर तरह से ये डिपार्टमेंट आपकी मदद करने के लिए तैयार है। यदि आप कोई छोटा मोटा ग्रामीण उद्योग, मधुमक्खी पालन, फूड प्रोसेसिंग यूनिट शुरू करना चाहते हैं तो खादी ग्राम उद्योग यानी KVIC ट्रेनिंग से लेकर आपको सब्सिडी दिलाएगा, लोन दिलाएगा, पैसा दिलाएगा, ट्रेनिंग दिलाएगा, सब कुछ दिला देता है, सरकारी तरीके से दिला देता है। अब जरूरत है क्या आप चाहते हैं। अगर आप चाहते हैं तो शुरुआत तो आपको करनी होगी, मेहनत आपको करनी होगी, दौड़ भाग भी आप ही को करनी होगी ना।

स्वागत है आपका एक बार फिर से। हम बात कर रहे हैं कि सरकार की मदद से हमारे गांव के रहने वाले हमारे किसान भाई, गांव के लोग कैसे आगे बढ़ सकते हैं, कैसे अपने काम धंधे कुछ नए बढ़ा सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं, कमाई को कैसे बढ़ाएं, ये सब बात कर रहे हैं। सरकार ने किसानों और ग्रामीण युवाओं को केवल खेती पर निर्भर न रखकर आधुनिक एग्री बिजनेस, सोलर एनर्जी, हाईटेक इंफ्रास्ट्रक्चर से जोड़ने के लिए कई नई योजनाएं शुरू की हैं, तो इस बारे में चर्चा कर रहे हैं। यदि आप कुछ अलग और कुछ नया करना चाहते हैं, आपके अंदर हिम्मत है, आपके अंदर ताकत है, कुछ कर गुजर कर दिखाना चाहते हैं, कुछ बड़ा करना चाहते हैं, आप सिंपल से तरीके से पूरा जीवन सिर्फ थोड़ी बहुत खेती में या एक आम सी जिंदगी जीना नहीं चाहते, कुछ करने की तमन्ना है, मेहनत करने के लिए तैयार है, तो फिर आइए सरकार के इस विभाग के साथ मिलकर ट्रेनिंग लीजिए। 85 तरह की योजनाएं आती रहती हैं, हर क्षेत्र में आती रहती हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मुर्गी पालन, बकरी पालन ही करना है, ट्रेनिंग ले सकते हैं आप। नहीं नहीं, देखिए सोलर से जुड़ी कितनी सारी सरकार की योजनाएं आ गई, नमो दीदी योजना, नमो ड्रोन दीदी योजना, खेती में आधुनिक तकनीक को बढ़ावा देने और महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए बिल्कुल नई योजनाएं आई हैं। इसके अलावा पीएम सूर्य घर, पीएम कुसुम योजना, किसानों को सिंचाई के बिजली बिल से मुक्ति दिलाने के लिए और खाली जमीन से कमाई करने वाली नई सोलर योजनाएं है ये, इसके बारे में भी आप कुछ ट्राई कर सकते हैं। पीएम विश्वकर्मा योजना, अगर आप पारंपरिक कारीगरी, हस्तशिल्प, औजार बनाना, मरम्मत के काम से जुड़ा, तो सरकार इसके लिए भी विशेष बजट रखती है। अब अगर आपको कुछ कर गुजरना है, कुछ करके दिखाना है, तो मेहनत और शुरुआत, हिम्मत आप ही को दिखानी है। सुनते रहिए सुभारती आजाद हिंद रेडियो।

0: क्या आप भाषा और साहित्य की दुनिया में चमकना चाहते हैं? तो देर किस बात की, आज ही प्रवेश ले स्वामी विवेकानंद सुभारती विश्वविद्यालय मेरठ के भाषा विभाग में।
1: यहाँ आपको मिलेंगे भाषा विभाग द्वारा संचालित ये बेहतरीन पाठ्यक्रम: BA ऑनर्स हिंदी, BA ऑनर्स इंग्लिश, MA हिंदी, MA इंग्लिश। यहाँ आपको मिलेगा AI आधारित आधुनिक तकनीक से भाषा सीखने का अनोखा अवसर, अनुभवी प्रोफेसर्स का मार्गदर्शन, UGC नेट, JRF तथा प्रतियोगी परीक्षाओं की पक्की तैयारी, मीडिया, अनुवाद, कॉर्पोरेट या शिक्षण, अपने हर करियर गोल को दें एक नई उड़ान।
0: एडमिशन के लिए आज ही कॉल करें 9639222290 और 9639222293 पर, या विजिट करें भाषा विभाग स्वामी विवेकानंद सुभारती विश्वविद्यालय मेरठ में।
2: सुभारती कैंसर हॉस्पिटल, यहाँ आपको सिर्फ उपचार नहीं मिलता, आपको मिलता है प्यार, समर्थन और सबसे जरूरी उम्मीद। हम जानते हैं कि हर मरीज की जिंदगी की कहानी अलग होती है और हम हर कहानी को जीतने की पूरी कोशिश करते हैं। हमारे विशेषज्ञ डॉक्टरों के साथ हर कदम पर हम आपको उम्मीद और जीवन की नई राह दिखाते हैं। कैंसर के खिलाफ इस लड़ाई में हम आपके साथ हैं। विश्व स्तरीय और अत्याधुनिक इलाज, सुभारती कैंसर हॉस्पिटल। टू नो मोर कॉल नाउ 9639010313। सन्नाटा पसर जाता है उस परिवार में जहाँ किसी को कैंसर हो जाए। वीरानी लगती है ये दुनिया जिस परिवार में किसी को कैंसर हो जाए। अब कैंसर से डरिए नहीं, सुभारती कैंसर हॉस्पिटल। विश्व स्तरीय और अत्याधुनिक इलाज, कैंसर स्क्रीनिंग एंड डायग्नोसिस, ऑल टाइप ऑफ लेटेस्ट एंड एडवांस रेडिएशन थेरेपी, ऑल टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स कैंसर सर्जरी, हार्मोनल थेरेपी। No more call now 9639010313।
3: यू ही मारते रहे दम तो जिंदगी हो जाएगी बेदम। बचाना चाहते हो किसी का जीवन तो संपर्क करे विश्वस्तरीय सुविधाओं से युक्त सुभारती नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केंद्र, सुभारती हॉस्पिटल झाजरा देहरादून। कॉल करे 9760920865।
4: लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड की ठोर, अत्याधुनिक नर्सरी, ECG, इको, कार्डियोग्राफी, सेमी प्राइवेट और प्राइवेट रूम्स, डिजिटल एक्सरे हो या अल्ट्रासाउंड, न्यूनेटल केयर यूनिट और बच्चों के लिए विशेष ऑपरेशन थिएटर, 2400 घंटे पैथोलॉजी लैब्स। लोकप्रिय हॉस्पिटल की ठोर में आज ही आकर मिले, हमारे अनुभवी डॉक्टर और विशेषज्ञ आपके स्वास्थ्य की देखभाल के लिए 2400 घंटे तैयार। अत्याधुनिक उपकरण और तकनीक जो आपको सर्वोत्तम सेवाएं प्रदान करें। लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड की ठोर।
2: जुकाम, खांसी या बुखार कई दिनों तक रहे तो छोटे बच्चों को निमोनिया हो सकता है। अपने बच्चों के बेहतर इलाज के लिए आज ही संपर्क करें लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड किठोर, जहां पर 2400 घंटे हमारे बाल रोग विशेषज्ञ आपके बच्चों की बेहतर देखभाल के लिए उपलब्ध, 2400 घंटे इमरजेंसी सुविधाओं के साथ। लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड किठोर, SP पेट्रोल पंप के सामने। कॉल करें 8194007405।
5: लोकप्रिय अस्पताल सिर्फ नाम से ही नहीं बल्कि अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ मिलने वाली सेवाओं के कारण भी लोकप्रिय है। यहाँ आपको एक ही छत के नीचे मिलेंगे मेडिसिन, स्त्री रोग विशेषज्ञ, बाल रोग विशेषज्ञ, जनरल सर्जरी, गुर्दा रोग विशेषज्ञ, गुर्दा और मूत्र रोग विशेषज्ञ, दांत और मुंह के रोग विशेषज्ञ, आँख, कान, नाक और गला रोग विशेषज्ञ, हड्डी रोग विशेषज्ञ, हृदय और छाती रोग विशेषज्ञ, थायराइड और मधुमेह रोग विशेषज्ञ, ब्रेन और स्पाइन रोग विशेषज्ञ। लोकप्रिय अस्पताल किठोर में।
6: यहाँ आपको मिलेंगे सभी प्रकार के ट्रॉमा एवं इमरजेंसी सुविधाएं, जैसे नॉर्मल डिलीवरी एवं ऑपरेशन डिलीवरी, आधुनिक ICU एवं वेंटिलेटर की सुविधाएं, मॉडल ऑपरेशन थिएटर, आधुनिक नर्सरी, ECG व इको कार्डियोग्राफी, जनरल वार्ड, सेमी प्राइवेट और प्राइवेट रूम्स, डिजिटल एक्सरे एवं अल्ट्रासाउंड, 24 घंटे कार्यरत पैथोलॉजी लैब्स, 24 घंटे डायलिसिस की सुविधा, 24 घंटे मेडिकल स्टोर जैसे अनेकों सुविधाओं के साथ हम आपको 24/7 की इमरजेंसी सेवाएं भी प्रदान करते हैं।
5: अपनी बीमारियों और समस्याओं से निजात पाने के लिए मिले 120 बेड वाले लोकप्रिय अस्पताल सुपर मल्टी स्पेशलिटी किठोर के विशेषज्ञों से और पाएं सारी बीमारियों से निजात। HP पेट्रोल पंप के सामने, निकट नहर गढ़ रोड किठोर। संपर्क कीजिए 8194007405।
7: Are you looking for a place from where your voice get a fame? Are you looking for a perfect platform to record your voice? Then why are you worrying a lot? Captain Ram Singh Sound Studio Subharti is here for you. Solution of your problem is under one roof. We provide facilities like dubbing, vocal recording, music composing, mixing and mastering. Visit here and we are giving you guarantee you gonna love it. Address: Tathagat Block, 6th floor, Swami Vivekanand, Subharti University, Meerut. For more information, contact 9759303022.
8: जब जीवन में अंधेरे घेर लेते हैं, तब हर किसी को एक उम्मीद की किरण की तलाश होती है। सुभारती अस्पताल में हम सिर्फ इलाज नहीं करते, हम आपकी उम्मीदों को बचाते हैं। यहाँ हर दर्द का इलाज है, हर समस्या का समाधान है, क्योंकि हम जानते हैं उम्मीद कभी खत्म नहीं होती। सुभारती अस्पताल, जहाँ हर मरीज को मिलती है जिंदगी की नई उम्मीद। 24 घंटे हम हैं आपकी सेवा में। किसी भी प्रकार की समस्या होने पर आज ही आइए छत्रपति शिवाजी सुभारती हॉस्पिटल, NH 58, परतापुर बाईपास रोड, मेरठ। दमार्स रिजॉर्ट्स, चाहे आपकी शादी हो, फैमिली आउटिंग हो या एक खास डिनर गेट टुगेदर हो, दमार्स रिजॉर्ट्स में बनाए अपनी जिंदगी का हर पल रॉयल। किट पार्टीज हो या इंटीमेट गैदरिंग, हमारे ग्रैंड बैंकेट हॉल्स, फाइन डाइनिंग और शाही हॉस्पिटैलिटी से हर इवेंट हो जाएगा यादगार। द मार्स रिजॉर्ट्स, एक रॉयल एक्सपीरियंस नियर सुभारती, हरिद्वार बाईपास रोड, मेरठ। ये है मेरठ का नंबर 1 सुभारती, आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM।

भारतीय आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM पर आप सभी का स्वागत है दोस्तों। मैं हूँ वास्तु कृष्णा। भारत और भारत की संस्कृति, दोस्तों ये कार्यक्रम है राष्ट्र चेतना, जिसका आधार है राष्ट्र अनुभूति। किताब के लेखक यानी परम आदरणीय डॉक्टर अतुल कृष्ण जी हमको समझाते हैं भारत और भारतीय संस्कृति के बारे में। भारत दो शब्दों का समुच्चय होता है, भा और रत। यानी भा का अर्थ होता है प्रकाश और रत का अर्थ होता है लीन रहना। इस नाते भारत का अर्थ बनता है वो क्षेत्र जहाँ के निवासी सदा ज्ञान प्राप्ति में लीन रहते हैं, उस क्षेत्र को भारत कहा जाता है। प्राचीन ग्रंथों में भारत राष्ट्र की भौगोलिक और प्राकृतिक स्थिति का वर्णन भी मिल जाता है। विष्णु पुराण में भारत वर्ष की भौगोलिक सीमाओं का उल्लेख मिलता है। ऐसा भूखंड जो समुद्र के उत्तर और हिमालय के दक्षिण में स्थित है वही भारतवर्ष है। आर्यवर्त, अधिकांश प्राचीन ग्रंथों में भारत के लिए आर्यवर्त नाम का प्रयोग किया गया है। कहीं कहीं इसका आशय संपूर्ण भारत से लगाया गया है कि शताब्दियों तक भारत के लिए आर्यवर्त शब्द का प्रयोग ही होता रहा। आर्यवर्त का नाम भारतवर्ष में कब और कैसे परिवर्तित हुआ, इस संबंध में अनेक मत प्रचलित हैं। जैसे एक मत के अनुसार ऋषभ देव के पुत्र भरत के नाम पर आर्यवर्त को भारतवर्ष कहा गया। दूसरा, दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र भरत के नाम पर आर्यवर्त को भारत कहा गया। एक प्रसंग के अनुसार जिस क्षेत्र में राजा भरत की प्रजा रहती थी उस क्षेत्र को भारत कहा जाने लगा। भारत एक अति प्राचीन राष्ट्र के साथ साथ विश्व का मार्गदर्शक भी रहा है। भारत के मूल चरित्र को जो भाव प्रभावित करते हैं उनमें प्राणी मात्र के प्रति अपनत्व भाव, सामाजिक और पारिवारिक दायित्वों के प्रति परम निष्ठा और जीवन की क्षणभंगुरता को स्वीकार करना, प्रत्येक विचार को सम्मान देना, प्रगतिशील दृष्टि प्रमुख है। यदि दार्शनिक आधार पर भारत के मूल चरित्र को परिभाषित करें तो वो सत्यम शिवम सुंदरम के महासूत्र से निहित है। जो सत्य है वही कल्याणकारी है और वही सुंदर भी है। स्वागत है आपका सुभारती आजाद हिंद रेडियो के इस खास कार्यक्रम राष्ट्र चेतना में।

भारतीय आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM पर आपका स्वागत है। मैं हूँ वास्तु कृष्णा और ये कार्यक्रम है राष्ट्र चेतना। जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया, इस कार्यक्रम का आधार है सुभारती विश्वविद्यालय के संस्थापक परम आदरणीय डॉक्टर अतुल कृष्ण जी द्वारा लिखित एक पुस्तक जिसका नाम है राष्ट्र अनुभूति, एक भारत श्रेष्ठ भारत। ये सपना देखने वाले आदरणीय डॉक्टर अतुल कृष्ण जी किताब के माध्यम से हमें समझाते हैं भारतीय संस्कृति के विषय में। किसी क्षेत्र विशेष में विकसित जीवन पद्धति, दर्शन, चिंतन धारा, इतिहास, गौरवशाली अतीत, प्रेरणादायक प्रसंग और महापुरुषों के महान कृत्यों से परिभाषित होती है। संस्कृति को किसी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में नहीं बांधा जा सकता। भारतीय संस्कृति विश्व की महानतम और प्राचीनतम संस्कृति है। विश्व के इतिहास को देखें तो अन्य देशों की संस्कृतियां समय की धारा के साथ नष्ट होती चली गई, लेकिन समन्वयवादी दृष्टि के कारण भारतीय संस्कृति सदा स्थिर रही और समय की गति के साथ पहले से अधिक निखरती चली गई। भारतीय संस्कृति के समन्वय के अतिरिक्त दयालुता, उदारता, अहिंसा मूल भाव है। कभी कभी हम किसी भी भाव को असीमित एवं संपूर्ण समझने की भूल कर जाते हैं। हमको ऐसा नहीं करना चाहिए। सभी भावों को सम्यक रूप से समझना है। तथागत भगवान बुद्ध ने अपने सभी विचारों में सम्यकता का मिश्रण किया ताकि आमजन किसी भी भाव को संपूर्ण एवं असीमित समझकर उसके दुष्प्रभाव से हानि न उठाए। कुछ उदाहरण जिनसे आप शिक्षा ले सकते हैं, जैसे दयालुता। एक नदी के भीतर एक सन्यासी नहाने के लिए खड़े थे। उन्होंने देखा कि उसके पास से एक बिच्छू बहता चला जा रहा है। उसने बिच्छू को अपने हाथ से नदी के बाहर फेंकना चाहा। अपने स्वभाव के कारण बिच्छू का संपर्क जैसे ही सन्यासी व्यक्ति की हथेली पर हुआ, बिच्छू ने डंक मार दिया। मारे गए डंक की पीड़ा से उस सन्यासी के हाथ से वो बिच्छू पुनः पानी में गिर गया। अगली बार भी सन्यासी ने उस बिच्छू को बचाने के लिए वैसा ही किया। बिच्छू ने पुनः डंक मारा। बार बार ऐसा करता देख बाहर खड़े एक सामान्य जन द्वारा सन्यासी से पूछा गया कि जब ये बिच्छू बार बार आपको डंक मार रहा है तो आप इसे बचाने का प्रयत्न क्यों कर रहे हैं? तब सन्यासी ने कहा, मेरा स्वभाव दया और दयालुता है एवं जब बिच्छू का स्वभाव डंक मारना है और वो अपना स्वभाव नहीं छोड़ सकता तो भला मैं अपना स्वभाव क्यों छोड़ दूं? ये अत्यंत सुंदर उपदेश है, परंतु इस सिद्धांत का अनुपालन सम्यक रूप से किया जाना चाहिए। कुछ लोग जिनका स्वभाव ही दुष्टता पूर्ण हो, उनके प्रति दयालुता करने के स्थान पर उनसे बचना ही अच्छा है। स्वागत है आप सभी का सुभारती आजाद हिंद रेडियो के इस खास कार्यक्रम राष्ट्र चेतना में। जय हिंद।

0: पीएम फसल बीमा योजना से करीब 2 लाख करोड़ रुपए क्लेम के रूप में किसानों को मिले हैं।
1: मैं 15-20 वर्षों से खेती कर रहा हूं, मेरे पास 3 हेक्टेयर लगभग जमीन है। प्रधानमंत्री फसल बीमा हमें आर्थिक मदद करती है। समय 23-24 में खरीफ की फसल में 48,900 रुपए मिला। हमारे जो संपर्की किसान है मैं उनको समझाऊंगा बताऊंगा, जैसे मुझे सहायता प्राप्त हुई है ऐसे अन्य लोगों को भी हो।
2: खरीफ फसल बीमा के लिए शीघ्र पंजीकरण कराएं।
3: बैंक शाखा, बीमा कंपनी, कृषि ऋण समिति, जन सेवा केंद्र से संपर्क करें।
2: फसल बीमा से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 1-4447 पर कॉल करें।
4: फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ।
5: द मार्स रिजॉर्ट्स, चाहे आपकी शादी हो, फैमिली आउटिंग हो या एक खास डिनर गेट टुगेदर हो, द मार्स रिजॉर्ट्स में बनाए अपनी जिंदगी का हर पल रॉयल। किटी पार्टीज हो या इंटीमेट गैदरिंग, हमारे ग्रैंड बैंकेट हॉल्स, फाइन डाइनिंग और शाही हॉस्पिटैलिटी से हर इवेंट हो जाएगा यादगार। द मार्स रिजॉर्ट्स, एक रॉयल एक्सपीरियंस नियर सुभारती, हरिद्वार बाईपास रोड, मेरठ।
6: Are you looking for a place from where your voice get a fame? Are you looking for a perfect platform to record your voice? Then why are you worrying a lot? Captain Ram Singh Sound Studio Subharti is here for you. Solution of your problem is under one roof. We provide facilities like dubbing, vocal recording, music composing, mixing and mastering. Visit here and we are giving you guarantee you gonna love it. Address Tathagat Block, 6th floor, Swami Vivekanand Subharti University, Meerut. For more information, contact 9759303022.
7: लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड किठोर, अत्याधुनिक नर्सरी, ईसीजी, इको, कार्डियोग्राफी, सेमी प्राइवेट और प्राइवेट रूम्स, डिजिटल एक्सरे हो या अल्ट्रासाउंड, न्यूनेटल केयर यूनिट और बच्चों के लिए विशेष ऑपरेशन थिएटर, 24 घंटे पैथोलॉजी लैब्स। लोकप्रिय हॉस्पिटल किठोर में आज ही आकर मिले, हमारे अनुभवी डॉक्टर और विशेषज्ञ आपके स्वास्थ्य की देखभाल के लिए 24 घंटे तैयार, अत्याधुनिक उपकरण और तकनीक जो आपको सर्वोत्तम सेवाएं प्रदान करें। लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड किठोर।
8: क्या आप भाषा और साहित्य की दुनिया में चमकना चाहते हैं? तो देर किस बात की, आज ही प्रवेश ले स्वामी विवेकानंद सुभारती विश्वविद्यालय मेरठ के भाषा विभाग में।
9: यहाँ आपको मिलेंगे भाषा विभाग द्वारा संचालित ये बेहतरीन पाठ्यक्रम, बीए ऑनर्स हिंदी, बीए ऑनर्स इंग्लिश, एमए हिंदी, एमए इंग्लिश। यहाँ आपको मिलेगा एआई आधारित आधुनिक तकनीक से भाषा सीखने का अनोखा अवसर, अनुभवी प्रोफेसर्स का मार्गदर्शन, यूजीसी नेट, जेआरएफ तथा प्रतियोगी परीक्षाओं की पक्की तैयारी, मीडिया, अनुवाद, कॉरपोरेट या शिक्षण, अपने हर करियर गोल को दें एक नई उड़ान।
8: एडमिशन के लिए आज ही कॉल करें 9639222290 और 9639222293 पर, या विजिट करें भाषा विभाग स्वामी विवेकानंद सुभारती विश्वविद्यालय मेरठ में।

जय हिंद, आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM पर स्वागत है आपका। आप सुन रहे हैं मुझे यानी कि आपके अपने बिंदास आरजे पंकज को। और जी, बातें करने के लिए आपके बीच आपके साथ मैं यहाँ पर अपने करेक्ट टाइम पर हाजिर हो चुका हूँ और पूरी बिंदासगिरी के साथ आपसे बातें करने वाला हूँ। जैसा कि जब भी आता हूँ वैसे हर बार बिंदासगिरी के साथ आपसे बातें करता हूँ। फिलहाल स्टूडियो से एकदम लाइव आपसे बातें कर रहा हूँ और मैं ये बिल्कुल भी नहीं चाहता जब भी मैं यहाँ पर आता हूँ कि मैं अकेले अकेले आपसे बातें करूँ। मैं चाहता हूँ कि आप भी कुछ ना कुछ

बातें मुझसे करें, क्योंकि यार आप ही तो मेरे दोस्त हैं, आप ही तो मुझे यहाँ पर सुनते हैं, तो मुझे पता लगती रहना चाहिए कि आप मुझे सुन रहे हैं या नहीं सुन रहे हैं। तो हल्का फुल्का रिस्पॉन्स किया कीजिए। रिस्पॉन्स आप कैसे कर सकते हैं? आप जा सकते हैं हमारे ऑफिशियल सोशल हैंडल्स पर, जो कि हमारे रेडियो के नाम से ही होते हैं, तो वहां जाकर आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं, बातें कर सकते हैं, शो से रिलेटेड कोई भी सजेशन दे सकते हैं, या आपको अगर कोई अपना मनपसंद ट्रैक सुनना है तो उस ट्रैक की रिक्वेस्ट भी आप हमसे कर सकते हैं। फिलहाल बातों का सिलसिला हम शुरू करेंगे। आप जाइए कहीं मत, सुनते रहिए मुझे, यानी कि आपके अपने पिंदास आर शे पंकज को, आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM पर।

0: जब जीवन में अंधेरे घेर लेते हैं तब हर किसी को एक उम्मीद की किरण की तलाश होती है। सुभारती अस्पताल में हम सिर्फ इलाज नहीं करते, हम आपकी उम्मीदों को बचाते हैं। यहाँ हर दर्द का इलाज है, हर समस्या का समाधान है, क्योंकि हम जानते हैं उम्मीद कभी खत्म नहीं होती। सुभारती अस्पताल, जहाँ हर मरीज को मिलती है जिंदगी की नई उम्मीद। 24 घंटे हम हैं आपकी सेवा में। किसी भी प्रकार की समस्या होने पर आज ही आइए छत्रपति शिवाजी सुभारती हॉस्पिटल, NH 58 परतापुर बाईपास रोड, मेरठ।
1: यूं ही मारते रहे दम तो जिंदगी हो जाएगी बेदम। बचाना चाहते हो किसी का जीवन तो संपर्क करें विश्व स्तरीय सुविधाओं से युक्त सुभारती नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केंद्र सुभारती हॉस्पिटल झाझरा देहरादून। कॉल करें 9760920865।

बचपन में उन्होंने हमारा हाथ थामा था, आज वक्त है उनका सहारा बनने का। अपने घर के बुजुर्गों को थोड़ा वक्त और ढेर सारा प्यार दें, क्योंकि उनकी सीख और उनका आशीर्वाद हमारे आत्मविश्वास को बढ़ाते हैं। सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, आपके अपने दोस्त पंकज के साथ।

0: एक मिनट, स्क्रॉल करना बंद, डांस करना शुरू, लिसन टू ऑल द सॉन्ग्स फ्रॉम माय लेटेस्ट कूली नंबर वन ऑन टिप्स।
1: मैं हूं आपके साथ आपका अपना पिंदास आरजे पंकज, स्टूडियो में एकदम लाइव यहां पर बैठा हूं, आपसे बातें कर रहा हूं। चलिए करते हैं अभी एक अच्छी वाली बात, जो ये कहती है, बुद्धि ईश्वर का दिया हुआ सर्वश्रेष्ठ वरदान है, इसका इस्तेमाल पूरी ईमानदारी और सच्ची लगन के साथ करना चाहिए। सीधा और सिंपल सा मतलब है, देखिए बुद्धि यानी कि दिमाग ये सभी के पास होता है, किसी के पास कम है, किसी के पास ज्यादा है। कोई इसे सही काम में यूज करता है, कोई इसे गलत काम को करने के लिए यूज करता है, लेकिन जितना ज्यादा इसे सही काम करने में यूज किया जाएगा उतना ज्यादा अच्छा है, क्योंकि गलत काम करने में अगर आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो वो वक्त ज्यादा दूर नहीं जब आप भारी मुसीबत में पड़ सकते हैं। सो इसलिए अपनी बुद्धि का सही जगह पर इस्तेमाल करें, सही कामों में इस्तेमाल करें। वेल, ये तो हुई हमारी अच्छी वाली बात। ऐसी ही अच्छी वाली बात आप भी चाहें तो हमारे साथ साझा कर सकते हैं हमारे ऑफिशियल सोशल हैंडल्स पर जाकर। सुनते रहिए मुझे यानी कि आपके अपने बिंदास आरजे पंकज को आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM पर।

0: लोकप्रिय अस्पताल सिर्फ नाम से ही नहीं बल्कि अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ मिलने वाली सेवाओं के कारण भी लोकप्रिय है। यहाँ आपको एक ही छत के नीचे मिलेंगे मेडिसिन, स्त्री रोग विशेषज्ञ, बाल रोग विशेषज्ञ, जनरल सर्जरी, गुर्दा रोग विशेषज्ञ, गुर्दा और मूत्र रोग विशेषज्ञ, दांत और मुंह के रोग विशेषज्ञ, आँख, कान, नाक और गला रोग विशेषज्ञ, हड्डी रोग विशेषज्ञ, हृदय और छाती रोग विशेषज्ञ, थायराइड और मधुमेह रोग विशेषज्ञ, ब्रेन और स्पाइन रोग विशेषज्ञ। लोकप्रिय अस्पताल किठोर में
1: यहाँ आपको मिलेंगे सभी प्रकार के ट्रॉमा एवं इमरजेंसी सुविधाएं जैसे नॉर्मल डिलीवरी एवं ऑपरेशन डिलीवरी, आधुनिक आईसीयू एवं वेंटिलेटर की सुविधाएं, मॉडल ऑपरेशन थिएटर, आधुनिक नर्सरी, ईसीजी व इको कार्डियोग्राफी, जनरल वार्ड, सेमी प्राइवेट और प्राइवेट रूम्स, डिजिटल एक्सरे एवं अल्ट्रासाउंड, 24 घंटे कार्यरत पैथोलॉजी लैब्स, 24 घंटे डायलिसिस की सुविधा, 24 घंटे मेडिकल स्टोर जैसे अनेकों सुविधाओं के साथ हम आपको 24/7 की इमरजेंसी सेवाएं भी प्रदान करते हैं।
0: अपनी बीमारियों और समस्याओं से निजात पाने के लिए मिले 120 बेड वाले लोकप्रिय अस्पताल सुपर मल्टी स्पेशलिटी।

किठोर के विशेषज्ञों से और पाएं सारी बीमारियों से निजात। एचपी पेट्रोल पंप के सामने निकट नहर गढ़ रोड किठोर। संपर्क कीजिए 8194007405।

आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM आप सुन रहे हैं, मैं हूं आपके साथ आपका अपना बिंदास आरशे पंकज। अच्छा, आप जब भी हाईवे से होकर गुजरते होंगे या किसी सड़क से होकर गुजरते होंगे तो कभी ना कभी आपने ये जरूर देखा होगा कि कोई जानवर रास्ते पर कुचला हुआ है। किसी गाड़ी से हो सकता है या किसी हो सकता है कि बाइक से भी उसे टक्कर लगी हो, है ना। और क्या हालत होती है उनकी उसके बाद, ये मतलब सबको ही पता है। लेकिन अगर ऐसा किया जाए, अपनी बाइक की, अपने कार की या जिस भी वाहन से आप जा रहे हैं उसको अगर आप कंट्रोल में चलाएं, कंट्रोल वाली स्पीड में चलाएं, तो कितना सही है ना। वो सामने अगर हमारे रैंडम आ भी जाते हैं, अचानक आ भी जाते हैं, क्योंकि उनको नहीं है इतनी समझ कि वो देख कर रास्ता पार करें, उनको बस निकल जाना है आगे से। तो ये थोड़ा सा हमें तो समझ है ना कि हम आराम से जाएंगे तो उसे भी बचा सकते हैं और खुद भी बच सकते हैं, लेकिन सोचते ही नहीं है हम। हमको जहां भी जाना है पूरी स्पीड के साथ जाना है। खाली सड़क अगर हमें दिख रही है तो उस पर तो अच्छे से हमें गाड़ी को, बाइक को भगाना है, और फिर चाहे सामने कोई भी आए, फिर चाहे डॉग हो, काव हो या मंकी हो या कोई भी हो, फिर मतलब नहीं लगता। अगर उसको लग गई है तो लग गई है, लगते हुए भी मतलब छोड़ देते हैं कि लग गई तो लग गई, हम तो निकल जाते हैं। लेकिन ये नहीं करना चाहिए, अपनी स्पीड को कंट्रोल में रखना चाहिए, चाहे बाइक से हो या कार से हो या मैंने कहा ना किसी भी वाहन से हो, थोड़ा कंट्रोल में इंसान को चलना चाहिए। यार बेजुबान है वो कुछ कह नहीं सकते, उनके भी परिवार होते हैं, उनको भी दुख होता है, उनको भी तकलीफ होती है, तो ये बात समझनी चाहिए। सो आगे से, आज से ये वादा कर लीजिए खुद से भी, अगर आप मेरी बात मानते हैं तो ठीक है, आज से ये वादा कर लीजिए कि जहां भी जाएंगे, जैसे भी जाएंगे, जब भी जाएंगे, जिस भी सड़क से गुजरेंगे, चाहे आप बाइक से हो या कार से हो, अपनी नॉर्मल स्पीड में आप जाएंगे और कोशिश करेंगे कि आपके वाहन से किसी भी बेजुबान को कोई तकलीफ ना हो, कोई बेजुबान अपनी जान ना गवाए। ठीक है, बात अच्छी लगे तो आगे सभी को समझाइएगा, आगे सभी तक मेरी ये बात को पहुंचाइएगा। सुनते रहिए ऐसे ही मुझे, यानी कि आपके अपने दोस्त पंकज को, आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM पर।

द मार्स रिजॉर्ट्स, चाहे आपकी शादी हो, फैमिली आउटिंग हो या एक खास डिनर गेट टुगेदर हो, द मार्स रिजॉर्ट्स में बनाए अपनी जिंदगी का हर पल रॉयल। किटी पार्टीज हो या इंटीमेट गैदरिंग, हमारे ग्रैंड बैंकेट हॉल्स, फाइन डाइनिंग और शाही हॉस्पिटैलिटी से हर इवेंट हो जाएगा यादगार। द मार्स रिजॉर्ट्स, एक रॉयल एक्सपीरियंस नियर सुभारती, हरिद्वार बाईपास रोड, मेरठ।

0: सन्नाटा पसर जाता है उस परिवार में जहाँ किसी को कैंसर हो जाए। वीरानी लगती है ये दुनिया जिस परिवार में किसी को कैंसर हो जाए। अब कैंसर से डरिए नहीं, सुभारती कैंसर हॉस्पिटल, विश्व स्तरीय और अत्याधुनिक इलाज, कैंसर स्क्रीनिंग एंड डायग्नोसिस, ऑल टाइप ऑफ लेटेस्ट एंड एडवांस रेडिएशन थेरेपी, ऑल टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स कैंसर सर्जरी, हार्मोनल थेरेपी। नो मोर कॉल नाउ 9639010313।
1: संगीत का नया ठिकाना, हर पल एक नया फसाना, आपका अपना रेडियो स्टेशन, आपकी अपनी पसंद, सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, आपके अपने बिंदास आरजे पंकज के साथ।

आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM आप सुन रहे हैं। मैं हूं आपके साथ आपका अपना बिंदास सार जे पंकज। स्टूडियो में एकदम लाइव यहां पर बैठा हूं, आपसे बातें कर रहा हूं और आपके मैसेजेस भी अभी पढ़ रहा हूं। तो अभी जैसा कि मैं मैसेजेस पढ़ रहा था तो मुझे मैसेज मिला है सुप्रिया का, जो कह रही हैं कि सर अखिल का खाना बदोश सॉन्ग मुझे सुनना है, प्लीज प्ले कर दीजिए। तो चलिए सुप्रिया की रिक्वेस्ट को पूरा करते हैं और सुनते हैं, एंजॉय करते हैं खाना बदोश अखिल की वॉइस में।

जुकाम, खांसी या बुखार कई दिनों तक रहे तो छोटे बच्चों को निमोनिया हो सकता है। अपने बच्चों के बेहतर इलाज के लिए आज ही संपर्क करें लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड किठोर, जहां पर 2400 घंटे हमारे बाल रोग विशेषज्ञ आपके बच्चों की बेहतर देखभाल के लिए उपलब्ध। 2400 घंटे इमरजेंसी सुविधाओं के साथ लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड किठोर, एचपी पेट्रोल पंप के सामने। कॉल करें 8194007405।

0: द मार्स रिजॉर्ट्स, चाहे आपकी शादी हो, फैमिली आउटिंग हो या एक खास डिनर गेट टुगेदर हो, द मार्स रिजॉर्ट्स में बनाए अपनी जिंदगी का हर पल रॉयल। किटी पार्टीज हो या इंटीमेट गैदरिंग, हमारे ग्रैंड बैंकेट हॉल्स, फाइन डाइनिंग और शाही हॉस्पिटैलिटी से हर इवेंट हो जाएगा यादगार। द मार्स रिजॉर्ट्स, एक रॉयल एक्सपीरियंस, नियर सुभारती, हरिद्वार बाईपास रोड, मेरठ।
1: यूं ही मारते रहे दम तो जिंदगी हो जाएगी बेदम। बचाना चाहते हो किसी का जीवन तो संपर्क करे विश्व स्तरीय सुविधाओं से युक्त सुभारती नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केंद्र, सुभारती हॉस्पिटल, झाजरा, देहरादून। कॉल करे 9760920865।
2: वो रेड लाइट सिर्फ 60 सेकंड की थी, लेकिन आपकी एक सेकंड की जल्दबाजी किसी का पूरी उम्र का इंतजार बन सकती है। हेलमेट और सीट बेल्ट बोझ नहीं, आपकी सुरक्षा कवच है। जिंदगी आपकी है, इसे सुरक्षित रखिए। इसी संदेश के साथ सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, आपके अपने दोस्त पंकज के साथ।

आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM आप सुन रहे हैं, मैं हूं आपके साथ आपका अपना बिंदास आरजे पंकज, और अभी आपके बीच दोबारा से हाजिर हूं। और हाजिर हूं तो कोई नई बात और कोई अच्छी वाली बात या कोई काम वाली बात मेरे पास ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है। वैसे फिलहाल जो मेरे पास अभी बात है वो आपके लिए फायदेमंद 200% हो सकती है, अगर आप इस प्रॉब्लम से रिलेट करते होंगे तो। प्रॉब्लम जो है वो ये है, आपको नींद ना आने वाली। अगर आपके साथ ये प्रॉब्लम है कि आपको रात में नींद नहीं आती है, आप पूरी पूरी रात ऐसे ही जाग कर बिता देते हैं या सोते हैं तो बहुत लेट सोते हैं क्योंकि आपको नींद आती नहीं है, तो आपकी इस प्रॉब्लम का सलूशन है मेरे पास। देखिए आप क्या कर सकते हैं, अगर नींद ना आने की वजह से परेशान है तो भीगे हुए अखरोट का सेवन कर सकते हैं, क्योंकि अखरोट में मेलालिन नामक तत्व होते हैं जिससे अच्छी नींद आती है। सो अखरोट अगर आपके घर में है और अगर आपको नींद ना आने की प्रॉब्लम भी है तो क्या कीजिए, अखरोट को भिगाइए, रोज खाइए और अच्छी नींद लीजिए। अभी मेरे पास बात थी, कहीं पर मैं पढ़ रहा था तो मैंने सोचा यार अपने दोस्तों के बीच जाऊंगा, रेडियो पर जाऊंगा तो बता ही दूंगा, सो मैंने यहाँ पर साझा कर दी। वैसे आपके पास भी मुझे पता है ऐसी ही बातें होती हैं या इससे भी और अच्छी वाली बात होती है तो आप मेरे साथ साझा कर सकते हैं हमारे ऑफिशियल सोशल हैंडल्स पर जाकर। फिलहाल तो आप जाइए कहीं मत, सुनते रहिए बस ऐसे ही मुझे, यानी कि आपके अपने बिंदास आरजे पंकज को।

आपकी रगों में बहता खून किसी के लिए जीवन दान बन सकता है, इसीलिए रक्तदान कीजिए। एक मुस्कुराहट बनिए, इससे बड़ी कोई सेवा नहीं। डोनेट ब्लड, सेव लाइफ। सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, आपके अपने दोस्त पंकज के साथ।

0: सन्नाटा पसर जाता है उस परिवार में जहाँ किसी को कैंसर हो जाए। वीरानी लगती है ये दुनिया जिस परिवार में किसी को कैंसर हो जाए। अब कैंसर से डरिए नहीं, सुभारती कैंसर हॉस्पिटल, विश्व स्तरीय और अत्याधुनिक इलाज, कैंसर स्क्रीनिंग एंड डायग्नोसिस, ऑल टाइप ऑफ लेटेस्ट एंड एडवांस रेडिएशन थेरेपी, ऑल टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स कैंसर सर्जरी, हार्मोनल थेरेपी। नो मोर, कॉल नाउ 9639010313।
1: यूं ही मारते रहे दम तो जिंदगी हो जाएगी बेदम। बचाना चाहते हो किसी का जीवन तो संपर्क करे विश्व स्तरीय सुविधाओं से युक्त सुभारती नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केंद्र, सुभारती हॉस्पिटल झाजरा देहरादून। कॉल करे 9760920865।
2: हमारी धरोहर हमारा गर्व है। इन दीवारों पर नाम लिखकर या गुटका थूककर हम इनका नहीं बल्कि अपनी संस्कृति का अपमान करते हैं। ये इमारतें हमारा इतिहास हैं। इन्हें गंदा करके अपना भविष्य धुंधला ना करें। विरासत को सजाएं, बदसूरत ना बनाएं। इसी संदेश के साथ सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, आपके अपने दोस्त पंकज के साथ।

आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM आप सुन रहे हैं। मैं हूं आपके साथ आपका अपना बिंदास आर शे पंकज। चलिए जी, अभी एक क्विज हम आपसे कर लेते हैं। क्विज का जवाब अगर आपने सबसे पहले दिया और सही दिया तो इसके लिए आपको एक सरप्राइज गिफ्ट में मिलेगा, और आपको जवाब कहाँ देना है ये भी हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले क्विज सुन लीजिए। क्विज में आपको मुझे बताना है DCM ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है। इतना सा बस आपको मुझे बताना है। अगर आपके पास जवाब है तो आप मुझे अपना जवाब भेज सकते हैं आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM के ऑफिशियल फेसबुक पेज पर जाकर, या आप हमें कॉल या मैसेज करके भी अपना जवाब दे सकते हैं। हमारा नंबर होता है 9639012111। इस पर आप कॉल या मैसेज कर सकते हैं। और हाँ, कंडीशन के मुताबिक आपका जवाब अगर सबसे पहले आता है और सही पाया जाता है तो आपको मिलेगा आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM की ओर से एक सरप्राइज गिफ्ट। तो देर किस बात की, फटाफट से आप मुझे अपना जवाब भेजिए। आपके जवाब का मैं वेट करूंगा म्यूजिकल ब्रेक के दौरान।

0: लोकप्रिय अस्पताल सिर्फ नाम से ही नहीं बल्कि अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ मिलने वाली सेवाओं के कारण भी लोकप्रिय है। यहाँ आपको एक ही छत के नीचे मिलेंगे मेडिसिन, स्त्री रोग विशेषज्ञ, बाल रोग विशेषज्ञ, जनरल सर्जरी, गुर्दा रोग विशेषज्ञ, गुर्दा और मूत्र रोग विशेषज्ञ, दांत और मुंह के रोग विशेषज्ञ, आँख, कान, नाक और गला रोग विशेषज्ञ, हड्डी रोग विशेषज्ञ, हृदय और छाती रोग विशेषज्ञ, थायराइड और मधुमेह रोग विशेषज्ञ, ब्रेन और स्पाइन रोग विशेषज्ञ। लोकप्रिय अस्पताल किठोर में
1: यहाँ आपको मिलेंगे सभी प्रकार के ट्रॉमा एवं इमरजेंसी सुविधाएं जैसे नॉर्मल डिलीवरी एवं ऑपरेशन डिलीवरी, आधुनिक आईसीयू एवं वेंटिलेटर की सुविधाएं, मॉडल ऑपरेशन थिएटर, आधुनिक नर्सरी, ईसीजी व इको कार्डियोग्राफी, जनरल वार्ड, सेमी प्राइवेट और प्राइवेट रूम्स, डिजिटल एक्सरे एवं अल्ट्रासाउंड, 24 घंटे कार्यरत पैथोलॉजी लैब्स, 24 घंटे डायलिसिस की सुविधा, 24 घंटे मेडिकल स्टोर जैसे अनेकों सुविधाओं के साथ हम आपको 24/7 की इमरजेंसी सेवाएं भी प्रदान करते हैं।
0: अपनी बीमारियों और समस्याओं से निजात पाने के लिए मिले 120 बेड वाले लोकप्रिय अस्पताल सुपर मल्टी स्पेशलिटी किठोर के विशेषज्ञों से और पाएं सारी बीमारियों से निजात। एचपी पेट्रोल पंप के सामने निकट नहर गढ़ रोड किठोर। संपर्क कीजिए 8194007405।

एक गलत क्लिक और आपकी मेहनत की कमाई गायब। सतर्क रहिए, अपना OTP और पासवर्ड किसी को ना दें। आपकी समझदारी ही आपकी सुरक्षा है। डिजिटल बनो पर सावधानी के साथ। इसी संदेश के साथ सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, आपके अपने दोस्त पंकज के साथ।

अश्विन, इन्होंने मुझे बताया है कि डीसीएम ट्रॉफी का संबंध फुटबॉल खेल से है। वेल अश्विन, आपका जवाब बिल्कुल सही है और आपने जवाब भी सबसे पहले दिया है, तो इसलिए आपको मिल रहा है आजाद हिंद रेडियो 90.0 एफएम की ओर से एक सरप्राइज गिफ्ट। आप स्टूडियो आ सकते हैं और अपना सरप्राइज गिफ्ट लेकर जा सकते हैं। बाकी आप सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 एफएम, राष्ट्र प्रथम सदैव प्रथम।

हर फॉरवर्ड मैसेज सच नहीं होता। बिन सोचे समझे कोई भी खबर शेयर ना करें, ये किसी की मुश्किल बढ़ा सकता है। पहले जांचिए फिर मानिए। अफवाहों पर लगाम लगा के एक अच्छे भारतीय नागरिक बने, इसी संदेश के साथ सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, आपके अपने दोस्त पंकज के साथ।

यूं ही मारते रहे दम तो जिंदगी हो जाएगी बेदम। बचाना चाहते हो किसी का जीवन तो संपर्क करे विश्व स्तरीय सुविधाओं से युक्त सुभारती नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केंद्र सुभारती हॉस्पिटल झाजरा देहरादून। कॉल करे 9760920865।

मैं हूं आपके साथ आपका अपना बिंदास आर शे पंकज और एकदम लाइव आपसे मेरी यहां पर बातें शाते हो रही हैं। अब यहां पर अपने स्टूडियो में बैठा हूं, आपसे बात कर रहा हूं। अच्छा भाई, हमारी बात यहाँ पर आपसे होती रहती है, लेकिन शो से पहले या शो के बाद अगर आप हमसे बात करना चाहें तो कैसे करें, है ना? ये आप सोचते होंगे और सोचने वाली बात भी है कि भाई कोई बात मिस हो गई आपसे पूछनी या बतानी तो कैसे बताएं। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप जा सकते हैं हमारे ऑफिशियल सोशल हैंडल्स पर, ठीक है? वहां पर आपको जाना है, सर्च करना है आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM। आप हमें फेसबुक यानी कि मेटा पर भी ढूंढ सकते हैं, वहां हमारा आपको पेज मिल जाएगा। और इसी के साथ ही साथ आप हमें इंस्टाग्राम पर भी ढूंढ सकते हैं, वहां आपको हमारा अकाउंट मिल जाएगा। दोनों जगह पर जाकर आप हमें फॉलो कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और ऐसा करने से आप हमसे कनेक्ट हो जाएंगे और फिर बात भी कर पाएंगे। तो कनेक्ट नहीं है तो कनेक्ट हो जाइए, बाकी सुनते रहिए ऐसे ही आपके अपने रेडियो स्टेशन को यानी कि आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM को।

स्क्रीन से नजरें हटाइए, अपनों से नजरें मिलाइए। दिन में कम से कम एक घंटा अपने मोबाइल को डू नॉट डिस्टर्ब पर रखें और असली बातें करें। डिजिटल दुनिया से थोड़ा ब्रेक असली सुकून के लिए। कनेक्ट विद पीपल, नॉट वाईफाई। इसी संदेश के साथ सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, आपके अपने दोस्त पंकज के साथ।

आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM आप सुन रहे हैं। मैं हूं आपके साथ आपका अपना दोस्त पंकज। हम रोजाना बहुत सारे अच्छे काम कर सकते हैं और बहुत सारे नहीं कर सकते, तो कुछ काम तो जरूर अच्छे से कर सकते हैं। जैसे अपने पास हमेशा एक छोटा क्लोथ बैग रखें ताकि बाजार में प्लास्टिक बैग ना लेना पड़े। जी हाँ, जब भी आप बाजार के लिए जाएं तो कपड़े का थैला साथ में हमको जरूर रखकर चलना है। और आपको लगता है कि आप वहां जाकर कुछ खरीदने वाले हैं, तो उसे प्लास्टिक की थैली में ना लेकर अपने साथ लिए गए कपड़े के थैले में लें। इसी के साथ अगर सड़क पर कचरा दिखे और डस्टबिन पास हो तो उसे उठाकर डस्टबिन में डाल दें। एंड इसके बाद आप अपने हाथ धो लीजिए अगर आपको ऐसा लगता है कि आप कूड़ा उठाने से गंदे हो जाएंगे। इसी के साथ पब्लिक ट्रांसपोर्ट या पब्लिक प्लेसेस पर किसी को गंदगी फैलाते देखें तो उन्हें प्यार से जरूर समझाएं कि ये गलत है। एंड घर में छोटे बच्चे हैं तो उन बच्चों को भी अपनी धरोहर और अपने धार्मिक मूल्यों के बारे में जरूर बताएं। सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, आपके अपने दोस्त पंकज के साथ।

आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM आप सुन रहे हैं। मैं हूं आपके साथ आपका अपना बिंदास आरजे पंकज। अभी समय है किसी को जन्मदिन की शुभकामनाएं देने का। आज जन्मदिन है वरिष्ठ पत्रकार एवं उत्तर प्रदेश के सूचना आयुक्त आदरणीय श्री राजेंद्र सिंह जी का, और ये शुभकामनाएं हम अकेले उनको नहीं दे रहे हैं। हमारे साथ इन शुभकामनाओं को आगे पहुँचा रहे हैं स्वयं मीडिया एंड प्रोडक्शन से आशीष गौतम जी भी। तो आदरणीय श्री राजेंद्र सिंह सर को जन्म दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप यूं ही स्वस्थ रहें और आगे बढ़ते रहें। बाकी आप सुनते रहिए यूं ही आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM आपके अपने बिंदास आरजे पंकज के साथ।

हॉस्पिटल हो या स्कूल या फिर ट्रैफिक जैम, बेवजह हॉर्न बजाना अच्छी बात नहीं, क्योंकि शोर से सुकून नहीं मिलता, सिर्फ बेचैनी बढ़ती है। शांति बनाए रखें, शहर को बहरा ना बनाएं। नो हॉन्किंग प्लीज। इसी संदेश के साथ सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM।

0: सन्नाटा पसर जाता है उस परिवार में जहाँ किसी को कैंसर हो जाए। वीरानी लगती है ये दुनिया जिस परिवार में किसी को कैंसर हो जाए। अब कैंसर से डरिए नहीं, सुभारती कैंसर हॉस्पिटल, विश्व स्तरीय और अत्याधुनिक इलाज, कैंसर स्क्रीनिंग एंड डायग्नोसिस, ऑल टाइप ऑफ लेटेस्ट एंड एडवांस रेडिएशन थेरेपी, ऑल टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स कैंसर सर्जरी, हार्मोनल थेरेपी। नो मोर, कॉल नाउ 9639010313।
1: किताबें किसी खास के लिए नहीं होती, हर बच्चे का हक है पढ़ना। अगर आपके आसपास कोई

बच्चा स्कूल नहीं जा पा रहा तो उसकी मदद करें, क्योंकि शिक्षा ही असली ताकत है। इसी संदेश के साथ सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, आपके अपने दोस्त पंकज के साथ।

आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM आप सुन रहे हैं, मैं हूं आपके साथ आपका अपना बिंदास आर शे पंकज। बात करेंगे एक ऐसे इवेंट के बारे में जो अपने क्रांति धारा मेरठ

में होने जा रहा है। इस इवेंट का नाम है माँ तुझे प्रणाम, जिसे प्रस्तुत कर रहे हैं अमर उजाला और केएल इंटरनेशनल स्कूल, पावर्ड बाय विवेक रिसोर्ट। इस बार पहली बार ऐसा होगा मेरठ में जहां रोशनी, संगीत और रोमांच का शानदार संगम होगा। एड्रेस आपको बता देता हूं, सूरज कुंड पार्क मेरठ, जहां पर ग्रैंड डीजे नाइट और स्पेक्टेक्युलर लेजर शो होगा। एंड यार, कौन इन डीजे की धुनों पर झूमना नहीं चाहेगा? आप भी झूमना चाहेंगे ना मेरठ? और इतना ही नहीं, आसमान जगमगाएगा शानदार लेजर लाइट से, तो हर पल बन जाएगा एक अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंस। और जिस कमाल धमाल बेमिसाल इवेंट की तारीख रहने वाली है 29 अगस्त 2026 और टाइम रहने वाला है शाम 6 बजे से, तो भूलिएगा मत इस डेट को, इस टाइम को। और यस, मैं फिर से बता देता हूँ एड्रेस को, जो रहने वाला है सूरज कुंड पार्क मेरठ। आइएगा जरूर इस इवेंट में। बाकी फिलहाल तो आपको कहीं जाना नहीं है, ऐसी ही अच्छी अच्छी जानकारियों के लिए आप यूं ही सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, आपके अपने बिंदास आरजे पंकज के साथ।

लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड की ठोर, अत्याधुनिक नर्सरी, ईसीजी, इको, कार्डियोग्राफी, सेमी प्राइवेट और प्राइवेट रूम्स, डिजिटल एक्सरे हो या अल्ट्रासाउंड, न्यूनेटल केयर यूनिट और बच्चों के लिए विशेष ऑपरेशन थिएटर, 2400 घंटे पैथोलॉजी लैब्स। लोकप्रिय हॉस्पिटल की ठोर में आज ही आकर मिले। हमारे अनुभवी डॉक्टर और विशेषज्ञ आपके स्वास्थ्य की देखभाल के लिए 2400 घंटे तैयार, अत्याधुनिक उपकरण और तकनीक जो आपको सर्वोत्तम सेवाएं प्रदान करें। लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड की ठोर।

देशभक्ति सिर्फ नारों में नहीं हमारे कर्मों में होनी चाहिए। सरहद पर लड़ना हर किसी के नसीब में नहीं होता, पर एक अच्छा नागरिक बनना हम सबके हाथ में है। आइए शुरुआत करते हैं अपनी रोजाना की आदतों से, क्योंकि जब हम बदलेंगे तभी तो देश बदलेगा। इसी संदेश के साथ सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, आपके अपने दोस्त पंकज के साथ।

क्या आप अपने घर में कचरा फेंकते हैं? नहीं ना, तो फिर अपने देश की सड़कों को गंदा क्यों करना? एक प्लास्टिक की थैली या एक लिफाफा कचरा शायद आपके लिए छोटा हो, पर हमारी धरती के लिए ये बोझ है। प्लास्टिक को नो कहें और कचरे को सिर्फ कूड़े दान में डालें। देश को साफ रखें, देश को स्वस्थ रखें। इसी संदेश के साथ सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, आपके अपने दोस्त पंकज के साथ।

गर्मी हो, सर्दी हो या हो बारिश, इन सब में बेजुबान भी तकलीफ से गुजरते हैं। अपनी छत पर थोड़ा पानी और रास्ते के बेजुबानों के लिए थोड़ा खाना जरूर रखें, क्योंकि इंसान वही जो हर जीव का दर्द समझे। इसी प्यारे संदेश के साथ सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, आपके अपने दोस्त पंकज के साथ।

यूं ही मारते रहे दम तो जिंदगी हो जाएगी बेदम। बचाना चाहते हो किसी का जीवन तो संपर्क करे विश्वस्तरीय सुविधाओं से युक्त सुभारती नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केंद्र सुभारती हॉस्पिटल झाझरा देहरादून। कॉल करें 9760920865।

ओटीपी किसी को ना बताएं और अनजान लिंक्स पर क्लिक ना करें। आपकी एक गलती बैंक अकाउंट खाली कर सकती है। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें, साइबर क्राइम से बचें। इसी संदेश के साथ सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, आपके अपने दोस्त पंकज के साथ।

सुभारती कैंसर हॉस्पिटल, यहाँ आपको सिर्फ उपचार नहीं मिलता, आपको मिलता है प्यार, समर्थन और सबसे जरूरी उम्मीद। हम जानते हैं कि हर मरीज की जिंदगी की कहानी अलग होती है और हम हर कहानी को जीतने की पूरी कोशिश करते हैं। हमारे विशेषज्ञ डॉक्टरों के साथ हर कदम पर हम आपको उम्मीद और जीवन की नई राह दिखाते हैं। कैंसर के खिलाफ इस लड़ाई में हम आपके साथ हैं। विश्व स्तरीय और अत्याधुनिक इलाज, सुभारती कैंसर हॉस्पिटल। टू नो मोर कॉल नाउ 9639010313।

लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड की ठोर, अत्याधुनिक नर्सरी, ECG, इको, कार्डियोग्राफी, सेमी प्राइवेट और प्राइवेट रूम्स, डिजिटल एक्सरे हो या अल्ट्रासाउंड, न्यूनेटल केयर यूनिट और बच्चों के लिए विशेष ऑपरेशन थिएटर, 2400 घंटे पैथोलॉजी लैब्स। लोकप्रिय हॉस्पिटल की ठोर में आज ही आकर मिले। हमारे अनुभवी डॉक्टर और विशेषज्ञ आपके स्वास्थ्य की देखभाल के लिए 2400 घंटे तैयार, अत्याधुनिक उपकरण और तकनीक जो आपको सर्वोत्तम सेवाएं प्रदान करें। लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड की ठोर।

द मार्स रिजॉर्ट्स, चाहे आपकी शादी हो, फैमिली आउटिंग हो या एक खास डिनर गेट टुगेदर हो, द मार्स रिजॉर्ट्स में बनाएं अपनी जिंदगी का हर पल रॉयल। किटी पार्टीज हो या इंटीमेट गैदरिंग, हमारे ग्रैंड बैंकेट हॉल्स, फाइन डाइनिंग और शाही हॉस्पिटैलिटी से हर इवेंट हो जाएगा यादगार। द मार्स रिजॉर्ट्स, एक रॉयल एक्सपीरियंस नियर सुभारती, हरिद्वार बाईपास रोड, मेरठ।

लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड की ठोर, अत्याधुनिक नर्सरी, ईसीजी, इको, कार्डियोग्राफी, सेमी प्राइवेट और प्राइवेट रूम्स, डिजिटल एक्सरे हो या अल्ट्रासाउंड, न्यूनेटल केयर यूनिट और बच्चों के लिए विशेष ऑपरेशन थिएटर, 2400 घंटे पैथोलॉजी लैब्स। लोकप्रिय हॉस्पिटल की ठोर में आज ही आकर मिले, हमारे अनुभवी डॉक्टर और विशेषज्ञ आपके स्वास्थ्य की देखभाल के लिए 2400 घंटे तैयार, अत्याधुनिक उपकरण और तकनीक जो आपको सर्वोत्तम सेवाएं प्रदान करें। लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड की ठोर।

जब जीवन में अंधेरे घेर लेते हैं तब हर किसी को एक उम्मीद की किरण की तलाश होती है। सुभारती अस्पताल में हम सिर्फ इलाज नहीं करते, हम आपकी उम्मीदों को बचाते हैं। यहाँ हर दर्द का इलाज है, हर समस्या का समाधान है, क्योंकि हम जानते हैं उम्मीद कभी खत्म नहीं होती। सुभारती अस्पताल, जहाँ हर मरीज को मिलती है जिंदगी की नई उम्मीद। 24 घंटे हम हैं आपकी सेवा में। किसी भी प्रकार की समस्या होने पर आज ही आइए छत्रपति शिवाजी सुभारती हॉस्पिटल, NH 58 परतापुर बाईपास रोड मेरठ।

यूं ही मारते रहे दम तो जिंदगी हो जाएगी बेदम। बचाना चाहते हो किसी का जीवन तो संपर्क करे विश्वस्तरीय सुविधाओं से युक्त सुभारती नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केंद्र सुभारती हॉस्पिटल झाजरा देहरादून। कॉल करें 9760920865।

0: लोकप्रिय अस्पताल सिर्फ नाम से ही नहीं बल्कि अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ मिलने वाली सेवाओं के कारण भी लोकप्रिय है। यहाँ आपको एक ही छत के नीचे मिलेंगे मेडिसिन, स्त्री रोग विशेषज्ञ, बाल रोग विशेषज्ञ, जनरल सर्जरी, गुर्दा रोग विशेषज्ञ, गुर्दा और मूत्र रोग विशेषज्ञ, दांत और मुंह के रोग विशेषज्ञ, आँख कान नाक और गला रोग विशेषज्ञ, हड्डी रोग विशेषज्ञ, हृदय और छाती रोग विशेषज्ञ, थायराइड और मधुमेह रोग विशेषज्ञ, ब्रेन और स्पाइन रोग विशेषज्ञ। लोकप्रिय अस्पताल किठोर में
1: यहाँ आपको मिलेंगे सभी प्रकार के ट्रॉमा एवं इमरजेंसी सुविधाएं जैसे नॉर्मल डिलीवरी एवं ऑपरेशन डिलीवरी, आधुनिक आईसीयू एवं वेंटिलेटर की सुविधाएं, मॉडल ऑपरेशन थिएटर, आधुनिक नर्सरी, ईसीजी व इको कार्डियोग्राफी, जनरल वार्ड, सेमी प्राइवेट और प्राइवेट रूम्स, डिजिटल एक्सरे एवं अल्ट्रासाउंड 24 घंटे कार्यरत, पैथोलॉजी लैब्स, 24 घंटे डायलिसिस की सुविधा, 24 घंटे मेडिकल स्टोर जैसे अनेकों सुविधाओं के साथ हम आपको 24/7 की इमरजेंसी सेवाएं भी प्रदान करते हैं।
0: अपनी बीमारियों और समस्याओं से निजात पाने के लिए मिले 120 बेड वाले लोकप्रिय अस्पताल सुपर मल्टी स्पेशलिटी किठोर के विशेषज्ञों से और पाएं सारी बीमारियों से निजात। HP पेट्रोल पंप के सामने निकट नहर गढ़ रोड किठोर। संपर्क कीजिए 8194007405।

द मार्स रिजॉर्ट्स, चाहे आपकी शादी हो, फैमिली आउटिंग हो या एक खास डिनर गेट टुगेदर हो, द मार्स रिजॉर्ट्स में बनाए अपनी जिंदगी का हर पल रॉयल। किटी पार्टीज हो या इंटीमेट गैदरिंग, हमारे ग्रैंड बैंकेट हॉल्स, फाइन डाइनिंग और शाही हॉस्पिटैलिटी से हर इवेंट हो जाएगा यादगार। द मार्स रिजॉर्ट्स, एक रॉयल एक्सपीरियंस, नियर सुभारती, हरिद्वार बाईपास रोड, मेरठ।

यूं ही मारते रहे दम तो जिंदगी हो जाएगी बेदम। बचाना चाहते हो किसी का जीवन तो संपर्क करे विश्वस्तरीय सुविधाओं से युक्त सुभारती नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केंद्र सुभारती हॉस्पिटल झाझरा देहरादून। कॉल करें 9760920865।

0: क्या आप भाषा और साहित्य की दुनिया में चमकना चाहते हैं? तो देर किस बात की, आज ही प्रवेश ले स्वामी विवेकानंद सुभारती विश्वविद्यालय मेरठ के भाषा विभाग में।
1: यहाँ आपको मिलेंगे भाषा विभाग द्वारा संचालित ये बेहतरीन पाठ्यक्रम: BA ऑनर्स हिंदी, BA ऑनर्स इंग्लिश, MA हिंदी, MA इंग्लिश। यहाँ आपको मिलेगा AI आधारित आधुनिक तकनीक से भाषा सीखने का अनोखा अवसर, अनुभवी प्रोफेसर्स का मार्गदर्शन, UGC NET, GRF तथा प्रतियोगी परीक्षाओं की पक्की तैयारी, मीडिया, अनुवाद, कॉरपोरेट या शिक्षण। अपने हर करियर गोल को दें एक नई उड़ान।
0: एडमिशन्स के लिए आज ही कॉल करें 9639222290 और 9639222290।

लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड की ठोर, अत्याधुनिक नर्सरी, ईसीजी, इको, कार्डियोग्राफी, सेमी प्राइवेट और प्राइवेट रूम्स, डिजिटल एक्सरे हो या अल्ट्रासाउंड, न्यूनेटल केयर यूनिट और बच्चों के लिए विशेष ऑपरेशन थिएटर, 2400 घंटे पैथोलॉजी लैब्स। लोकप्रिय हॉस्पिटल की ठोर में आज ही आकर मिले। हमारे अनुभवी डॉक्टर और विशेषज्ञ आपके स्वास्थ्य की देखभाल के लिए 2400 घंटे तैयार। अत्याधुनिक उपकरण और तकनीक जो आपको सर्वोत्तम सेवाएं प्रदान करें। लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड की ठोर।

यूं ही मारते रहे दम तो जिंदगी हो जाएगी बेदम। बचाना चाहते हो किसी का जीवन तो संपर्क करे विश्वस्तरीय सुविधाओं से युक्त सुभारती नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केंद्र सुभारती हॉस्पिटल झाझरा देहरादून। कॉल करें 9760920865।

0: लोकप्रिय अस्पताल सिर्फ नाम से ही नहीं बल्कि अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ मिलने वाली सेवाओं के कारण भी लोकप्रिय है। यहाँ आपको एक ही छत के नीचे मिलेंगे मेडिसिन, स्त्री रोग विशेषज्ञ, बाल रोग विशेषज्ञ, जनरल सर्जरी, गुर्दा रोग विशेषज्ञ, गुर्दा और मूत्र रोग विशेषज्ञ, दांत और मुंह के रोग विशेषज्ञ, आँख, कान, नाक और गला रोग विशेषज्ञ, हड्डी रोग विशेषज्ञ, हृदय और छाती रोग विशेषज्ञ, थायराइड और मधुमेह रोग विशेषज्ञ, ब्रेन और स्पाइन रोग विशेषज्ञ। लोकप्रिय अस्पताल किठोर में।
1: यहाँ आपको मिलेंगे सभी प्रकार के ट्रॉमा एवं इमरजेंसी सुविधाएं, जैसे नॉर्मल डिलीवरी एवं ऑपरेशन डिलीवरी, आधुनिक आईसीयू एवं वेंटिलेटर की सुविधाएं, मॉडल ऑपरेशन थिएटर, आधुनिक नर्सरी, ईसीजी व इको कार्डियोग्राफी, जनरल वार्ड, सेमी प्राइवेट और प्राइवेट रूम्स, डिजिटल एक्सरे एवं अल्ट्रासाउंड 24 घंटे कार्यरत, पैथोलॉजी लैब्स, 24 घंटे डायलिसिस की सुविधा, 24 घंटे मेडिकल स्टोर जैसे अनेकों सुविधाओं के साथ हम आपको 24/7 की इमरजेंसी सेवाएं भी प्रदान करते हैं।
0: अपनी बीमारियों और समस्याओं से निजात पाने के लिए मिले 120 बेड वाले लोकप्रिय अस्पताल सुपर मल्टी स्पेशलिटी किठोर के विशेषज्ञों से और पाएं सारी बीमारियों से निजात। एचपी पेट्रोल पंप के सामने निकट नहर गढ़ रोड किठोर। संपर्क कीजिए 8194007405।

सुभारती कैंसर हॉस्पिटल, यहाँ आपको सिर्फ उपचार नहीं मिलता, आपको मिलता है प्यार, समर्थन और सबसे जरूरी उम्मीद। हम जानते हैं कि हर मरीज की जिंदगी की कहानी अलग होती है और हम हर कहानी को जीतने की पूरी कोशिश करते हैं। हमारे विशेषज्ञ डॉक्टरों के साथ हर कदम पर हम आपको उम्मीद और जीवन की नई राह दिखाते हैं। कैंसर के खिलाफ इस लड़ाई में हम आपके साथ हैं। विश्व स्तरीय और अत्याधुनिक इलाज, सुभारती कैंसर हॉस्पिटल। टू नो मोर कॉल नाउ 9639010313।

यूं ही मारते रहे दम तो जिंदगी हो जाएगी बेदम। बचाना चाहते हो किसी का जीवन तो संपर्क करे विश्वस्तरीय सुविधाओं से युक्त सुभारती नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केंद्र सुभारती हॉस्पिटल झाझरा देहरादून। कॉल करें 9760920865।

लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड की ठोर, अत्याधुनिक नर्सरी, ECG, इको, कार्डियोग्राफी, सेमी प्राइवेट और प्राइवेट रूम्स, डिजिटल एक्सरे हो या अल्ट्रासाउंड, न्यूनेटल केयर यूनिट और बच्चों के लिए विशेष ऑपरेशन थिएटर, 2400 घंटे पैथोलॉजी लैब्स। लोकप्रिय हॉस्पिटल की ठोर में आज ही आकर मिले। हमारे अनुभवी डॉक्टर और विशेषज्ञ आपके स्वास्थ्य की देखभाल के लिए 2400 घंटे तैयार, अत्याधुनिक उपकरण और तकनीक जो आपको सर्वोत्तम सेवाएं प्रदान करें। लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड की ठोर।

यूं ही मारते रहे दम तो जिंदगी हो जाएगी बेदम। बचाना चाहते हो किसी का जीवन तो संपर्क करे विश्व स्तरीय सुविधाओं से युक्त सुभारती नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केंद्र सुभारती हॉस्पिटल झाजरा देहरादून। कॉल करें 9760920865।

0: जुकाम, खांसी या बुखार कई दिनों तक रहे तो छोटे बच्चों को निमोनिया हो सकता है। अपने बच्चों के बेहतर इलाज के लिए आज ही संपर्क करें लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड किठोर, जहां पर 2400 घंटे हमारे बाल रोग विशेषज्ञ आपके बच्चों की बेहतर देखभाल के लिए उपलब्ध। 2400 घंटे इमरजेंसी सुविधाओं के साथ लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड किठोर, SP पेट्रोल पंप के सामने। कॉल करें 8194007405। लोकप्रिय अस्पताल सिर्फ नाम से ही नहीं बल्कि अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ मिलने वाली सेवाओं के कारण भी लोकप्रिय है। यहाँ आपको एक ही छत के नीचे मिलेंगे मेडिसिन, स्त्री रोग विशेषज्ञ, बाल रोग विशेषज्ञ, जनरल सर्जरी, गुर्दा रोग विशेषज्ञ, गुर्दा और मूत्र रोग विशेषज्ञ, दांत और मुंह के रोग विशेषज्ञ, आँख, कान, नाक और गला रोग विशेषज्ञ, हड्डी रोग विशेषज्ञ, हृदय और छाती रोग विशेषज्ञ, थायराइड और मधुमेह रोग विशेषज्ञ, ब्रेन और स्पाइन रोग विशेषज्ञ। लोकप्रिय अस्पताल किठोर में
1: यहाँ आपको मिलेंगे सभी प्रकार के ट्रॉमा एवं इमरजेंसी सुविधाएं, जैसे नॉर्मल डिलीवरी एवं ऑपरेशन डिलीवरी, आधुनिक ICU एवं वेंटिलेटर की सुविधाएं, मॉडल ऑपरेशन थिएटर, आधुनिक नर्सरी, ECG व इको कार्डियोग्राफी, जनरल वार्ड, सेमी प्राइवेट और प्राइवेट रूम्स, डिजिटल एक्सरे एवं अल्ट्रासाउंड, 24 घंटे कार्यरत पैथोलॉजी लैब्स, 24 घंटे डायलिसिस की सुविधा, 24 घंटे मेडिकल स्टोर जैसे अनेकों सुविधाओं के साथ हम आपको 24/7 की इमरजेंसी सेवाएं भी प्रदान करते हैं।
0: अपनी बीमारियों और समस्याओं से निजात पाने के लिए मिले 120 बेड वाले लोकप्रिय अस्पताल सुपर मल्टी स्पेशलिटी किठोर के विशेषज्ञों से और पाएं सारी बीमारियों से निजात। HP पेट्रोल पंप के सामने निकट नहर गढ़ रोड किठोर। संपर्क कीजिए 8194007405।

0: Are you looking for a place from where your voice get a fame? Are you looking for a perfect platform to record your voice? Then why are you worrying a lot? Captain Ram Singh Sound Studio Subharti is here for you. Solution of your problem is under one roof. We provide facilities like dubbing, vocal recording, music composing, mixing and mastering. Visit here and we are giving you guarantee you gonna love it. Address: Tathagat Block, 6th floor, Swami Vivekanand, Subharti University, Meerut. For more information, contact 9759303022.
1: सन्नाटा पसर जाता है उस परिवार में जहाँ किसी को कैंसर हो जाए। वीरानी लगती है ये दुनिया जिस परिवार में किसी को कैंसर हो जाए। अब कैंसर से डरिए नहीं, सुभारती कैंसर हॉस्पिटल, विश्व स्तरीय और अत्याधुनिक इलाज, कैंसर स्क्रीनिंग एंड डायग्नोसिस, ऑल टाइप ऑफ लेटेस्ट एंड एडवांस रेडिएशन थेरेपी, ऑल टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स कैंसर सर्जरी, हार्मोनल थेरेपी। नो मोर कॉल नाउ 9639010313।

0: जय हिंद, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ आपका अपना दोस्त पंकज, और आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे खास अतिथि। आप हैं डॉक्टर रविंद्र कुमार जैन, आप डीन प्रोफेसर हैं केरल वर्मा सुभारती कॉलेज ऑफ साइंस में। सर स्वागत है आपका।
1: धन्यवाद पंकज जी, जय हिंद।
0: सर, केरल वर्मा सुभारती कॉलेज ऑफ साइंस के बारे में आज बातें करने के लिए हम यहाँ पर मौजूद हुए हैं, तो सबसे पहले हम जानना चाहेंगे हमारे कॉलेज के बारे में, किस प्रकार के कोर्सेज हम यहाँ पर चला रहे हैं।
1: जय हिंद पंकज जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका आज मुझे यहाँ आमंत्रित करने के लिए, और ये मेरा सौभाग्य है कि मैं आपके माध्यम से देश और दुनिया को केरल वर्मा सुभारती कॉलेज ऑफ साइंस के बारे में बता पाऊंगा। देखिए, केरल वर्मा सुभारती कॉलेज ऑफ साइंस स्वामी विवेकानंद सुभारती विश्वविद्यालय मेरठ का एक अहम कॉलेज है, और जिसमें कि हम विज्ञान से जुड़े सभी कोर्सेज को आमंत्रित करते हैं, जैसे कि लाइफ साइंसेज के कोर्सेज हैं, बेसिक साइंसेज के कोर्सेज हैं, कंप्यूटर एप्लीकेशंस के हैं, एग्रीकल्चर के हैं, और फॉरेंसिक साइंस के कोर्सेज हैं।
0: सर, अब इसको थोड़ा धीरे धीरे करके आगे बढ़ते हुए समझना चाहेंगे, आफ्टर ट्वेल्थ वाले कोर्सेज कौन है, सबसे पहले उन पे बात कर लेते हैं।
1: जी जी, देखिए, आफ्टर ट्वेल्थ वाले कोर्सेज हमारे जो हैं वो सभी ग्रेजुएट कोर्सेज हैं, जैसे कि बीएससी बायोटेक्नोलॉजी है, बीएससी माइक्रोबायोलॉजी है, बीएससी बायोकेमिस्ट्री है, बीएससी बायोइन्फॉर्मेटिक्स है, बीएससी फिजिक्स है, बीएससी मैथमेटिक्स है। ये सभी कोर्सेज कोई भी विद्यार्थी 12वीं पास करने के बाद कर सकता है। इसके लिए जो योग्यता है वो ये है कि सामान्य वर्ग के लिए, जनरल कैटेगरी के लिए 12वीं में 50% अंकों के साथ उत्तीर्ण करना जरूरी है, जबकि एससी और ओबीसी कैटेगरी के लिए 45% मार्क्स के साथ विद्यार्थी जो उत्तीर्ण करते हैं वो इन सभी कोर्सेज में अप्लाई कर सकते हैं। लाइफ साइंसेज से संबंधित जो कोर्सेज हैं उसमें पीसीबी यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी का होना जरूरी है। उसके अलावा जितने भी कोर्सेज हैं उसमें कोई भी विद्यार्थी पीसीएम या पीसीबी वाला विद्यार्थी उसमें प्रवेश ले सकता है।
0: अब थोड़ा सर आगे चलते हैं और जानते हैं, जैसे ट्वेल्थ के बाद तो आपने ये सभी कोर्सेज बताए, अब इसमें

0: आगे अगर कोई मास्टर में कोई कोर्स करना चाहते हैं तो वहां पे क्या मतलब क्राइटेरिया है, क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए?
1: देखिए, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। जो विद्यार्थी ग्रेजुएट करने के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहते हैं, उनके लिए भी हमारे ही कॉलेज में पूर्ण व्यवस्था है। सभी विभाग जितने भी हैं हमारे यहाँ पर, वो सभी पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज भी ऑफर करते हैं, यानी कि एमएससी बायोटेक्नोलॉजी, एमएससी बायोकेमिस्ट्री, एमएससी माइक्रोबायोलॉजी, एमसीए, एमएससी मैथमेटिक्स, एमएससी फिजिक्स, एमएससी केमिस्ट्री, सभी कोर्सेज हम ऑफर करते हैं। साथ ही मैं आपको यही बताना चाहूंगा कि जो हमारे यहाँ के विद्यार्थी हैं या कहीं के विद्यार्थी हैं, उसके लिए भी जो न्यूनतम अर्हता है वो समान है, यानी कि ग्रेजुएशन में 50% अंकों के साथ उसने यदि उत्तीर्ण किया है तो हमारे यहाँ पे वो सभी जितने भी कोर्सेज हैं, पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज हैं, उसमें वो प्रवेश लेने के लिए अर्ह हैं।
0: सर, अभी जैसे हमने आफ्टर 12th की भी समझ ली और आफ्टर ग्रेजुएशन की ये समझ लिए हैं कोर्सेज, अब एक बात ये है, जैसे ये कोर्सेज कर लेता है बच्चा, चाहे वो बैचलर में कर ले या मास्टर्स में कर ले, करियर के ऑप्शंस उसके लिए क्या क्या हो जाते हैं?
1: ये बहुत अच्छा सवाल किया आपने, क्योंकि आजकल कोई भी विद्यार्थी हो या माता पिता हो, सबका मेन फोकस यही रहता है कि कोई भी शिक्षा ग्रहण करने के बाद उनके विद्यार्थी को एक अच्छी जॉब मिल सके। देखिए, मैं ये कहना चाहूंगा कि हमारे यहाँ पर जो नई शिक्षा नीति है 2020, उसका पूरी तरह से अनुपालन किया जा रहा है और हमारा जो फोकस है वो केवल किताबी ज्ञान देने पर नहीं है, उसके अलावा हमने अपने जो कुरिकुलम है उसमें स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज और जो आपके कम्युनिकेटिव कोर्सेज हैं वो सभी कोर्स हमने उसमें ऐड किए हुए हैं। उससे क्या होता है कि जितने विद्यार्थी हैं वो किताबी ज्ञान के साथ साथ कुछ व्यवहारिक ज्ञान भी प्राप्त करते हैं और जो स्किल बेस्ड नॉलेज है वो अपने अंदर डेवलप करते हैं। उससे क्या होता है कि हम विद्यार्थियों को अच्छी जॉब के लिए तैयार करते हैं और वो बहुत आसानी से ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद अपने अपने क्षेत्र में बहुत अच्छी नौकरी प्राप्त कर सकते हैं।
0: सर, अब एक सवाल ये भी आता है कि तमाम कॉलेजेस हैं लेकिन छात्र छात्राएं जो हैं 12वीं पास करके आने वाले हों या ग्रेजुएट करके आने वाले हों, वो केरल वर्मा सुभारती कॉलेज ऑफ साइंस क्यों चुने?
1: देखिए, ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि जो हमारा कुरिकुलम है वो नई शिक्षा नीति 2020 के ऊपर आधारित है। हमारा पूरा फोकस बच्चों के अंदर स्किल्स डेवलप करना है ताकि जब वो अपनी डिग्री लेकर समाज में उतरें तो वो अपने आप को साबित कर सकें। उनके पास व्यवहारिक ज्ञान होने की वजह से, उनके पास स्किल्स होने की वजह से वो बड़ी आसानी के साथ दूसरे कॉलेज से जो विद्यार्थी आते हैं उनके साथ कम्पीट कर सकते हैं।
0: सर, अब जो विद्यार्थी हमें सुन रहे हैं और इस साल 12th करने जा रहे हैं, कर चुके हैं, वो कॉलेज जाना चाहें तो क्या एड्रेस है विजिट के लिए, एक बार बता दीजिए।
1: देखिए, बहुत बहुत स्वागत है सभी विद्यार्थियों को जो भी विजिट करना चाहें। स्वामी विवेकानंद सुभारती विश्वविद्यालय के अंदर प्रवेश करने के बाद वहीं पर आप किसी से पूछेंगे फैकल्टी ऑफ साइंस, साइंस कॉलेज, तो हमारा एक बहुत सुंदर सा कॉलेज उनको दिखाई देगा। वहां पे जाइए रिसेप्शन पे, हम उनको अपना पूरा कॉलेज के बारे में वहां पे बताएंगे।
0: सर, हमारे यहाँ कॉलेज में क्या विशेषता है जो किसी भी छात्र या छात्रा को अट्रैक्ट करेगी यहाँ कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए, यहाँ पढ़ाई करने के लिए?
1: जी पंकज जी, देखिए मैं ये कहना चाहूंगा कि हमारे यहाँ पर सबसे पहले एक डेडिकेटेड प्लेसमेंट सेल है, कॉलेज के अंदर भी एक प्लेसमेंट सेल है और विश्वविद्यालय की एक प्लेसमेंट सेल है। तो हम जैसे ही विद्यार्थी प्रवेश लेता है तो प्रथम वर्ष से ही उसको पर्सनलिटी डेवलपमेंट क्लासेस के द्वारा, इंग्लिश कम्युनिटी क्लासेस के द्वारा उसको प्लेसमेंट के लिए तैयार करते हैं ताकि वो अपने आप को 3 साल के अंदर या 4 साल के अंदर वो अपने आप को तैयार कर सके। दूसरा मेरा कहना जो है, हमारा जो मेन फोकस है वो प्रैक्टिकल नॉलेज के ऊपर है। हमारी जो लैबोरेटरीज है, मैं सभी विद्यार्थियों को आमंत्रित करता हूं कि वो कृपया एक बार आएं और हमारी लैबोरेटरीज देखें। हमारे पास जितने भी एडवांस इक्विपमेंट्स हैं वो सभी हमारी लैबोरेटरीज में हैं और हमारे विद्यार्थी उन पर हैंड्स ऑन ट्रेनिंग भी करते हैं। उसके अलावा समय समय पर हम जो एक्सपर्ट लेक्चर्स हैं, आईआईटीज, एनआईटीज और जो इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स लोग हैं उनको आमंत्रित करते हैं। वो हमारे विद्यार्थियों को ये बताते हैं कि वॉट इंडस्ट्री वॉन्ट, कि आज इंडस्ट्री क्या चाह रही है, उसके हिसाब से हम अपने बच्चों की स्किल्स को तैयार करते हैं। और मैं ये बात दावे के साथ कह सकता हूं कि इस तरह की तैयारी केरल वर्मा सुभारती कॉलेज के अलावा कोई दूसरा कॉलेज नहीं कर रहा होगा।
0: सर, एडमिशन के लिए क्या प्रोसीजर फॉलो करना होगा?
1: देखिए, एडमिशन का प्रोसेस बहुत सिंपल है। आप हमारे विश्वविद्यालय की वेबसाइट विजिट कर सकते हैं या फिर आप हमारे कॉलेज में आइए। वहां पर आपको एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना होगा। रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरने के बाद हम आपके डॉक्यूमेंट चेक करते हैं। डॉक्यूमेंट चेक करने के बाद आपको फीस जमा करके आपका एडमिशन हो जाता है।
0: तो अभी आपने सुना केरल वर्मा सुभारती कॉलेज ऑफ साइंस के डीन प्रोफेसर डॉक्टर रविंद्र कुमार जैन सर को। उन्होंने तमाम कोर्सेज के बारे में बताया जो आफ्टर 12th आप कर सकते हैं या आफ्टर ग्रेजुएशन आप कर सकते हैं केरल वर्मा सुभारती कॉलेज ऑफ साइंस में। अब उन्हें सुनते हैं, उन छात्र छात्राओं को जो यहाँ पर कोर्सेज कर रहे हैं, वो आपको अपना अनुभव साझा करेंगे। आइए उन्हें सुनते हैं।
2: जय हिंद एवरीवन, मेरा नाम है वैष्णवी और मैं सेकंड ईयर स्टूडेंट हूँ और मैंने 2024 में स्वामी विवेकानंद सुभारती यूनिवर्सिटी के केरल वर्मा सुभारती

0: कॉलेज ऑफ साइंस में एडमिशन लिया था एंड मैं बायोटेक्नोलॉजी कोर्स के अंदर हूं. बायोटेक्नोलॉजी एक ऐसा कोर्स है जहां पे आपको रियल वर्ल्ड एक्सपोजर एंड रियल रिसर्च की जरूरत पड़ती है एंड इस कॉलेज ने मुझे रियल रिसर्च का एक्सपोजर प्रोवाइड करा एंड फैकल्टी की गाइडेंस की हेल्प से मैंने अपनी इंडिपेंडेंट रिसर्च पे भी काम किया है एंड उसके साथ साथ उनके गाइडेंस एंड उनके सपोर्ट से एंड उनकी हेल्प से मैंने क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करी जिसके हेल्प से मैंने एक बायोमेडिकल डिवाइस पे भी काम किया जिसको मैंने ऑल इंडिया नेशनल लेवल पे प्रेजेंट भी करा है एट AIU. इस कॉलेज ने मुझे लैब स्किल्स एंड रियल एक्सपोजर एंड उसके साथ साथ क्रिटिकल थिंकिंग एंड बहुत गाइडेंस एंड कॉन्स्टेंट मेंटर सपोर्ट भी प्रोवाइड करा है जो कि बहुत ज्यादा इम्पॉर्टेंट है बायोटेक्नोलॉजी से जैसे डायनेमिक फील्ड में. एंड मुझे कोई हेजिटेशन नहीं है ये बोलने में कि मैंने बेस्ट कॉलेज चूज करा है एंड आपको भी ये कॉलेज चूज करना चाहिए अगर आपको एक रियल टाइम एक्सपोजर चाहिए, आपको बढ़िया लैब्स चाहिए एंड आपको रियल रिसर्च पे काम करना है एंड उसको नेशनल लेवल पे प्रेजेंट करना है. थैंक यू.
1: Jainda everyone, my name is Kunal Chaudhary and I am currently a second year student at Kera Verma Subharti College of Science. I have taken my admission in 2024 and I have presented my research at AIU and also presented my biomedical based startup at AIU. Kera Verma Subharti College of Science is a very good college. It provides hands-on lab training experiences and also the faculty here are well experienced. They also provide student to think out of the box and also increase the scientific temperament out there. The future outcome from this course can be academia, research, healthcare startups, medical based startups and biotechnology. Thank you. Jain.
2: Jai Hind everyone. I am Asna Suhail, currently pursuing BSc Microbiology from Keral Verma Subharti College of Science. The first time I looked into the microscope, I was fascinated by its beauty. कोई ऑर्गेनिज्म जो इतना छोटा होता है हमें नजर भी नहीं आता वो मैग्नीफाई होकर कितना खूबसूरत लगता है. एट दैट मोमेंट आई डिसाइडेड टू परस्यू माइक्रोबायोलॉजी एज माय करियर एंड टू अकम्प्लिश दिस ड्रीम आई चोज सुभारती कॉलेज क्योंकि यहाँ पर सिर्फ थ्योरेटिकल नॉलेज ही नहीं दी जाती बल्कि प्रैक्टिकल्स पर भी फोकस किया जाता है. यहाँ की वेल इक्विप्ड लैबोरेटरीज एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी मेंबर्स ने मेरी बहुत हेल्प करी है. करंटली आई एम वर्किंग ऑन अ प्रोजेक्ट That is role of enzymes in food and feed industry, जो मेरे आगे के करियर से भी रिलेटेड है. यहाँ पर हमें इंडस्ट्रियल विजिट्स पर भी ले जाया जाता है जिसमें से एक था मदर डेयरी विच इज माई ड्रीम कंपनी. आगे जाकर मैं फूड इंडस्ट्रीज में काम करना चाहती हूँ एज अ फूड एनालिस्ट ताकि मैं फूड सेफ्टी इंश्योर कर सकूँ फॉर अ बेटर इंडिया. ओवरऑल सुभारती कॉलेज मेरे फ्यूचर प्लान्स को शेप करने में मेरी हेल्प कर रहा है एंड आई एम प्राउड टू बी अ पार्ट ऑफ इट. जय हिंद जय भारत.
3: जय हिंद एवरीवन. मेरा नाम जानवी है और मैं बीएससी फॉरेंसिक साइंस फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट हूँ. मुझे बहुत प्राउड फील होता है कि मैं हमारे कॉलेज केरल वर्मा सुभारती कॉलेज ऑफ साइंस की फॉरेंसिक साइंस डिपार्टमेंट का पार्ट हूँ.
4: जय हिंद एवरीवन. मेरा नाम मुस्कान जैन है और मैं बीएससी सेकेंड ईयर की स्टूडेंट हूँ फॉरेंसिक साइंस में एट केरल वर्मा सुभारती कॉलेज ऑफ साइंस.
3: हमारे यहाँ नॉलेज सिर्फ बुक्स तक लिमिटेड नहीं रहती है, हमें प्रैक्टिकल नॉलेज भी दी जाती है जो कि हमारे करियर के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है. हमारे यहाँ फॉरेंसिक साइंस सिर्फ बुक्स तक ही लिमिटेड नहीं है, प्रैक्टिकल नॉलेज भी हमें इक्वली मिलती है. इन्वेस्टिगेशन, फिंगरप्रिंट एनालिसिस एंड टॉक्सिकोलॉजी जैसे सब्जेक्ट्स हम सिर्फ थियोरेटिकल नहीं पढ़ते हैं बट हम उनका प्रैक्टिकल भी करते हैं.
4: जैसे कि अभी इन्होंने बताया कि हम फिंगरप्रिंट का एनालिसिस करते हैं तो हम लोग लैबोरेटरीज में ये जानते हैं कि हम उन्हें कैसे डेवलप कर सकते हैं, कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं और कैसे उस चीज को कोर्ट में प्रेजेंट कर सकते हैं एज अ सॉलिड एविडेंसेस. इसी के साथ साथ हम क्वेश्चन डॉक्यूमेंट्स की स्टडी भी करते हैं, फोर्ज्ड क्वेश्चन डॉक्यूमेंट, ऑल्टर्ड क्वेश्चन डॉक्यूमेंट और हम लोग यहाँ पर फिंगरप्रिंट के साथ साथ क्वेश्चन डॉक्यूमेंट्स की भी स्टडी करते हैं. कैसे हम फोर्ज्ड क्वेश्चन डॉक्यूमेंट, ऑल्टर्ड क्वेश्चन डॉक्यूमेंट और ऑब्लिक क्वेश्चन डॉक्यूमेंट को स्टडी करते हैं थ्रू यूवी लाइट, आईआर लाइट एंड माइक्रोस्कोप. हम कैसे उनको आइडेंटिफाई करते हैं और कैसे उसे कोर्ट में प्रेजेंट करते हैं ये सब हम अपनी लैबोरेटरीज में सीखते हैं और सारे ही इंस्ट्रूमेंट यहाँ पर प्रेजेंट हैं जिससे हम आगे के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं खुद को. और मैं चाहूंगी कि आप सब भी आए और हमारी लैब विजिट करें और देखें कि यहाँ पे कितने सारे इंस्ट्रूमेंट्स अवेलेबल हैं और इक्विपमेंट्स अवेलेबल हैं चीजें सीखने के लिए. थैंक यू सो मच.
3: मुझे लगता है कि फॉरेंसिक साइंस सिर्फ एक कोर्स नहीं, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सच को सामने लाना और जस्टिस को सपोर्ट करना और हमारे टीचर्स हमें इसी डायरेक्शन में गाइड करते हैं. मैं अपने कॉलेज के लिए और अपने टीचर्स के लिए बहुत थैंकफुल हूँ कि वो हमें इतने अच्छे से हमारे करियर के लिए और हमारे फ्यूचर प्लान्स के लिए गाइड करते हैं. थैंक यू सो मच.
5: तो अभी आप

0: आपने सभी स्टूडेंट्स को सुना, सबने अपने अच्छे अच्छे अनुभव आपके साथ साझा किए, और आप भी आइए केरल उमास भारती कॉलेज ऑफ साइंस में एडमिशन लीजिए। आप इस साल ट्वेल्थ कर रहे हैं तो उन कोर्सेज को आप कर सकते हैं जो आफ्टर ट्वेल्थ होंगे, या अगर आप ग्रेजुएट हैं तो भी आफ्टर ग्रेजुएशन के कोर्स आप यहां पर आकर कर सकते हैं। बाकी सर बहुत बहुत धन्यवाद, आज आप हमारे साथ जुड़े और इतने तमाम कोर्सेज की जानकारी आपने हमें दी। चलते चलते हमारे श्रोताओं के लिए आपसे एक संदेश जरूर लेना चाहेंगे हम।
1: मेरा बस यही संदेश है सभी विद्यार्थियों को कि देयर इज नो ऑल्टरनेटिव ऑफ हार्ड वर्क। मेहनत करें और अपने आप पर विश्वास रखें, सफलता निश्चित रूप से आप सबको मिलेगी।

0: लोकप्रिय अस्पताल सिर्फ नाम से ही नहीं बल्कि अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ मिलने वाली सेवाओं के कारण भी लोकप्रिय है। यहाँ आपको एक ही छत के नीचे मिलेंगे मेडिसिन, स्त्री रोग विशेषज्ञ, बाल रोग विशेषज्ञ, जनरल सर्जरी, गुर्दा रोग विशेषज्ञ, गुर्दा और मूत्र रोग विशेषज्ञ, दांत और मुंह के रोग विशेषज्ञ, आँख कान नाक और गला रोग विशेषज्ञ, हड्डी रोग विशेषज्ञ, हृदय और छाती रोग विशेषज्ञ, थायराइड और मधुमेह रोग विशेषज्ञ, ब्रेन और स्पाइन रोग विशेषज्ञ। लोकप्रिय अस्पताल किठोर में
1: यहाँ आपको मिलेंगे सभी प्रकार के ट्रॉमा एवं इमरजेंसी सुविधाएं जैसे नॉर्मल डिलीवरी एवं ऑपरेशन डिलीवरी, आधुनिक आईसीयू एवं वेंटिलेटर की सुविधाएं, मॉडल ऑपरेशन थिएटर, आधुनिक नर्सरी, ईसीजी व इको कार्डियोग्राफी, जनरल वार्ड, सेमी प्राइवेट और प्राइवेट रूम्स, डिजिटल एक्सरे एवं अल्ट्रासाउंड 24 घंटे कार्यरत, पैथोलॉजी लैब्स 24 घंटे, डायलिसिस की सुविधा 24 घंटे, मेडिकल स्टोर जैसे अनेकों सुविधाओं के साथ हम आपको 24/7 की इमरजेंसी सेवाएं भी प्रदान करते हैं।
0: अपनी बीमारियों और समस्याओं से निजात पाने के लिए मिले 120 बेड वाले लोकप्रिय अस्पताल सुपर मल्टी स्पेशलिटी किठोर के विशेषज्ञों से और पाएं सारी बीमारियों से निजात। एचपी पेट्रोल पंप के सामने निकट नहर गढ़ रोड किठोर। संपर्क कीजिए 8194007405।

0: आप सुन रहे हैं आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट।
1: एक लड़की थी दीवानी सी, एक लड़के पे वो मरती थी, नजरें झुका के शर्मा के गलियों से गुजरती थी, चोरी चोरी चुपके चुपके चिट्ठियां लिखा करती थी। कुछ कहना था शायद उसको, जाने किससे डरती थी। जब भी मिलती थी मुझसे, मुझसे पूछा करती थी, प्यार कैसे होता है, ये प्यार कैसे होता है। और मैं

सन्नाटा पसर जाता है उस परिवार में जहाँ किसी को कैंसर हो जाए। वीरानी लगती है ये दुनिया जिस परिवार में किसी को कैंसर हो जाए। अब कैंसर से डरिए नहीं, सुभारती कैंसर हॉस्पिटल, विश्व स्तरीय और अत्याधुनिक इलाज, कैंसर स्क्रीनिंग एंड डायग्नोसिस, ऑल टाइप ऑफ लेटेस्ट एंड एडवांस रेडिएशन थेरेपी, ऑल टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स कैंसर सर्जरी, हार्मोनल थेरेपी। नो मोर कॉल नाउ 9639010313।

यूं ही मारते रहे दम तो जिंदगी हो जाएगी बेदम। बचाना चाहते हो किसी का जीवन तो संपर्क करे विश्वस्तरीय सुविधाओं से युक्त सुभारती नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केंद्र सुभारती हॉस्पिटल झाझरा देहरादून। कॉल करें 9760920865।

लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड की ठोर, अत्याधुनिक नर्सरी, ईसीजी, इको, कार्डियोग्राफी, सेमी प्राइवेट और प्राइवेट रूम्स, डिजिटल एक्सरे हो या अल्ट्रासाउंड, न्यूनेटल केयर यूनिट और बच्चों के लिए विशेष ऑपरेशन थिएटर, 2400 घंटे पैथोलॉजी लैब्स। लोकप्रिय हॉस्पिटल की ठोर में आज ही आकर मिले, हमारे अनुभवी डॉक्टर और विशेषज्ञ आपके स्वास्थ्य की देखभाल के लिए 2400 घंटे तैयार, अत्याधुनिक उपकरण और तकनीक जो आपको सर्वोत्तम सेवाएं प्रदान करें। लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड की ठोर।

जुकाम, खांसी या बुखार कई दिनों तक रहे तो छोटे बच्चों को निमोनिया हो सकता है। अपने बच्चों के बेहतर इलाज के लिए आज ही संपर्क करें लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड किठोर, जहां पर 2400 घंटे हमारे बाल रोग विशेषज्ञ आपके बच्चों की बेहतर देखभाल के लिए उपलब्ध। 2400 घंटे इमरजेंसी सुविधाओं के साथ लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड किठोर, HP पेट्रोल पंप के सामने। कॉल करें 8194007405।

0: लोकप्रिय अस्पताल सिर्फ नाम से ही नहीं बल्कि अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ मिलने वाली सेवाओं के कारण भी लोकप्रिय है। यहाँ आपको एक ही छत के नीचे मिलेंगे मेडिसिन, स्त्री रोग विशेषज्ञ, बाल रोग विशेषज्ञ, जनरल सर्जरी, गुर्दा रोग विशेषज्ञ, गुर्दा और मूत्र रोग विशेषज्ञ, दांत और मुंह के रोग विशेषज्ञ, आँख, कान, नाक और गला रोग विशेषज्ञ, हड्डी रोग विशेषज्ञ, हृदय और छाती रोग विशेषज्ञ, थायराइड और मधुमेह रोग विशेषज्ञ, ब्रेन और स्पाइन रोग विशेषज्ञ। लोकप्रिय अस्पताल किठोर में
1: यहाँ आपको मिलेंगे सभी प्रकार के ट्रॉमा एवं इमरजेंसी सुविधाएं, जैसे नॉर्मल डिलीवरी एवं ऑपरेशन डिलीवरी, आधुनिक आईसीयू एवं वेंटिलेटर की सुविधाएं, मॉडल ऑपरेशन थिएटर, आधुनिक नर्सरी, ईसीजी व इको कार्डियोग्राफी, जनरल वार्ड, सेमी प्राइवेट और प्राइवेट रूम्स, डिजिटल एक्सरे एवं अल्ट्रासाउंड 24 घंटे कार्यरत, पैथोलॉजी लैब्स, 24 घंटे डायलिसिस की सुविधा, 24 घंटे मेडिकल स्टोर जैसे अनेकों सुविधाओं के साथ हम आपको 24/7 की इमरजेंसी सेवाएं भी प्रदान करते हैं।
0: अपनी बीमारियों और समस्याओं से निजात पाने के लिए मिले 120 बेड वाले लोकप्रिय अस्पताल सुपर मल्टी स्पेशलिटी किठोर के विशेषज्ञों से और पाएं सारी बीमारियों से निजात। एचपी पेट्रोल पंप के सामने निकट नहर गढ़ रोड किठोर। संपर्क कीजिए 8194007405।

सुभारती कैंसर हॉस्पिटल, यहाँ आपको सिर्फ उपचार नहीं मिलता, आपको मिलता है प्यार, समर्थन और सबसे जरूरी उम्मीद। हम जानते हैं कि हर मरीज की जिंदगी की कहानी अलग होती है और हम हर कहानी को जीतने की पूरी कोशिश करते हैं। हमारे विशेषज्ञ डॉक्टरों के साथ हर कदम पर हम आपको उम्मीद और जीवन की नई राह दिखाते हैं। कैंसर के खिलाफ इस लड़ाई में हम आपके साथ हैं। विश्व स्तरीय और अत्याधुनिक इलाज, सुभारती कैंसर हॉस्पिटल। टू नो मोर कॉल नाउ 9639010313।

0: यूं ही मारते रहे दम तो जिंदगी हो जाएगी बेदम। बचाना चाहते हो किसी का जीवन तो संपर्क करे विश्व स्तरीय सुविधाओं से युक्त सुभारती नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केंद्र सुभारती हॉस्पिटल झाजरा देहरादून। कॉल करे 9760920865।
1: लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड की ठोर, अत्याधुनिक नर्सरी, ईसीजी, इको, कार्डियोग्राफी, सेमी प्राइवेट और प्राइवेट रूम्स, डिजिटल एक्सरे हो या अल्ट्रासाउंड, न्यूनेटल केयर यूनिट और बच्चों के लिए विशेष ऑपरेशन थिएटर, 2400 घंटे पैथोलॉजी लैब्स। लोकप्रिय हॉस्पिटल की ठोर में आज ही आकर मिले, हमारे अनुभवी डॉक्टर और विशेषज्ञ आपके स्वास्थ्य की देखभाल के लिए 2400 घंटे तैयार, अत्याधुनिक उपकरण और तकनीक जो आपको सर्वोत्तम सेवाएं प्रदान करें। लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड की ठोर।

जुकाम, खांसी या बुखार कई दिनों तक रहे तो छोटे बच्चों को निमोनिया हो सकता है। अपने बच्चों के बेहतर इलाज के लिए आज ही संपर्क करें लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड किठोर, जहां पर 2400 घंटे हमारे बाल रोग विशेषज्ञ आपके बच्चों की बेहतर देखभाल के लिए उपलब्ध। 2400 घंटे इमरजेंसी सुविधाओं के साथ लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड किठोर, एचपी पेट्रोल पंप के सामने। कॉल करें 8194007405।

0: लोकप्रिय अस्पताल सिर्फ नाम से ही नहीं बल्कि अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ मिलने वाली सेवाओं के कारण भी लोकप्रिय है। यहाँ आपको एक ही छत के नीचे मिलेंगे मेडिसिन, स्त्री रोग विशेषज्ञ, बाल रोग विशेषज्ञ, जनरल सर्जरी, गुर्दा रोग विशेषज्ञ, गुर्दा और मूत्र रोग विशेषज्ञ, दांत और मुंह के रोग विशेषज्ञ, आँख कान नाक और गला रोग विशेषज्ञ, हड्डी रोग विशेषज्ञ, हृदय और छाती रोग विशेषज्ञ, थायराइड और मधुमेह रोग विशेषज्ञ, ब्रेन और स्पाइन रोग विशेषज्ञ। लोकप्रिय अस्पताल किठोर में
1: यहाँ आपको मिलेंगे सभी प्रकार के ट्रॉमा एवं इमरजेंसी सुविधाएं, जैसे नॉर्मल डिलीवरी एवं ऑपरेशन डिलीवरी, आधुनिक आईसीयू एवं वेंटिलेटर की सुविधाएं, मॉडल ऑपरेशन थिएटर, आधुनिक नर्सरी, ईसीजी व इको कार्डियोग्राफी, जनरल वार्ड, सेमी प्राइवेट और प्राइवेट रूम्स, डिजिटल एक्सरे एवं अल्ट्रासाउंड, 24 घंटे कार्यरत पैथोलॉजी लैब्स, 24 घंटे डायलिसिस की सुविधा, 24 घंटे मेडिकल स्टोर जैसे अनेकों सुविधाओं के साथ हम आपको 24/7 की इमरजेंसी सेवाएं भी प्रदान करते हैं।
0: अपनी बीमारियों और समस्याओं से निजात पाने के लिए मिले 120 बेड वाले लोकप्रिय अस्पताल सुपर मल्टी स्पेशलिटी किठोर के विशेषज्ञों से और पाएं सारी बीमारियों से निजात। HP पेट्रोल पंप के सामने निकट नहर गढ़ रोड किठोर। संपर्क कीजिए 8194007405।

सुभारती कैंसर हॉस्पिटल, यहाँ आपको सिर्फ उपचार नहीं मिलता, आपको मिलता है प्यार, समर्थन और सबसे जरूरी उम्मीद। हम जानते हैं कि हर मरीज की जिंदगी की कहानी अलग होती है और हम हर कहानी को जीतने की पूरी कोशिश करते हैं। हमारे विशेषज्ञ डॉक्टरों के साथ हर कदम पर हम आपको उम्मीद और जीवन की नई राह दिखाते हैं। कैंसर के खिलाफ इस लड़ाई में हम आपके साथ हैं। विश्व स्तरीय और अत्याधुनिक इलाज, सुभारती कैंसर हॉस्पिटल। टू नो मोर कॉल नाउ 9639010313।

यूं ही मारते रहे दम तो जिंदगी हो जाएगी बेदम। बचाना चाहते हो किसी का जीवन तो संपर्क करे विश्वस्तरीय सुविधाओं से युक्त सुभारती नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केंद्र सुभारती हॉस्पिटल झाजरा देहरादून। कॉल करें 9760920865।

लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड की ठोर, अत्याधुनिक नर्सरी, ईसीजी, इको, कार्डियोग्राफी, सेमी प्राइवेट और प्राइवेट रूम्स, डिजिटल एक्सरे हो या अल्ट्रासाउंड, न्यूनेटल केयर यूनिट और बच्चों के लिए विशेष ऑपरेशन थिएटर, 2400 घंटे पैथोलॉजी लैब्स। लोकप्रिय हॉस्पिटल की ठोर में आज ही आकर मिले। हमारे अनुभवी डॉक्टर और विशेषज्ञ आपके स्वास्थ्य की देखभाल के लिए 2400 घंटे तैयार।

सुभारती कैंसर हॉस्पिटल, यहाँ आपको सिर्फ उपचार नहीं मिलता, आपको मिलता है प्यार, समर्थन और सबसे जरूरी उम्मीद। हम जानते हैं कि हर मरीज की जिंदगी की कहानी अलग होती है और हम हर कहानी को जीतने की पूरी कोशिश करते हैं। हमारे विशेषज्ञ डॉक्टरों के साथ हर कदम पर हम आपको उम्मीद और जीवन की नई राह दिखाते हैं। कैंसर के खिलाफ इस लड़ाई में हम आपके साथ हैं। विश्व स्तरीय और अत्याधुनिक इलाज, सुभारती कैंसर हॉस्पिटल। टू नो मोर कॉल नाउ 9639010313।

लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड की ठोर, अत्याधुनिक नर्सरी, ईसीजी, इको, कार्डियोग्राफी, सेमी प्राइवेट और प्राइवेट रूम्स, डिजिटल एक्सरे हो या अल्ट्रासाउंड, न्यूनेटल केयर यूनिट और बच्चों के लिए विशेष ऑपरेशन थिएटर, 2400 घंटे पैथोलॉजी लैब्स। लोकप्रिय हॉस्पिटल की ठोर में आज ही आकर मिले। हमारे अनुभवी डॉक्टर और विशेषज्ञ आपके स्वास्थ्य की देखभाल के लिए 2400 घंटे तैयार, अत्याधुनिक उपकरण और तकनीक जो आपको सर्वोत्तम सेवाएं प्रदान करें। लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड की ठोर।

सुनते जाइए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट।

जुकाम, खांसी या बुखार कई दिनों तक रहे तो छोटे बच्चों को निमोनिया हो सकता है। अपने बच्चों के बेहतर इलाज के लिए आज ही संपर्क करें लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड किठोर, जहां पर 2400 घंटे हमारे बाल रोग विशेषज्ञ आपके बच्चों की बेहतर देखभाल के लिए उपलब्ध। 2400 घंटे इमरजेंसी सुविधाओं के साथ लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड किठोर, एचपी पेट्रोल पंप के सामने। कॉल करें 8194007405।

सन्नाटा पसर जाता है उस परिवार में जहाँ किसी को कैंसर हो जाए। वीरानी लगती है ये दुनिया जिस परिवार में किसी को कैंसर हो जाए। अब कैंसर से डरिए नहीं, सुभारती कैंसर हॉस्पिटल, विश्व स्तरीय और अत्याधुनिक इलाज, कैंसर स्क्रीनिंग एंड डायग्नोसिस, ऑल टाइप ऑफ लेटेस्ट एंड एडवांस रेडिएशन थेरेपी, ऑल टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स कैंसर सर्जरी, हार्मोनल थेरेपी। नो मोर कॉल नाउ 9639010313।

0: Shernaxis.
1: यू ही मारते रहे दम तो जिंदगी हो जाएगी बेदम। बचाना चाहते हो किसी का जीवन तो संपर्क करे विश्वस्तरीय सुविधाओं से युक्त सुभारती नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केंद्र सुभारती हॉस्पिटल झाजरा देहरादून। कॉल करें 9760920865।

लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड की ठोर, अत्याधुनिक नर्सरी, ईसीजी, इको, कार्डियोग्राफी, सेमी प्राइवेट और प्राइवेट रूम्स, डिजिटल एक्सरे हो या अल्ट्रासाउंड, न्यूनेटल केयर यूनिट और बच्चों के लिए विशेष ऑपरेशन थिएटर, 2400 घंटे पैथोलॉजी लैब्स। लोकप्रिय हॉस्पिटल की ठोर में आज ही आकर मिले। हमारे अनुभवी डॉक्टर और विशेषज्ञ आपके स्वास्थ्य की देखभाल के लिए 2400 घंटे तैयार। अत्याधुनिक उपकरण और तकनीक जो आपको सर्वोत्तम सेवाएं प्रदान करें। लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड की ठोर।

0: पढ़ाई तो सब जगह होती है, पर एक्सीलेंस का होना भी तो जरूरी है। स्वामी विवेकानंद सुभारती यूनिवर्सिटी इज द रोड टू एक्सीलेंस विच प्रोवाइड्स द स्टूडेंट विद अ सलूब्रियस एनवायरनमेंट, हाईली एक्सपीरियंस्ड एंड कॉम्पिटेंट फैकल्टी,
1: 18 कॉलेजेस एंड 220 प्लस प्रोग्राम्स। विजिट www.subharti.org।

0: जय हिंद। कैप्टन अमरीक सिंह सुभारती डिफेंस एकेडमी मेरठ,
1: अ प्लेस वेयर सोल्जर्स आर बोर्न टू सर्व द नेशन।
0: वी इम्पार्ट ट्रेनिंग टू यंग एस्पिरेंट्स हु एम टू जॉइन द आर्म्ड फोर्सेस टू सर्व द मदरलैंड।
1: कैप्टन अमरीक सिंह सुभारती डिफेंस एकेडमी, जहां कराई जाती है इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स में अग्निवीर के लिए कली ट्रेनिंग, रिटन एग्जाम्स जैसे NDA, CDS और SSB इंटरव्यूज को भी करें एक बार में क्लियर विद सुभारती डिफेंस एकेडमी।
0: कैप्टन अमरीक सिंह सुभारती डिफेंस एकेडमी उनके लिए जो नौकरी नहीं बल्कि देश सेवा करना चाहते हैं।
1: तो आज ही ज्वाइन करें। फॉर मोर क्वेरीज यू मे कॉन्टेक्ट 9045954341 एंड 9068899913 और यू कैन ऑल्सो विजिट www.subhatidefense.com।